ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 जून सन 2026, सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिकाएं निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कल नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तराखंड के देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। इस वर्ष के ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार लड़कों के साथ लड़कियां भी शामिल होंगी। इस भव्य समारोह में 500 से अधिक लड़के और लड़कियां सेना में अधिकारी के रूप में कमीशन प्राप्त करेंगे। भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनिर्माण आधारित विकास और रोजगार सृजन पर अभूतपूर्व ध्यान दिया है। इससे औद्योगिक विकास में तेजी आई है और रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए हैं। श्री कुमारस्वामी ने कल बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के 65वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान रणनीतिक क्षेत्र में अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। श्री सिंह ने कल हैदराबाद में डॉ एपीजे अब्दुल कलाम प्रक्षेपास्त्र परिसर के अंतर्गत रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि डीआरडीओ की आकाश और ब्रह्मोस प्रणालियों ने वैश्विक रक्षा प्रौद्योगिकी व्यवस्था में भारत की क्षमता प्रदर्शित की है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमेरिकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमरीकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर

0: जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को ले जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन एक दिवसीय मैच श्रृंखला का पहला मुकाबला आज हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर 1:30 से शुरू होगा। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। यामागुची ने भारत की तन्वी शर्मा को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली, किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस स्वर्थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। सुविचार, खोया हुआ पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर दिन को खुलकर जिए। इस सुविचार के पश्चात आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फिल्म जंगली से अभी आपने सुना है गीत, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत।

है, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा उन बातों से मिलकर बना होता है जो हम कभी किसी से कहते ही नहीं हैं? जी हाँ, वो हमारे मन में ही रहती है। कुछ एहसास दिल में रह जाते हैं, कुछ यादें किसी गाने में छिप जाती है। तो आज ये एक घंटा उन्हीं अनकही बातों और खूबसूरत गीतों के नाम। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशिका और आपका स्वागत है प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत में। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

वेलकम बैक। हर इंसान के फ़ोन में कुछ ऐसे नंबर ज़रूर होते हैं जिन पर अब कॉल नहीं जाती ना ही आती, लेकिन उन्हें डिलीट करने का मन नहीं करता, क्योंकि कुछ रिश्ते ख़त्म नहीं होते, बस उनकी आवाज़ आनी बंद हो जाती है।

0: बचपन में बड़े होकर होने को लेकर एक अलग ही जोश था ना। लगता था बड़े होकर ये स्कूल, ये परेशानियाँ सब खत्म हो जाएगी। बड़े हुए तो पता चला परेशानियाँ नहीं बदलती, बस उनके नाम बदल जाते हैं। और असल में जिसे हम परेशानी समझ रहे थे वही जिंदगी का असली मज़ा था। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो नहीं बदलती, फिर से संभल जाने की हिम्मत।
1: इस रंग

दोस्तों, कुछ लोग हमारी कहानी में सिर्फ कुछ पन्नों के लिए आते हैं, लेकिन जाते जाते पूरी किताब का मतलब बदल देते हैं। इसलिए याद रखिए, हर मुलाकात की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। यूं ही कोई किसी को नहीं मिलता।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

एक बार फिर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशिका आपके साथ। दोस्तों, अगर ज़िंदगी कभी बहुत तेज़ भागती हुई लगे तो एक मिनट रुककर अपने आसपास देखना। हो सकता है जिस खुशी को आप दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं वो अभी इसी पल आपके बिल्कुल पास बैठी हो।

देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखने वाले शख्स को भी हम खुलकर शुक्रिया नहीं कह पाते। तो आज एक छोटा सा काम कीजिए, ऐसे इंसान को शुक्रिया कहिए जिसे आपने कभी ये कहा ही नहीं। यकीन मानिए, कुछ शब्द बहुत देर से भी कहे जाए तो भी उनकी कीमत कम नहीं होती।

हर गाना सिर्फ धुन नहीं होता और हर बातें सिर्फ शब्द नहीं होती। कुछ बातें दिल में उतर जाती है और कुछ गीत हमेशा हमेशा के लिए याद बन जाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये साथ आपके दिन को थोड़ा सा खूबसूरत बना गया होगा, मैं निशिका वरुणा आपसे लेती हूँ इजाज़त। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर होंगे रवाना। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मुकाबले में अमरीका 3-0 से आगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री की ये फ्रांस की 7वीं आधिकारिक यात्रा है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इस वर्ष के आरंभ में भारत फ्रांस संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिए जाने के बाद पहली द्विपक्षीय शिखर बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के नीस शहर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज दक्षिण फ्रांस में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वे कल राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत इनोवेटिव्स का उद्घाटन करेंगे। इस प्रदर्शनी में भारत के 120 से अधिक स्टार्टअप और कंपनियां भाग लेंगी, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप टेक और उद्यमिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को प्रदर्शित करेंगी। कार्यक्रम में फ्रांस सहित दुनिया भर के निवेशक और उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके बाद दोनों नेता ऐतिहासिक विला कैरिलोस में द्विपक्षीय शिखर वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान रक्षा, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जन से जन संपर्क जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और फ्रांस के बीच 25 वर्षों से अधिक पुरानी रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है। वर्ष 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 16 अरब अमरीकी डॉलर हो चुका है। नीस में अपने कार्यक्रमों के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय यात्रा पर स्लोवाकिया जाएंगे। इसके बाद वे 16 और 17 जून को फ्रांस के एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए फ्रांस लौटेंगे। इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत का पक्ष रखेंगे। नीस से सेलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रधानमंत्री मोदी कल स्लोवाक गणराज्य की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रातिस्लावा में स्लोवाक गणराज्य के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से वार्ता के दौरान आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे।
2: स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक यात्रा पर स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी यात्रा के दौरान स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के साथ वार्ता में आपसी सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेंगे। यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी भेंट करेंगे। यह राज्य की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब भारत और स्लोवाकिया के बीच व्यापारिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2024 में 1 अरब डॉलर से अधिक हो गया था। पिछले वर्ष ये बढ़कर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री की यात्रा भारत और स्लोवाकिया के संबंधों को नई मजबूती देगी, साथ ही यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ भारत का सहयोग और बढ़ने की संभावना है। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि डीआरडीओ ने विभिन्न प्रकार के खतरों के खिलाफ राष्ट्र की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने वाली कई महत्वपूर्ण तकनीकों का सफल प्रदर्शन किया है।
3: आजादी के बाद कुछ ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके शासक भारत में आने से मना कर रहे। शुरुआत में सरदार पटेल ने बातचीत के माध्यम से उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बातचीत से हल नहीं निकला तो उन्होंने बलपूर्वक उन प्रिंसली स्टेट्स का भारत में विलय कराया। हमारी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर से हमने दुनिया को बता दिया, शांति और सद्भावना की भाषा नहीं समझने वाले लोगों को हम उसी की भाषा में जवाब

0: देना जानते हैं जो उनकी आदत है।
1: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा उत्पादन अनुदान योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नागालैंड के कला और संस्कृति विभाग के गाइड जैन ने इस योजना के लाभों पर बात की। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरो खबैम शरदचंद ने क्षेत्र कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
3: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1.25 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूं।
2: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुंचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत अब केवल देश में ही नहीं बल्कि विश्व भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है।
5: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। उन्होंने संवाद और कूटनीति के माध्यम से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
1: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन ईरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़े बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। अमरीकी अधिकारी ने नागरिक परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु हथियार क्षमता के बीच

0: स्पष्ट अंतर बताया और कहा कि अमेरिका का उद्देश्य ईरान के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र को समाप्त करना नहीं बल्कि ईरान को बम बनाने की क्षमता बनाए रखने से रोकना है। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति, स्थिरता और सद्भाव बनाए रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड के बीच 57वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 8 से 11 जून तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी में आज पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। इस वर्ष की ऐतिहासिक पासिंग आउट परेड में पहली बार महिला कैडेट्स भी शामिल हुईं। कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। लॉस एंजिल्स में फीफा फुटबॉल विश्व कप में पराग्वे के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक अमरीका 3-1 से आगे चल रहा था। इससे पहले कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। भारत की पीवी सिंधु आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से खेलेंगी। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चेन सू यू को हराया था। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अगले दो दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के आसार हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद विशाल। ओमान की खाड़ी में भारतीय चालक दल वाले व्यावसायिक जहाजों पर अमरीकी हमलों पर भारत का कड़ा विरोध आज की अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, जहाजों को निशाना बनाने से भारत नाराज, अमरीका से कहा ऐसे हमले स्वीकार्य नहीं, अमरीकी दूतावास के प्रभारी को दूसरी बार किया तलब। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के साथ युद्ध समाप्ति समझौते का दावा भी अखबारों की सुर्खी बना है। दैनिक जागरण ने लिखा है ईरान युद्ध खत्म, समझौता जल्द, तेहरान ने कहा अभी अंतिम फैसला नहीं। जिनेवा में कल मसौदे पर हस्ताक्षर संभव। वहीं हिंदुस्तान ने बिजनेस पन्ने पर लिखा है शांति कायम होने के संकेतों से शेयर बाजारों में तूफानी तेजी। अमेरिका और पश्चिमी देशों के दोहरे रवैये पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी राजस्थान पत्रिका में है। फिनलैंड में कुल तारंता टॉक्स में कहा भारत ने नहीं पहुंचाया यूरोप की सुरक्षा को खतरा, हम जानते हैं खेल क्या है, यूरोप के हथियारों का इस्तेमाल भारत पर हमले के लिए किया जाता है। महिलाओं के लिए क्षमता दिखाने का माहौल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये शब्द जनसत्ता में है। पीएम ने कहा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व में विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण पर दिया जोर।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। डीआरडीओ ने बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमता का प्रदर्शन करते हुए लगातार 3 सफल परीक्षण किए। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने तेल टैंकर पर हमले के विरोध में अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से कड़ा विरोध जताया। हमले में मारे गए थे 3 भारतीय नाविक। भारत और बांग्लादेश ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। अमरीका प्रस्तावित शांति समझौते के तहत ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर हुआ सहमत। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में आज भारत की पीवी सिंधु और जापान की अकाने यामागुची होंगी आमने सामने। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 6-day visit to France and Slovakia this morning. DRDO successfully conducts 3 consecutive flight tests to demonstrate multi-layered ballistic missile defense capability. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar lodges strong protest with U.S. Secretary of State Marco Rubio over U.S. strikes on oil ship that killed 3 Indian sailors. India and Bangladesh reaffirm their commitment to maintain peace and tranquility

0: श्रोताओं, दुनिया में रहने की सबसे अच्छी दो जगह है, या तो किसी के दिल में या फिर किसी की दुआ में। तो श्रोताओं, इन्हीं खास पंक्तियों के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने पसंदीदा शो, जिसे हम और आप मिलकर कहते हैं
1: नमस्कार। जी दोस्तों, जब बात करें दुआओं की, तो दुआएं लेकर देखकर और एक दूसरे को साथ मिलकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तभी कारवां खूबसूरत चलता है और खूबसूरत लगता है।
0: बिल्कुल। तो चलिए, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट हिमांशु।

0: बस्तियों मेरे साथ मौजूद हैं
1: अर्चना चौहान। और आज के कार्यक्रम में ढेर सारी जानकारियां, प्यारे प्यारे गीत और साथ ही साथ आपसे करेंगे हम ढेर सारी बातें। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज की टीम के बारे में, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा है।
0: एचपीटी ट्रांसमीटर पर हैं प्रकाश पवार और नरेंद्र सिंह राठौड़।
1: कंट्रोल रूम से तकनीकी सहयोग दे रहे हैं प्रवीण कुमार।
0: और इस पूरे शो को सुरों और तकनीक से सजाने के लिए कंसोल पर हमारे साथ मौजूद हैं निशिका बोराना।
1: और एफएम पर एओडी है आज की हिना खान।
0: कार्यक्रम की ये प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का।
1: और इन्हीं के साथ हम दोनों आपके दोस्त अर्चना चौहान
0: और मैं हिमांशु अवस्थी। दोस्तों आप सभी तैयार हो जाइए एक नई सुबह, एक नई जानकारी और बेहतरीन संगीत के साथ आने वाले इस सफर में, क्योंकि नमस्कार में अब हर पल होगा खास।

0: दोस्तों, बचपन से हमें एक बात बार बार सुनाई जाती है, अच्छे से पढ़ाई करो तभी ज़िंदगी में सफल हो पाओगे। लेकिन आज के दौर में एक नया सवाल तेज़ी से हमारे सामने आ रहा है। क्या सिर्फ डिग्री ही सफलता की पहचान है, या फिर स्किल्स यानी हुनर भी उतना ही ज़रूरी है? आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है। कई लोग बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर भी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने हुनर और स्किल्स के दम पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
1: जी हाँ, तो अपने भविष्य का निर्माण आपको खुद करना पड़ेगा। जो भी स्किल्स आपको लगता है कि आपके अंदर है, उसे डेवलप करने के लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और अपने आसपास बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रीम्स हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी स्किल को सुधार सकते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई और नहीं जानता।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार, और नमस्कार में गाने नए नवेले आपके लिए लेकर आए हैं हम आज के इस प्रोग्राम में। और बात कर रहे हैं पढ़ाई की, तो पढ़ाई क्यों ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में?
1: दोस्तों, पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ाई हमारी लाइफ का बेस होती है। पढ़ाई हमें सिर्फ किताबों की नॉलेज नहीं देती, बल्कि सही और गलत की रास्ता भी समझाती है, सोचने की क्षमता देती है और डिसिप्लिन भी सिखाती है।
0: जी हाँ दोस्तों, ज़िंदगी में सिर्फ गोल ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई करने के बाद आपको डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या साइंटिस्ट बनना है। इसके अलावा भी पढ़ाई हमें बहुत कुछ सिखाती है, जैसे कि सही और गलत का निर्णय लेना तो है ही, और साथ ही साथ आपको दूसरों को समझने की भी नॉलेज पढ़ाई के बाद ही आती है।
1: बिल्कुल श्रोताओं, आज कई कंपनियां ऐसे लोगों की तलाश कर रही हैं जिनके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हों, जैसे कम्युनिकेशन हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, टेक्नोलॉजी हो, नॉलेज हो और क्रिएटिविटी हो, क्योंकि बिना स्किल्स के आज की इस दुनिया में कदम ताल मिलाना बहुत मुश्किल है।
0: जी हाँ, कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई सबसे ज़रूरी है, और पढ़ाई करने के लिए आपको चाहिए फोकस। ज़िंदगी में फोकस हो तो आप अपनी समस्याओं से दूर हो सकते हैं और अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

0: दोस्तों, अगर पढ़ाई लाइफ का बेस है तो स्किल वो मकान है जिसमें रहकर आप अपने आप को सेफ फील करते हो।
1: जी हाँ दोस्तों, स्किल्स क्या होती है? आपके अंदर छुपा हुआ वो हुनर जिसे आप तराश कर बाहर निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप एक कठोर या मजबूत बेस बना सकते हैं ताकि आप कुछ भी कर सकें। आपके मन में इनसिक्योरिटी नहीं रहती है जब आपके पास में एक अच्छी स्किल्स होती है। जैसे कि अगर आप बहुत अच्छी फोटोग्राफी करना जानते हैं तो आप एक अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग जानते हैं तो आप हजारों रुपए कमा सकते हैं। वहीं अगर आपका स्किल है डिजिटल मार्केटिंग का या ग्राफिक डिजाइनिंग का, तो उसके जरिए भी आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं।
0: दोस्तों, आज का समय सिर्फ क्या पढ़ा क्या नहीं का नहीं है, बल्कि क्या कर सकते हो का है। एक समय था जब सिर्फ डिग्री नौकरी दिला देती थी, लेकिन आज कंपनियां ऐसे लोगों को पसंद करती हैं जो काम करना जानते हों। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कोडिंग जानता है और उसके साथ अलग से फ्रीलांसिंग कर रहा है। अभी आपने की वीडियो एडिटिंग की बात की, तो वीडियो एडिटिंग सीख कर वो हजारों रुपए कमा सकता है। डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सकता है। यानी आज स्किल्स कमाई और पहचान दोनों का एक बड़ा माध्यम बन चुकी है।
1: वहीं हिमांशु, अगर हम टेक्निकल फील्ड में ना जाएं तो जो हमारी महिलाएं हैं जो घरों में रहती हैं, वो बहुत कुछ नहीं जानती है, लेकिन वो भी अपनी जो स्किल्स है, जैसे कि अगर उनको फैशन डिजाइनिंग का शौक है या कुछ बनाना जानती है, खाना बनाना जानती है, घर को सजाना जानती है, तो वो भी इस स्किल्स को आगे बढ़ाकर अपनी पहचान बना
0: क्योंकि
1: सकते
0: आजकल
1: हैं।
0: क्लाउड किचन बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है।
1: बिल्कुल, क्लाउड किचन के अलावा भी अगर आप डिज़ाइनिंग के लिए बहुत पैशनेट हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग में कपड़ों की डिज़ाइनिंग हो या घर का कुछ भी आइटम बनाना हो, तो इस तरह से आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और अपनी मार्केट में एक अलग जगह बना सकते हैं।
0: और सच तो यह है दोस्तों कि कई बार आपके स्किल्स यानी हुनर डिग्री से बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है।

0: शाबाशियों की चाह किसे नहीं होती है, लेकिन शाबाशियां तभी मिलती है जब आप मुश्किलों से आगे बढ़कर कुछ हुनर सीखते हैं और हुनर में अपनी पहचान बनाते हैं।
1: बिल्कुल दोस्तों, आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो समाज के डर की वजह से, डिग्री का एक दबाव होता है कि उनको डिग्री लेनी है, वो हुनर पे ध्यान नहीं देते। वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने हुनर नहीं सीखना चाह रहे हैं। हमारे साथ और परिणाम क्या होता है इसका? स्ट्रेस,
0: जी
1: कन्फ्यूजन और कई बार बेरोजगारी। सिर्फ अच्छे मार्क्स होना जिंदगी की गारंटी नहीं होते। आज दुनिया ऐसे लोगों को महत्व देती है जो सीखते रहें, खुद को बदलते रहें और अपने आप को अपडेट रखें।
0: तो आपने जो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपने हुनर को पहचानिए और अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत मकाम बाकी है।

0: दोस्तों घड़ी इशारा कर रही है प्रादेशिक समाचारों का। प्रादेशिक समाचारों के बाद हमारा और आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार जारी रहेगा, तो बने रहिए हमारे साथ।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों और शिकायतों का निस्तारण किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग के अनुसार इन शिविरों में पट्टा नामांतरण और नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। कल आयोजित शिविरों में पट्टा और भूमि से जुड़े 1,173 मामलों तथा नामांतरण

0: और भू उपयोग परिवर्तन के 1491 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा जनसेवाओं से जुड़ी 6000 से अधिक शिकायतों का भी एक ही दिन में समाधान हुआ। इनमें जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत और आवारा पशुओं से संबंधित शिकायतें मुख्य रूप से शामिल हैं। पाली जिले में आयोजित एक शिविर में पशुपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ये शिविर नागरिक सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और सुगम बनाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से इन शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की।
1: अभी जैसे सरकार ने इस कैंप में बहुत सारी छूट दी है, पट्टे बनाने में भी कृषि भूमि के पट्टे बनाने 69A के पट्टे जो पट्टे हैं उनके बनाने में भी छूट दी है, 50% से ज्यादा छूट है अभी दी है। इससे क्या होगा कि पट्टों की राशि आधी लगेगी, इसलिए इसमें कैंपों में आवेदन करके आप ज्यादा से ज्यादा पट्टे भी बनाने की कार्रवाई करें। जैसे मकान की परमिशन में भी बहुत सारी छूट दी है।
0: राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत देते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक कर दी है। पहले ये खरीद 10 जून तक की जानी थी। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अनुसार ऐसे सभी पंजीकृत किसान जिनका गेहूं अभी तक नहीं बिक पाया है, वे बढ़ी हुई तारीख तक अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेच सकते हैं। विभाग ने गेहूं खरीद का लक्ष्य भी 23,50,000 से बढ़ाकर 28,50,000 मीट्रिक टन कर दिया है। इसमें अब तक 3,00,000 से अधिक किसानों से 25,90,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की भावना और समाज के प्रति संवेदनशीलता ही एक सच्चे नागरिक की सबसे बड़ी पहचान होती है। श्री शर्मा ने जयपुर में फिल्म भारत भाग्य विधाता की विशेष स्क्रीनिंग के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये फिल्म देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले गुमनाम नायकों की प्रेरक गाथा है। इसमें 26/11 आतंकी हमले और कोविड महामारी के दौरान चिकित्सकों, नर्सों और सुरक्षा कर्मियों के त्याग, साहस और सेवा भाव को प्रमुखता से दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राइजिंग राजस्थान के तहत हुए एमओयू को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य राजस्थान को वैश्विक पर्यटन के मानचित्र पर शीर्ष स्थान दिलाना है। उप मुख्यमंत्री ने सचिवालय में पर्यटन, कला संस्कृति और पुरातत्व विभाग की 15 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने पुष्कर विकास परियोजना, महाराणा प्रताप सर्किट, आमेर मास्टर प्लान, झुंझुनू वॉर म्यूजियम, अल्बर्ट हॉल के विकास और शिल्पग्राम पुनर्विकास जैसी परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने का जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। रेलवे बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से पूरी तरह ऑनलाइन होंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्ड RRB की चयन प्रक्रिया की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सटीक और तेज बनाने के लिए कम्प्यूटर आधारित परीक्षा CBT मोड में कराई जाएगी। इसके साथ ही भविष्य में टैबलेट आधारित परीक्षाओं का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्री ने चयन प्रक्रिया में तकनीक के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया है। श्री वैष्णव ने बताया कि खाली पदों की जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा जारी किए गए वार्षिक भर्ती कैलेंडर को भी उम्मीदवारों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक के साथ नीट की पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की है। नीट की ये परीक्षा 21 जून को आयोजित की जाएगी। समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा कि परीक्षा में बाधा डालने या इसके साथ छेड़छाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन परीक्षा कराने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले श्री सोमनाथन ने 1 जून को केंद्र सरकार के सचिवों और 4 जून को राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक

0: की थी। इन बैठकों का उद्देश्य परीक्षा में समन्वय और विश्वसनीयता बनाए रखना है। इस बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बार नीट परीक्षा की अवधि में बदलाव किया है। अब इस परीक्षा की अवधि 3 घंटे से बढ़ाकर 3.25 घंटे कर दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी और मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। ये बात उन्होंने कल हैदराबाद में DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर के उद्घाटन के दौरान कही। श्री सिंह ने कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्वदेशी प्रक्षेपात्र प्रणालियों का असाधारण प्रदर्शन भारत की रक्षा अनुसंधान और विकास व्यवस्था की बढ़ती शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत अब देश विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की नीति पर काम कर रहा है। और अब मौसम। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। राजधानी जयपुर में देर रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर सुबह तक जारी है। पाली में अल सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोजत, रानी, राणावास सहित आसपास के क्षेत्रों में हल्की बरसात हुई। कोटपुतली बहरोड में देर रात तक बरसात होती रही, इससे निचले इलाकों में पानी भर गया। बारां के शाहबाद कस्बे में कल 2 घंटे तक बरसात हुई। नागौर में देर रात तेज अंधड़ चला और बारिश हुई। बरसात से मौसम में ठंडक घुल गई है। हनुमानगढ़ में कई जगह ओले भी गिरे, साथ ही अंधड़ के कारण बिजली के खंभे उखड़ गए। अधिक ब्यौरा दे रही हैं हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता।
1: हनुमानगढ़ जिले सहित आसपास के क्षेत्रों में बीते देर शाम तेज अंधड़ के साथ आसमान में घने बादल छा गए और मेघ गर्जन के साथ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कई ग्रामीण व शहरी इलाकों में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज हवाओं के चलते कई जगहों पर बिजली के पोल उखड़ गए और विशालकाय पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए। पेड़ गिरने के कारण कई प्रमुख मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गए। हालांकि इस मौसमी बदलाव और बारिश के कारण पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और झुलसाने वाली लू से आम जन को राहत मिली है। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमान।
0: मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए प्रदेश के 16 शहरों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि राज्य के कुछ पश्चिमी हिस्सों को गर्मी से अब भी निजात नहीं मिली है, वहां उमस भरी गर्मी जनजीवन को प्रभावित कर रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाए जा रहे शहरी सेवा शिविरों में पहले ही दिन लगभग 10,000 मामलों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार ने MSP पर गेहूं खरीद की अवधि बढ़ाकर 19 जून तक की। रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी विभागीय परीक्षाएं अब से कंप्यूटर आधारित होंगी। और पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश में कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में। और नमस्कार में आज आपके साथ है आपके दो साथी, मैं अर्चना चौहान
3: और मैं हिमांशु अवस्थी।
2: तो प्रोग्राम में अब बढ़ते हैं इस प्यारे से गीत के साथ और लौटेंगे तब करेंगे इतिहास की बात।

0: श्रोताओं, वक्त है इतिहास के उन सुनहरे पन्नों को पलटने का जिन्होंने दुनिया की दिशा और दशा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आइए जानते हैं 13 जून की एक दिन घटी कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास सिलसिला। 1731 में स्वीडन की संसद ने स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को मंजूरी दी थी। इस कंपनी की स्थापना भारत, चीन और सुदूर पूर्व के देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। ब्रिटिश और डच ईस्ट इंडिया कंपनियों की सफलता से प्रेरित होकर शुरू हुई ये कंपनी स्वीडन के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण आधार बनी थी।
1: वहीं बात कर ली जाए 13 जून 1888 की, तो अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड ने श्रम विभाग के गठन में संबंधित विधेयक पर हस्ताक्षर किए थे। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य था कामगारों के हितों की रक्षा करना, उनकी कार्य स्थितियों में सुधार लाना और श्रमिक अधिकारों को मजबूत बनाना। यह कदम आधुनिक नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।
0: श्रोताओं, बात 13 जून 1932 की। स्वेज नहर के नियंत्रण को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। यूरोप और एशिया को जोड़ने वाली ये नहर विश्व व्यापार की जीवन रेखा मानी जाती थी। ब्रिटेन का इस पर बढ़ता प्रभाव और मिस्र की संप्रभुता से जुड़े इस प्रश्न आने वाले वर्षों में बड़े राजनीतिक संघर्षों का एक कारण बने थे।

0: 13 जून 1983 यह वह दिन था जब नासा का प्रसिद्ध अंतरिक्षयान पायनियर 10 नेपच्यून की कक्षा को पार कर सौरमंडल की बाहरी सीमाओं की ओर बढ़ने वाला पहला मानव निर्मित यान बना। 1972 में लॉन्च किए गए इस यान ने बृहस्पति ग्रह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां भेजी और अंतरिक्ष अन्वेषण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा।
1: श्रोताओं, 13 जून 2002 संयुक्त राज्य अमेरिका आधिकारिक रूप से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल यानी ABM की संधि से अलग हो गया था। 1972 में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच हुई यह संधि परमाणु हथियारों की होड़ को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। अमेरिका का यह फैसला वैश्विक सामरिक संतुलन और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को लेकर एक नई बहस का कारण बना था।

तो 13 जून के इतिहास से बहुत सारी चीजें जुड़ी थी, जिसमें व्यापार था, श्रमिक अधिकार थे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी और अंतरिक्ष विज्ञान था। और इस तरह से जो नए पन्ने जुड़े इतिहास के किताब में, उसने आज के दिन को ऐतिहासिक बना दिया। दोस्तों, आज का दिन एक और चीज के लिए खास है, और वो खास है क्योंकि आज है वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे। ये क्या होता है? ये बहुत अच्छी पहल है जिसके अंतर्गत अलग अलग दिखने वाले लोगों को समान समझा जाता है, और इसके बारे में हम ढेर सारी बातें आपसे फिर करेंगे, लेकिन इस गीत के बाद।

0: दोस्तों, हम सभी अलग अलग दिखते हैं। किसी का रंग गोरा होता है, किसी का सांवला। कोई कद से लंबा होता है तो कोई कद से छोटा। लेकिन क्या किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसके रंग और रूप से हो सकती है?
1: बिल्कुल
0: शायद
1: नहीं हो सकती
0: नहीं।
1: है, क्योंकि भगवान ने हम सबको अलग अलग बनाया है। और साथ ही साथ आज का दिन यही सिखाता है कि चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, एक चीज़ हमें एक करती है, वो है मानवता। आज है 13 जून का दिन और अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के तौर पर आज को मनाया जाता है। वर्ष 2026 की जो थीम है वो है अपनी त्वचा पर गर्व करें, क्योंकि हर त्वचा का रंग उसका सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, चाहे हम किसी भी ब्रीड के हों, चाहे हम किसी भी रंग के हों, त्वचा के हों, लेकिन ये जो त्वचा है वो ही हमारी पहचान होती है और इस पर गर्व करना ही हमें चाहिए। लेकिन आप सबसे पहले जो ये बात है कि एल्बिनिज्म क्या है और यह आज के दिन को क्यों मनाया जाता है, तो हिमांशु, एल्बिनिज्म एक ऐसी ऐसा कंडीशन है, इसे बीमारी नहीं कह सकते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जब आप जन्मजात से जो रंग लेकर पैदा होते हैं उसी रंग के साथ रहते हैं। शरीर में मेलेनिन नामक तत्व की कमी होती है और इस कारण से ऐसे लोगों की त्वचा, बाल, आंखों का रंग और सामान्य से काफ़ी हल्का दिखाई देता है। यानी कि ये जो बालों का रंग है, आंखों का रंग है, वो हल्का होता है, सफ़ेद हो जाता है। और एल्बिनिज्म वाले लोगों को अक्सर धूप में बहुत परेशानी होती है। उनकी आंखों की रोशनी भी सामान्य लोगों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर होती है, इसलिए उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है और उन्हें बहुत सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और इन समस्याओं के साथ उनको एक और समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है समाज में उनकी स्थिति।
0: दोस्तों, कई बार उन्हें अजीब नज़रों से देखा जाता है, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनसे दूरी बनाकर लगते हैं लोग। खासकर बच्चों और युवाओं के लिए यह अनुभव काफ़ी दुखद हो सकता है। बार बार ऐसी बातें सुनने से उनका

0: जो आत्मविश्वास होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो लैक करता है कहीं ना कहीं,
1: बिल्कुल
0: और वे खुद को दूसरों से अलग महसूस करने लगते हैं। दोस्तों, हमें ये समझना होगा कि किसी व्यक्ति की त्वचा का रंग उसके गुण, उसकी प्रतिभा या उसकी क्षमता को तय नहीं करते। हर व्यक्ति सम्मान और बराबरी का हकदार होता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आसपास ऐसा माहौल बनाएं जहां किसी के साथ उसके रंग या रूप के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। अगर हम किसी अलग दिखने वाले व्यक्ति को अपनापन दे सकते हैं, उसका सम्मान करें और उसे बराबरी का अवसर दें, तो ये समाज और भी सुंदर बन सकता है। तो आइए आज ये संकल्प लें, अपने आप से एक वादा करें कि किसी भी व्यक्ति को उसके रंग या रूप के आधार पर नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व और इंसानियत के आधार पर पहचानेंगे, क्योंकि हर इंसान खास है और हर रंग खूबसूरत है।

0: जी हाँ दोस्तों, दिल वालों की ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे और भी खूबसूरत बनाया जा सकता है अगर हम पर्यावरण पर ध्यान दें। हमने हाल ही में 5 जून को मनाया था पर्यावरण दिवस, और पर्यावरण दिवस पर हमने जाना कि उसको प्रदूषित करने वाले कार कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो नाम हमारे जहन में आता है वो है अविघटनकारी अवयव, जो सैकड़ों सालों तक पृथ्वी पर मौजूद रहता है, मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण बनता है, और वो चीज़ है पॉलीथीन। जी हाँ, पॉलीथीन। हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत, हर चीज़ पॉलीथीन के पैकेज में मिलती है, हम चाहें या ना चाहें, पॉलीथीन का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है, और दिन ब दिन इसका कचरा हमारी धरती, नदियों, तालाबों, पहाड़ों का विषैला बनाती है। हमारे शरीर में माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होता है, और एक रिसर्च के अनुसार अजन्मे बच्चे में भी इसके अवयव मिले हैं। माता के गर्भ में पल रहे फीटस में भी माइक्रोप्लास्टिक के कण मौजूद है। इस तरह से पूरी जो धरती है उसको घेर रखा है प्लास्टिक ने।
1: चलिए तो हमारे श्रोताओं को आसान भाषा में समझाते हैं कि हम पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। श्रोताओं, आप बाजार गए, दुकानदार ने सामान एक प्लास्टिक की थैली में दिया, घर पहुंचकर आपने सामान निकाल लिया और थैली कूड़ेदान में फेंक दी। पूरा काम हुआ बा मुश्किल से 10 से 15 मिनट में।

0: लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल हमने कुछ मिनटों के लिए किया, उसे प्रकृति पूरी तरह नष्ट होने में 100 से 500 साल तक लग जाते हैं। यानी जिस थैली को आज हम फेंक रहे हैं, वो शायद हमारे बच्चों, पोते पोतियों और उनकी अगली पीढ़ियों के समय तक भी इस धरती पर मौजूद रहेगी। यही वजह है कि इसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक कहा जाता है, यानी ऐसा प्लास्टिक जिसे एक बार इस्तेमाल किया जाता है और फिर फेंक दिया जाता है। जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, डिस्पोजल, कप प्लेट, चम्मच और पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले रैपर इसके आम उदाहरण हैं।
1: जी हाँ, और इसका एक विकल्प भी हमारे सामने आ चुका है जो कि ये प्लास्टिक को कम कर सकता है और इसके निस्तारण में सहयोगी बन सकता है, और वो चीज़ है बायोडिग्रेडेबल बैग्स। जी हाँ, ये वे बैग होते हैं जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीवों द्वारा मिट्टी में पूरी तरह डिकम्पोज्ड हो जाते हैं।
0: अब श्रोताओं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका नुकसान क्या है। जब ये प्लास्टिक नदियों और समुद्रों में पहुंचता है तो कई जलीय जीव इसे भोजन समझकर निगल लेते हैं। धीरे धीरे यही प्लास्टिक छोटे छोटे कणों में बदल कर हमारे पानी और भोजन तक पहुंच जाता है। यानी जिस प्लास्टिक को हम फेंकते हैं, वो किसी न किसी रूप में वापस हमारे जीवन में लौट आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका समाधान भी हमारे पास ही है। बाजार जाते समय कपड़े या जूट का थैला आप साथ रख सकते हैं। बार बार प्लास्टिक की बोतल खरीदने के बजाय अपनी रीयूजेबल बोतल का इस्तेमाल कीजिए। छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। आज काम की बात यही है, अगर हम प्लास्टिक का इस्तेमाल कुछ मिनटों के लिए करते हैं तो उसके प्रभाव को सदियों तक झेलना पड़ सकता है।
1: जी हाँ, और जो विकल्प की हम बात कर रहे हैं वो है बायोडिग्रेडेबल बैग्स, जो कि प्राकृतिक अर्क या स्टार्च से बने होते हैं। यह बैग अधिकांशतः मक्का या आलू पर आधारित सामग्रियों जैसे पॉलीलैक्टिक एसिड मिश्रण से बने होते हैं। ये पॉलीथीन जितने ही मजबूत होते हैं और भरोसेमंद भी होते हैं। कई बैग कागज, मनीला भांग जैसी जैविक सामग्री या पॉली कैप्रोलैक्टोन से बनते हैं, और बैग प्रकृति में पूर्ण रूप से मिट्टी, पानी या हवा में मौजूद बैक्टीरिया, कवक, फंगस या अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा समय के साथ छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर या सड़कर प्रकृति में मिल जाते हैं, और इससे आप जो ये प्लास्टिक का कचरा है उसे कम कर सकते हैं। तो आप जब भी बाजार जाएं तो अपने साथ, जैसा कि हिमांशु ने बताया, कपड़े का थैला ले जाएं, लेकिन दुकानदार से ज़रूर कहिए कि जो ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं उसका हमें इस्तेमाल करें। यानी दुकानदार अगर आपको उनमें सामान देगा तो आपके पास में एक ऑप्शन हो जाएगा, और ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स प्रकृति के लिए बहुत सुरक्षित हैं और समय के साथ आसानी से घुल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आप प्रकृति के साथ में एक छोटा सा सहयोग कर सकते हैं और अपनी प्रकृति को सड़ने से, प्रदूषित होने से बचा सकते हैं।
0: और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, धरती हमें विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार में लिया है।

0: दोस्तों, काम की बात के बाद अब कर लेते हैं खास बात। जी हाँ, इस समय दुनिया पर एक जुनून छाया हुआ है, वो है फीफा वर्ल्ड कप का। और फीफा वर्ल्ड कप का ये जुनून 11 जून से शुरू हो चुका है, जिसमें एक विश्व कप में करोड़ों लोग अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगले 6 सप्ताह तक दुनिया के अलग अलग देशों में सिर्फ गोल, जीत, हार और रोमांच की बातें होगी। इस बार का विश्व कप कई मायनों में खास है और पहली बार इसमें 48 टीमें हिस्सा ले रही है। लगभग 1,250 खिलाड़ी मैदान पर अपना दमखम दिखा रहे हैं और इसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त रूप से जो मेजबानी है वो वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप की कर रहे हैं।
1: बिल्कुल। एक ओर जहां 43 वर्षीय स्कॉटलैंड के गोलकीपर क्रेग गॉर्डन जैसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो वहीं दूसरी ओर 17 वर्षीय मेक्सिको के गिल्बर्टो मोरा जैसे युवा सितारे। वहीं फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने 6ठे विश्व कप में उतर कर इतिहास रच रहे हैं। लेकिन श्रोताओं, फीफा विश्व कप का इतिहास सिर्फ मैचों और गोलों तक सीमित नहीं है, इससे जुड़ी कई रोचक कहानियां भी हैं। ऐसी एक कहानी एक डॉग की है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। बात 1966 की है, जब इंग्लैंड में होने वाले फीफा विश्व कप से करीब 4 महीने पहले विश्व कप की प्रतिष्ठित जूल्स रिमेट ट्रॉफी लंदन के वेस्टमिंस्टर सेंट्रल हॉल में लगी एक प्रदर्शनी से चोरी हो गई थी। दुनिया भर में हड़कंप मच गया। पुलिस, सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारी ट्रॉफी की तलाश में जुट गए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर हुआ कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। चोरी के करीब 1 सप्ताह बाद पिकल्स नाम का एक काला सफेद बॉर्डर काली नस्ल का एक डॉग अपने मालिक के साथ टहल रहा था दक्षिण पूर्वी लंदन के अपर नॉरवुड इलाके में। एक झाड़ी के नीचे उसे पुराने अखबार में लिपटा एक पैकेट मिला। जब पैकेट खोला गया तो उसमें वही विश्व कप की ट्रॉफी थी जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही थी। एक साधारण से डॉग ने वो काम कर दिखाया जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां नहीं कर पाई थी। पिकल्स रातों रात दुनिया भर में मशहूर हो गया और उसे पुरस्कार मिले, टीवी कार्यक्रमों में बुलाया गया और एक अंतर्राष्ट्रीय हीरो बना दिया गया। यही तो खेलों की खूबसूरती है, कभी कोई खिलाड़ी नायक बन जाता है तो कभी कोई एक डॉग इतिहास के पन्नों में अपनी जगह बना लेता है।
0: तो दोस्तों, इस रोचक जानकारी के बाद में वापस रुक करते हैं 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की तरफ। 655 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 5,600 करोड़ रुपए पुरस्कार राशि में दिए जाएंगे और यह राशि 2022 के कतर विश्व कप से 440 मिलियन डॉलर में अधिक है। इसका मतलब ये है कि विश्व कप अब केवल खेल का मंच नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे समृद्ध खेल आयोजनों का एक आयोजन बन चुका है। मैदान पर खिलाड़ी सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं खेलते बल्कि अपने देश के सम्मान, करोड़ों डॉलर के पुरस्कार के लिए भी मुकाबला करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं है बल्कि यादगार कहानियों, भावनाओं और अनोखे किस्से का संगम है। तो आने वाले इस विश्व कप में कई नई जानकारियां, नई कहानियां और नए किस्से और जुड़ेंगे इसमें, फीफा कप 2026 में।

0: शनिवार का दिन और शनिवार के दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं एक रेसिपी। और आज की रेसिपी बहुत अलग है क्योंकि गर्मियों के दिनों में बहुत कुछ खाने का हमारा मन नहीं करता। इससे ज़्यादा अच्छा लगता है हमें कुछ ठंडा, टेस्टी और सेहतमंद पीना, यानी कि जो भी हमारे लिए अच्छा बने उसको पीने का मन होता है। ऐसे में बाज़ारों में कई फल मौजूद हैं जिनका रस या शरबत हम गर्मियों में राहत हमें पहुंचाता है। और हाल ही में लीची जो है बाज़ारों की रौनक बनी हुई है। फलों की दुकान पर आप आम के साथ लीची भी देख सकते हैं। और ये एक छोटा सा फल होता है जो कि ना केवल आपको मिठास से भरता है बल्कि ठंडक भी पहुंचाता है।
1: चलिए अब बात कर लेते हैं लीची के कुछ गुणों की। लीची का फल 3-4 घंटे पानी में भिगो कर रखने से और भी ज़्यादा फायदा पहुँचाते हैं। लीची एंटीऑक्सीडेंट होती है, एंटी डायबिटिक होती है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें सैचुरेटेड फैट नहीं होते, इसलिए वजन बढ़ने नहीं देती। साथ में विटामिन बी, विटामिन सी, नियासिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मिनरल्स का बढ़िया स्रोत मानी जाती है। इम्यूनिटी बढ़ाने में ये हमेशा मददगार साबित होती है। इसमें फाइबर और आपके पाचन तंत्र को सुधारने के लिए बहुत सारे गुण मौजूद होते हैं। और वहीं अगर हम WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं की बात करें तो वो भी लीची की वजह से बढ़ते हैं। इतने गुणों की खान होती है लीची। अब इसका शरबत बनाते कैसे हैं, इस विधि को जान लेते हैं।
0: जी हाँ, सबसे पहले जो ताज़ी और पकी हुई लीची है उसे आपको चुनना है। और 250 ग्राम लीची को चुनकर जब आप इसे छील लेते हैं, धो लेते हैं और छिली हुई लीचियों को एक बर्तन में रख लेते हैं। लीची के गूदे को आराम से चाकू से काट कर उसके अंदर से जो बीज है उसको निकाल देते हैं। चाकू से चीरा लगाने के बाद गूदा आराम से हाथ से ही निकल जाता है। बीजों को फेंकने के बाद लीची के छोटे छोटे टुकड़े काट देते हैं और लीची के जो गूदा हमें इकट्ठा मिला है उसे जूसर में डालते हैं। पानी की मात्रा लीची की मात्रा पर निर्भर करती है, यानी अगर आपने 250 ग्राम लीची ली है तो एक बड़ा गिलास ठंडा पानी आप ले सकते हैं। इसे अच्छी तरह से पीस लें और पीसे जाने के बाद जूसर से निकाल लें। इसे छानने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपने इसे अच्छे से नहीं पीसा है तो एक बार फिर से आप इसे जूसर में डालें और वापस से पीस लीजिए। लीची का टेस्ट न्यूट्रिशियस शरबत तैयार है। इसे फ्रेश पीजिए और दूसरों को भी पिलाइए। लीची का जूस पीने के साथ साथ कई ब्यूटी प्रोडक्ट में भी काम आता है। जैसे अगर आपको सनबर्न हो गया है या स्किन में इरिटेशन है तो आप इस रस को लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ये बालों के लिए एक अच्छा कंडीशनर के तौर पर भी काम करता है। यानी कि लीची का जो फल है तो छोटा, लेकिन इसके फायदे कई गुना है।

0: श्रोताओं, खेलों की दुनिया से एक दुखद घटना कल सामने आई जिसमें शूटर कोच जसपाल राणा का निधन हो गया और उन्हें हार्ट अटैक आया था। और जसपाल राणा की बात कर ली जाए तो भारत के सबसे सफल खिलाड़ियों में उनका नाम आता है। भारत के पिस्टल निशानेबाज और सफल कोच के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। 1994 के कॉमनवेल्थ गेम और 1994 के एशियाई खेलों में 25 मीटर सेंटर फायर पिस्टल स्पर्धा में उन्होंने स्वर्ण जीता था और दोहा एशियाड 2006 में 3 स्वर्ण 1 रजत जीतकर इतिहास रचा था। राणा ने 4 कॉमनवेल्थ गेम में 9 स्वर्ण सहित 15 पदक भी जीते थे। सन 2012 की बात कर ली जाए तो जूनियर पिस्टल कोच के रूप में उन्होंने बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं उनको तराशा और आज वे अपना नाम कमा रहे हैं। तो जसपाल राणा को जो पिस्टल और निशानेबाजी है उसमें हमेशा याद किया जाएगा। आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।
1: श्रोताओं, बात कर लेते हैं उनकी जिनका की आज जन्मदिवस है। तो सबसे पहले बात दीपिका कुमारी की। 13 जून 1994 रांची झारखंड में जन्मी भारतीय तीरंदाज। 2012 में लंदन ओलंपिक में उन्होंने हिस्सा लिया। इन्हें निशानेबाजी में झारखंड की गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है। हाल ही में जारी विश्व रैंकिंग में फिर से सीट्स पर अपनी जगह बनाने वाली इस खिलाड़ी को 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्रोताओं, बात पीयूष गोयल की, जो कि उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल का आज जन्म दिवस है। उनका जन्म 13 जून 1964 को मुंबई में हुआ। वो एक जाने माने राजनेता हैं।
0: भारतीय सिनेमा का जाना माना नाम प्रेम धवन, जाने माने गीतकार, संगीतकार और नृत्य निर्देशक, उनका जन्म भी आज ही के दिन 1923 अम्बाला पंजाब में हुआ। रात के अंधेरे में, पवित्र पापी, नया दौर, जिद्दी, शहीद जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने गीत लिखे और उनके लिखे गीत देशभक्ति के गीत जो आज भी अमर हैं और कई जो 26 जनवरी 15 अगस्त पे हम सुनते रहते हैं। प्रेम धवन की बात कर ली जाए तो बेहतरीन देशभक्ति गीतों को उन्होंने अमर किया। प्रेम धवन पीपल्स थिएटर ग्रुप का हिस्सा भी रहे और वहीं उन्होंने सीखा नृत्य और संगीत। 50 से अधिक फिल्मों में नृत्य निर्देशन भी किया और उनके जो कुछ गीत है उनमें है छोड़ो कल की बातें, ए वतन, ए मेरे प्यारे वतन, उड़े जब जुल्फे तेरी, हरियाला सावन जैसी कई सदाबहार को उन्होंने नृत्य निर्देशन भी किया और साथ ही साथ लिखा भी। और उनका निधन हुआ।

0: तो श्रोताओं, इसी के साथ नमस्कार कार्यक्रम का आज का अंक बस यहीं तक। अपनी दोस्त अर्चना चौहान
1: और मुझे हिमांशु अवस्थी को दीजिए इजाजत, लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत। जगदीश ढोली की आवाज में सुनिए ये लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम।
1: जुबिन नौटियाल की आवाज में सुनिए ये सुगम संगीत।
0: तुम्हारी बन जाती है ये, सिर्फ मेरा पागलपन है या

इस गाने के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है साज आवाज और अल्फाज का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करेंगे दिल का रिश्ता फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे गाया है अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों ने। समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म से ये गाना आप सुनेंगी अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में। समीर के बोल और साज है निखिल विनय की।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ेंगे और अब आपको सुनवाएंगे ओमकार फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है राहत फतेह अली खान ने, गुलजार के बोल है और संगीत बत किया है विशाल भारद्वाज ने।

0: बोल बोल के थक गया।
1: क्या हुआ?
0: नया किडबैक चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट।
1: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किडबैक।
2: RBI कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

फिल्म संगीत में अब आगे बढ़ेंगे और अब आपको सुनवाएंगे साजन चले ससुराल फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। समीर के अल्फाज है और नदीम श्रवण का संगीत।

मेजर साहब फिल्म से ये गाना आपने सुना अनुराधा पोडवाल की आवाज़ों में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं दिल ही दिल में फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है अभिजीत ने, समीर के बोल हैं और नदीम श्रवण का संगीत।

फिल्म संगीत की आखिरी पेशकश है दुल्हन हम ले जाएंगे फिल्म से। अलका याग्निक और साथियों की आवाज़ और हिमेश रेशमिया के का संगीत।

0: मान लो।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: गेट लॉस्ट।
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ, नहीं मानो, जो करना कर ले। घड़ी घड़ी ड्रामा कर।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। दिन के ठीक 12 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत की शुरुआत करेंगे निर्मल मिश्रा की आवाजों के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: लोक संगीत कार्यक्रम में अगली रोक रचना आप सुनेंगे ऋचा शर्मा की आवाज में।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत की शुरुआत करेंगे जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंदन दास की गाई हुई गजल। अब लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: कमर्शियल ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सुगम संगीत में। सुगम संगीत में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं पंकज उदास को।

0: धन गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत की आखिरी पेशकश है अदनान सामी की आवाज में।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए कीजिए थोड़ी देर प्रतीक्षा।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर और ड्रोन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है और इसकी सफलता में छोटे शहरों और गांवों के युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री ने खेलों में युवाओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों से एनडीए सरकार युवा नेतृत्व वाले विकास को प्रोत्साहित कर रही है, जिससे देश के युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है और वे अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के दुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी के 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नव नियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है। रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेट्स के पहले बैच को भी शामिल किया। समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। असम में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। यह हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद उसमें आग लग गई। फिलहाल दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत बचाव कार्य जारी है। घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राजस्थान काडर के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्र सरकार में महानिदेशक यानी डीजी स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। केंद्र की कैबिनेट नियुक्ति समिति ने राजस्थान के 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी एमएन दिनेश और बीजू जॉर्ज जोसेफ को केंद्र में डीजी या उसके समकक्ष पदों पर पदस्थापना के लिए सूचीबद्ध करने की मंजूरी दे दी है। इस सूची में इन दोनों अधिकारियों सहित देशभर के विभिन्न राज्यों के कुल 33 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को जगह मिली है, जिनमें 1990 से 1995 बैच तक के अधिकारी शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर डेयरी के संयंत्र का आधुनिकीकरण किया गया है। इस पर 133 करोड़ रुपए की लागत आई है। डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि प्लांट के नवीनीकरण से इसकी दूध प्रसंस्करण क्षमता 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। वहीं दूध पैकिंग की क्षमता भी 16.5 लाख प्रतिदिन पहुंच गई है। पहले इसकी दूध पैकिंग क्षमता 10 लाख लीटर थी। इस मेगा प्लांट का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। इस प्लांट से जयपुर और आसपास के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध मिलेगा। साथ ही पशुपालकों से अधिक मात्रा में दूध खरीद होने से उन्हें सीधा फायदा होगा। पाली के सोजत सिटी में मेहंदी व्यापारियों के लिए एक कार्यशाला रखी गई। डाक विभाग और मेहंदी व्यापार संघ की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में सोजत की विश्व प्रसिद्ध मेहंदी

0: नकदी और अन्य स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा की गई। कार्यशाला में पाली के डाकघर अधीक्षक तरुण शर्मा ने बताया कि डाकघर निर्यात केंद्र छोटे और मध्यम व्यापारियों के लिए वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक आसान और प्रभावी माध्यम है। इस दौरान व्यापारियों को निर्यात पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय पार्सल बुकिंग, कस्टम प्रक्रियाएं, जीएसटी और आयात निर्यात कोड की जानकारी दी गई। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राज्य में अधिकांश हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। अधिक आंधी और बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज भी राज्य के 23 जिलों में तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में रूक रूक कर बारिश का दौर चला। हनुमानगढ़, सीकर, श्रीगंगानगर और चूरू के कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 50 मिलीमीटर बारिश सीकर के दांता रामगढ़ में दर्ज की गई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है किसान भाइयों के लिए कृषि जानकारी आधारित कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाया ने दिनेश राणा जरा घने मानसू राम राम और नमस्कार सा। किसान भाया, खेती बड़ी राज्य का काम काज है ए आपा लघु ही करे हाँ, पर आज आपने जानकारी दी रहा खेत बचाओ अभियान। आज कार्यक्रम में अपने साथ है डॉक्टर जी आर मटोरिया, आप अतिरिक्त निदेशक है कृषि विस्तार खंड जोधपुर। जी आर मटोरिया साहब राम राम।
1: राम राम साहब राम राम।
0: कृषि विस्तार खंड है इन महीने किसा किसा जिला है?
1: इन महीने बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर हाँ, और फलोदी चार जिला है।
0: और जो खेत बचाओ जो अभियान है और भारत सरकार के अनु चालू करी जो है, कई अभियान है?
1: खेत बचाओ अभियान किसानों को अपनी खेती, मिट्टी, पानी और फसलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है हाँ। इसका उद्देश्य खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है।
0: तो इन महीने खेती में जो आप बात बती तो कोई मिट्टी परीक्षण भी हुए?
1: इन महीने सब बड़ी बात है कि इन उद्देश्य है स्वस्थ मिट्टी, संरक्षित पानी और जागरूक किसान। तो किसान आप हर विषय के बारे में जागरूक करना है खेतियों संबंधित हाँ। वास्ते ये अभियान चल रहा है, 1 जून लेके 30 जून तक पूरे राजस्थान में वो अभियान चल रहा
0: है। आज समय अवधि है
1: जी,
0: इन समय अवधि मैंने 1 जून 2026 ले 30 जून 2026 तक ओ खेत बचाओ अभियान जी को है ओ चलेला
1: जी।
0: आपरे विभाग का नहीं सु
1: अभियान के अंदर भारत सरकार का कृषि और कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा निर्देश जारी किया गया है और राजस्थान सरकार का कृषि विभाग आईसीआर जी की अपना कृषि को सब बड़ो इंस्टीट्यूट है, बिंगा संस्थान का वैज्ञानिकगण, आपने जी आठ काजरी का वैज्ञानिकगण, कृषि विश्वविद्यालय का वैज्ञानिकगण और कृषि विभाग से संबंधित जी का विभाग है, बांगा अधिकारीगण गांव में जावेगा हाँ। और गांव गांव में कैंप करके बांधा जानकारी देवेगा।
0: हर गांव में आपरा जी का अधिकारी जावेला और कैंप के माध्यम से इन अभियान की जानकारी देवेला
1: जी,
0: ताकि ज्यादा से ज्यादा अभियान जी की जानकारी है लोगों तक पहुंच सके। मटोरिया साहब, खास जी को अभियान चल रही है तो इनरो उद्देश्य कई है?
1: देखो, खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य है मुख्य कि मिट्टी परीक्षण के आधार पर किसान जी का खाद और उर्वरक को संतुलित और समन्वित प्रयोग करे
0: हाँ।
1: अभी आप के देखने ला रहे हैं किसान एक दूसरे ने देख के ही उर्वरक का उपयोग करे
0: हाँ।
1: जिसे उर्वरक का जितनी पसंद आवश्यकता है ज्यादा मात्रा में आप देने लग रहे हैं और किसान की लागत बढ़ने लग रही है। तो जब पूरा मिट्टी जांच के आधार पर देवेगा तो बाकी लागत भी घटेगी और उत्पादन भी बढ़ेगा। जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण, फसल प्रदर्शन के माध्यम से प्राकृतिक खेती के ने भी बढ़ावा देना को उद्देश्य है और वैकल्पिक उर्वरक और संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन पद्धति का उपयोग हेतु व्यापक जन जागरूकता बढ़ानी है। जी हाँ, आप देखने लग रहे हैं काश्तकार केवल यूरिया डीएपी को ही ज्यादा उपयोग करने लग रहे हैं
0: हाँ?
1: तो इस काश्तकार की जमीन जी की है खराब होने लग रही है, अपनी जमीन का स्वास्थ्य खराब होने लग रहा है। तो बिंगी बजाय आप जी कहा वैकल्पिक उर्वरक है जी हाँ, एनपीके है, एसएसपी है, सिंगल सुपर फास्फेट जी सुपर बोले आपने जमींदार
0: हाँ?
1: बिंगो प्रयोग करने के लिए मैंने बढ़ावा देंगा। बिंगे साके साके जी का जैव उर्वरक है, नैनो उर्वरक है, जैविक खाद है, सूक्ष्म पोषक तत्वों संबंधित खाद है, बंग उपयोग करने के बारे में भी प्रोत्साहित बंद करेंगे। हरी खाद बनाने के बारे में, हरी खाद को आपके खेत में प्रयोग करके और भूमि सुधार करने के बारे में भी बंद जानकारी देंगे ताकि मिट्टी के गुणा में सुधार हुए
0: हाँ।
1: और पोषक तत्व ज्यादा मिले, पानी ज्यादा समय तक रह सके और फसल की पानी

0: ही मांग कम रहे। उपयुक्त फसल अवशेष प्रबंधन, आप आके देखा थोड़ा थोड़ा फसल अवशेष है और आपने पेड़ा की जी पत्तियां है बने, लोग आमतौर पर जलान लाग रहे खेतों के अंदर और बिना बारी बारी जलाने से क्या खेत के अंदर सूक्ष्म जीव है बेबी जल जावे और आपने खेत की उर्वरकता कम हुआ है। इन वास्ते बंद भी प्रबंधन करके वहां कंपोस्ट बनाकर काम में लेने के लिए कास करने प्रेरित कराना।
1: सही बात की आप, मतलब जैविक और प्राकृतिक रूप जी की खाद एवं बन सके तो खेती में किसान भाई ज्यादा सु लाभ प्राप्त कर सके।
0: पारंपरिक और आधुनिक कृषि पद्धतियां जी के बंग समन्वय से मृदा स्वास्थ्य संवर्धन और जल संरक्षण का बढ़ावा देने के बारे में भी आप जानकारी कास करने देवांगे।
1: जल संरक्षण के बारे में जानकारी किन तरह दिया करो आप लोग
0: जी? जी जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में बढ़ावा देना।
1: हाँ,
0: प्राकृतिक खेती की विधियां है जी जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य, ये जी का प्रोडक्ट है कासकर आपके घर पर ही बनावेगो और बन आपका उपयोग लेवेगो। और जैविक खेती की विधियां उन्नत तरीकों कंपोस्ट खाद तैयार करना, वर्मी कंपोस्ट तैयार करनी, हरी खाद तैयार करनी, अंगी विद्या के बारे में लोगों जी के किसान जानकारी देंगे बाद में प्रेरित करेंगा। और जिका गांव में जनप्रतिनिधि है की रूप से भी खेतियों जुड़ा है बांधना कोशिश करेंगा कि भाई 25% आपकी खेती को एरिया जी को है वो धीरे धीरे करके प्राकृतिक खेती के अंदर लेकर के आवे ताकि वहां लागत भी घटे और खाने वाला जी का लोग है बांध भी स्वस्थ भोजन मिले।
1: और इन रहा था किसी जी की बात और ध्यान रखना चाहिए
0: और वहां सके जैव उर्वरक राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, पीएसबी, अन्य जैव कंसोर्टिया जी का है बंगो प्रतिनिधि के बारे में भी प्रोत्साहित करेंगे। नीम आधारित जी का कीटनाशक है और अन्य जीव कीटनाशक जी का है बंग उपयोग करने के बारे में विकास करण जानकारी देंगे ताकि रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग घटे और पशुओं में, आदमियों में, आपने पर्यावरण में जो होने वाला प्रदूषण है, बीमारियां है, बंग के बारे में जी को खासकर अवेयर करके जानकारी करके जागरूक करके और अपने उद्देश्य से बंग उपयोग घटाना। मिट्टी परीक्षण और इसके आधार पर ही जी का बंग फर्टिलाइजर को, खाद को, उर्वरक को उपयोग करने के बारे में जानकारी देंगा। और वहां मैं विशेष रूप हूँ आपने जी की एक प्रचलित पुराने समय से हूँ कि गर्मी की गहरी जुताई करके और समतल करके खेत में मेंढबंदी करके छोटे करता जी क्या है कि एक धारणा ये खेत को पानी खेत में और गांव को पानी गांव में, जो पानी है बिंगो ज्यादा उपयोग हो सके
1: मिट्टी में ज्यादा बरसात रोजी को पानी वो लगे।
0: तो बिंग के बारे में भी कासकरान जी को है तैयार करांगा ताकि वे लोग अब बरसात को सीजन आने वाला है, मानसून आने की तैयारी में है, आगे खरीफ की बिजाई को टाइम है तो भी मैं काश्तकार पूरी जानकारी लेके लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक 2 या 3 सालों काश्तकार जी आप खेत की मिट्टी की जांच करानी चाहिए, बिंग के बारे में भी जानकारी देवांगा। सोयल हेल्थ कार्ड जी को बना के देने लग रहे विभाग, सोयल हेल्थ कार्ड के अंदर लिख के दिए है कभी कौन सी फसल में कितनी मात्रा में कौन सी खाद उपयोग करनी है, कौन सा उर्वरक उपयोग करना है, तो बांगे बारे में भी कासकरण जागरूक करांगा, सोयल हेल्थ कार्ड वितरण भी करांगा ताकि कासकरण हर तरह की जानकारी मिल सके।
1: बहुत जोरदार जानकारी आप दिरा हुआ मटोरिया साहब। और साथ ही जी हूँ आप बात बताई कि भाई जल संरक्षण आप करोला तो उन संरक्षण जी को कुशलतम जी को उपयोग है वो किन तरह से किसान भाई कर सके?
0: देखो जल संरक्षण और कुशलतम उपयोग का मतलब यही है कि पानी की हर एक बूंद को अपन ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सका और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन भी ले सका। तो इसलिए सब पहले बहुत आप खास कारण प्रेरित करें कि आप खेत की मेड़बंदी करो, खेत ने समतल करो ताकि बरसात को पानी आपने खेत के अंदर ही समावे और आगे की फसल में काम हो। फिर कृषि विभाग की कुछ योजना है जिसका मैं किसान अनुदान देने लग रहे थे, खेत में फार्म पॉन्ड बनायो, आपने खेत के जिसको नीचो हिस्सो है बिंग अंदर फार्म पॉन्ड बना लेवा तो बिंग पानी इकट्ठो करिए और जब अपनी फसल में सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा को पानी देगे या बगीचा लगा के आप अपनी आमदन बढ़ा सका। इस टाइप जी का नहरी क्षेत्र है बांगे अंदर डिग्गी बना के भी आप जी को बिंगो फायदा ले सका। इस तरह से ट्यूबवेल को जो पानी आप लेके आवा बिंग में अगर नालियां के अंदर लेके आवा तो 40% पानी आपको खर्च हो जाए। बिंग की बजाय पाइपलाइन पानी लेके आवा तो जितो पानी ट्यूबवेल जमीन निकाला बितो ही खेत में पौधा नहीं मिलेगा, वो भी एक फायदे की चीज है। बूंद बूंद सिंचाई और स्प्रिंकलर का उपयोग करने के बारे में विकास कराना जो है जागृत करांगा। और उद्यान विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है कि बड़ी डिग्गी सामुदायिक जल स्रोत अगर कोई काश्तकार बनाए तो बिना ज्यादा पानी भी मास के 62 लाख लीटर तक पानी आ सके और काश्तकार ने क्षमता के अनुरूप जो 20 लाख रुपया तक अनुदान भी मिले तो 3-4 काश्तकार आपस में साथ मिल गए एक डिग्गी बना सके कट्ठो आपके खेतों में काम ले सके। बिंग बारे में भी जानकारी दे
1: तो बहुत बढ़िया जानकारी बताई साहब। और किसी किसी जी की महत्वपूर्ण बात है
0: फसल सुरक्षा के बारे में भी जानकारी देंगे कि कीट बीमारियां लगे तो आईपीएम पद्धति से क्या बिंगो कंट्रोल करना है, जैव कीटनाशकों का उपयोग क्या करना है, आवश्यकता होना बहुत ज्यादा आवश्यक होने के ऊपर कीटनाशकों को सही सही उपयोग क्या करना है, कितनी मात्रा में करना है, कितना छिड़काव करना है, बांगो कौन सा उपकरण जी का काम में लेना है, बिंग के बारे में पूरी जानकारी बांध देवांगा। और समय समय पर खेत को निरीक्षण करते रहना, रोगग्रस्त पौधा की पहचान करने के बारे में, कीड़ा की पहचान के बारे में विकास करण जी जानकारी देवांगा। उन्नत कृषि मशीनरी है बिंग के बारे में काशकरान मौके पर जानकारी देवांगा। और कृषि संबंध विभाग जितना भी है जिका काशकार कोई लाभ ले सके वांगी योजनाओं के बारे में भी वहां मौके पर जानकारी दी जाएगी ताकि काश्तकार वांगो फायदा उठा सके। बाने मुफ्त साहित्य वितरण भी करो जावेगो और गांव गांव में जी को है।

0: लगा के ज्यादा से ज्यादा जानकारी देगा। किसान भाइयों को प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में भी जो है मौके पर जानकारी दी जाएगी, ताकि किसान सारे के सारे प्राकृतिक खेती को अपना सके। और इसके लिए जो है गांव में प्रचार प्रसार करने के लिए कृषक सखी, पशुपालन सखी और लखपति दीदी, प्रगतिशील नवाचारी किसान सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करांगा और प्रगतिशील किसान का उदाहरण भी बना बतावांगा, ताकि काश्कार की बात सुनकर प्रेरित हो सके। कृषि विभाग की मेरी व्यक्तिगत तौर पर भी एक अपील है काश्कारों की, यहाँ कैंपा को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठावे और आपके खेत को स्वास्थ्य सही करें, आपकी जमीन का उत्पादन बढ़ावे और काश्कार आपकी आमदनी बढ़ावे।
1: ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी आर मटोरिया साहब, आप अतिरिक्त निदेशक कृषि विस्तार खंड जोधपुर सुमा पदारिया, और किसान भाई ने बहुत ही बढ़िया जी की जानकारी आप दे रही कि अभी खेत बचाओ अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, राम राम।
0: राम राम साहब।

अभी किसान भाई सुन रहे थे कृषि जानकारी आधारित कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल और FM सन सिटी चैनल है। प्रस्तुत है महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: बिल्कुल, आपकी धड़कनों की आवाज़ सुन के अनदेखी मुलाकातों के सिलसिले को लेकर हाजिर हैं।
1: जी हाँ, और आशा जी देखिए, दिन का ये समय जब होता है यानी ईद बजकर 15 मिनट, तो हम लेकर आते हैं हमारी सभी सखियों और बहनों का ये पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है
0: नारी वाटिका।
1: और इस वाटिका में हम बात करते हैं ढेर सारी जो कि जुड़ी रहती है हमारी सखियों हमारी बहनों से। तो आज भी ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन क्यों ना पहले इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आपको सुनवाते हैं ये मीठा सा प्यारा सा गीत।
2: धीरे से पलकों की ये गिरती उठती चमन कहती है, धीरे से

0: जी हाँ बहनों, आज का हमारा जो ये कार्यक्रम है ये बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारी इस वाटिका में कहीं ना कहीं हम पहाड़ों की ठंडी हवा की बात करेंगे और हौसलों की नई उड़ान की खुशबू भी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही बात करेंगे कि हमारा भविष्य और हमारा जो बजट है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं कि आज के दिन में क्या है खास, तो ये आपको बताएंगे आशा जी।
1: तो आज है खुशबू अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। तो सखियों, आपने कभी अपने आसपास या राह में चलते ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा जिनकी त्वचा, बाल और यहाँ तक कि पलकें भी पूरी तरह से सफ़ेद या बहुत हल्के रंग की होती है।
0: लेकिन पता है आशा जी, कई बार हमें लगता है ना कि ये या तो कोई बीमारी है, या काफी बार कई लोग ऐसे करते हैं कि नहीं नहीं टच में हमें नहीं आना है, हो सकता है ये किसी प्रकार की छुआछूत की बीमारी हो तो इससे हमें भी हो जाएगी। लेकिन सखियों आपको बता दें कि विज्ञान की भाषा में इसे रंगहीनता कहते हैं।
1: और खुशबू ये एक आनुवंशिक स्थिति इसको माना जाता है।
0: जी
1: इसमें होता क्या है कि शरीर में मेलानिन नामक एक तत्व जो होता है ना, वो नहीं बन पाता, जो हमारी त्वचा को, बालों को रंग दे पाता है ना। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट एक मेलानिन की कमी है। तो जैसे बाल काले नहीं है और सफ़ेद है, आईब्रोज काले नहीं सफ़ेद है, पल के काले नहीं सफ़ेद है, काला रंग नहीं मिला उन
0: जी
1: चीज़ों को, है ना। तो ये कोई बीमारी नहीं है।
0: और एक्चुअल में जो मेलानिन होता है ना, वही आपके स्किन टोन और हेयर्स के कलर्स को इम्प्रूव करता है। किस तरीके का स्किन टोन और कलर आपका रहेगा। लेकिन आशा जी, काफ़ी बार अफसोस की बात ये हो जाती है कि विज्ञान का दौर चल रहा है ना, और इस दौर में भी आज भी दुनिया के कई हिस्सों में लोगों को अंधविश्वास, भेदभाव और सामाजिक रूप से विरोधों का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में होता क्या है, कहीं ना कहीं उपेक्षित व्यवहार भी सहन करना पड़ सकता है, और कारण सिर्फ इतना होता है कि ये लोग हमसे थोड़ा अलग दिखते हैं। तो आज का जो दिन है सखियों, वो आज की जो तारीख है केवल 13 तारीख नहीं है, आज है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस।
1: तो खुशबू ये जो दिन है ये हमें बताता है कि खूबसूरती सिर्फ चमड़ी के रंग में नहीं होती। आज का दिन बताता है कि हर इंसान को सम्मान रूप से जीने का हक है,
0: बिल्कुल
1: और इस तरह के लोगों को किस तरह की हमदर्दी या तरस की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि उन्हें ज़रूरत है कि हमारे जो हमारा साथ उनको मिले,
0: जी
1: बराबरी की ज़रूरत है उनको, और एक सुरक्षित माहौल हम सब उन्हें दे पाएँ। तो अगर आपके आसपास भी रंगहीनता से कोई महिला या पुरुष ग्रसित है तो उन्हें अपने व्यवहार से उन्हें एहसास दिलाइए कि वे भी समाज का उतना ही खूबसूरत हिस्सा है। उन्हें प्यार दें, उन्हें सम्मान दें, इतना कि जितने जर्रे हैं ज़मीन पर उतना कि जितने तारे आसमान पर।

0: सखियो, बात की थी हमने आज के दिन की खास बात की, क्या था आज के दिन में। तो हमने आपको बताया कि आज है वर्ल्ड एल्बिनिज्म डे, और किस तरीके से स्किन से रिलेटेड जो है वो डे है। स्किन की बात करें ना आशा जी, तो वैसे भी स्किन हमारी बहुत सेंसिटिव होती है, और गर्मियों का मौसम चल रहा है तो ऐसे में हमारी स्किन का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। मौसम गर्मियों का है, चिपचिपा मौसम है, तो ऐसे में शरीर को और त्वचा को हाइड्रेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पानी की कमी से शरीर को बहुत सी बीमारियां हो जाती है, साथ ही साथ त्वचा भी इन बीमारियों को झेलती है।
1: और इन दिनों जो त्वचा है ना, बहुत बेजान हो जाती है, रूखी सूखी हो जाती है, खुजली, जलन, डेड स्किन, ये सारी समस्याएं हो जाती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम पानी नहीं पीते। तो भाई खुशबू देखो, नमी है तो नज़ाकत है,
0: जी
1: और पानी की बूंद में छुपा सौंदर्य का राज होता है, और सच्चा और अच्छा ग्लो भीतर से आता है, बाहर से नहीं।
0: और उसका रास्ता जाता है ग्लास, पानी के जरिए। जी हाँ, जो ग्लास में पानी हम भरते हैं ना, वो दिखने में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और सिंपल लगता है, लेकिन उसके क्या है, गुण बहुत सारे हैं।
1: तो ये पानी जब हम पीते हैं तो ये पानी हमें हाइड्रेट रखता है, और हमारी त्वचा को भी स्वस्थ, जवान और चमकदार बनाए रखता है, और त्वचा खुद ही बोल उठती है, वाह क्या निखार है।
0: क्या गजब का नोर है, ना झुर्रियाँ आएगी और ना ड्राइनेस की टेंशन होगी। तो थोड़ी सी केयर ना हमें खुद को भी रखनी पड़ती है, क्यों आशा जी? क्योंकि
1: बिल्कुल
0: हम महिलाएं हैं, दिन भर काम में इतना व्यस्त लगे रहते हैं कि कई बार शीशे में खुद को देखना भी हम भूल जाते हैं, और जब खुद को भूल जाते हैं तो कई बार हमारी त्वचा भी बहुत ज्यादा क्या करती है, खुश्क लगती है, रूखी लगती है।
1: तो ऐसे में हमारी सखियां खुशबू ये जानती है, लेकिन
0: जी
1: जस्ट वो अपने काम में भूल जाती है कि उन्हें क्या करना है। तो भाई
0: हाँ
1: गर्मियों का मौसम है तो 12 से 15 ग्लास पानी जरूर पिए, तेज धूप से बचें और केमिकल युक्त प्रोडक्ट से बचें।
0: और इसके अलावा कैफीन, अल्कोहल और जंक फूड। जी हाँ सखियों, ये जो इस तरीके का जो खाना होता है वो शरीर में पानी की कमी को

0: और ज़्यादा कम कर देता है और इससे पाचन क्रिया पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में कैफीन, अल्कोहल और जंक फूड का जो सेवन है वो कम से कम करें।
1: और इसके साथ साथ मौसम है ना, हमें बहुत सारे ऐसे फल देता है जो पानी से भरपूर होते हैं,
0: जी
1: है ना। तो फलों का सेवन करें, सलाद, छाछ, जूस, अंकुरित अनाज, ये सब शरीर को हाइड्रेट रखते हैं। और जब आपका शरीर हाइड्रेट रहेगा तो नेचुरल है आपकी त्वचा जो है वो चमकदार तो रहेगी रहेगी।
0: और ऐसे में ना आशा जी, हमें किसी मोबाइल की फिल्टर की जरूरत नहीं रहेगी, है ना। अगर हम खुद हमारी बॉडी को फिल्ट्रेट रखेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, तो बिना फिल्टर भी हमारी फोटो बहुत अच्छी आएगी।
1: तो चलिए बातें करेंगे और भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: खुशबू पर्वतों के पेड़ों के आसपास सैर करते हुए बिल्कुल आपके अंदर भी एक नया जोश आ गया
1: बिल्कुल, कि
0: होगा।
1: काश हम भी पर्वतों पर जाएं और पर्वतों के इस पार देखें कि भई आखिर कैसी दुनिया बसती है।
0: तो बिल्कुल आज हमारी इस वाटिका में पहाड़ों की ठंडी हवा और हौसलों की नई उड़ान की खुशबू भी है, और जो ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों को आज महिलाएं भी नाप रही है, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि ट्रैकिंग सिर्फ पुरुषों का काम है या
1: जी
0: ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा आज बिल्कुल भी नहीं है। ट्रैकिंग का मतलब

0: सिर्फ पहाड़ पर चढ़ना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर के डर को दूर भगाने का एक माध्यम भी है, और आज ये डर दूर भगा रही है महिलाएं भी।
1: जी। और आशा जी देखिए, जब आप शहर की भीड़भाड़ से दूर किसी पहाड़ पर जाती है ना, इससे आपका मन तो बिल्कुल शांत होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक तनाव भी पीछे छूट जाता है ना। कई बार जो है महिलाएं अक्सर जॉब से, घर के कामकाज से इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती है ना, तो आज के इस दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम पहाड़ों की शुद्ध हवा लें और अपने तनाव को कम करें।
0: तो जब हम पहाड़ पर जाते हैं तो भीड़ भाड़ से दूर शांति, एक अनोखी शांति महसूस होती है,
1: जी
0: जैसा कि आपने कहा कि वो तनाव बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो जब हम पहाड़ों पे जाएं, अगर महिलाएं पहाड़ों पे जाती हैं तो उन्हें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। उन्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होता है, उन्हें अलग टेंट लेकर रहना ज़रूरी होता है, या किसी महिला के जो गाइड के अंदर अगर हम वो ट्रैकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो सुखद होती है ट्रैकिंग।
1: जी आशा जी, कई बार ऐसा होता है ना कि महिलाएं डरती है कि भाई हम अकेले जा रहे हैं, है ना, सोलो यानी अकेले जाते हैं, तो ऐसे में हमें अगर प्रॉपर गाइड नहीं मिलता है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, या फिर किसी तरीके की कोई समस्या हो जाती है, तो कई बार अक्सर ऐसा देखा जाता है कि महिलाएं अकेले कदम उठाने से डरती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आजकल बहुत सारी जो फीमेल ट्रैकिंग कंपनीज है वो 100% ये अश्योरिटी देती है कि भाई नहीं, उनके ग्रुप में लगभग 35% जो है वो फीमेल रहे ही रहे, है ना। तो ऐसे में बहुत सिंपल हो जाता है कि महिलाएं जो है वो महिलाओं के साथ कंफर्ट फील करती है, और ऐसे में स्पेशल सुरक्षा उनको मिलती है, अलग से उनको टेंट मिलते हैं, साथ में उनकी जो गाइडेंस होती है ना वो भी प्रॉपर होती है कि किस तरीके से विमेंस सेफ्टी को ख्याल में रखते हुए आपको ट्रैकिंग करनी है।
0: तो आप भी अगर ट्रैकिंग पे जाने का सोच रही हैं तो बिल्कुल भी डरे नहीं, आप जा सकते हैं। हर तरह की सुविधाएं आपको मिल सकती है, वहाँ पे मिलती ही है, और आप उस ट्रैकिंग को एंजॉय कर सकते हैं।

0: इस सुहाने सफ़र को, इन खूबसूरत वादियों को बिल्कुल आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो अगर आप प्रैक्टिकली तौर पर जाना चाहती हैं इन खूबसूरत वादियों में, तो आपको बता दें कि सबसे पहले अपने शरीर को तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम विशेष रूप से पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो है ना।
1: जी
0: और अगर आप इस तरह का मन बना रही हैं तो 1 महीने से तैयारी शुरू कर दें।
1: और देखिए, ट्रैकिंग जो ऐसी चीज़ है ना आशा जी, इसमें शरीर की बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, तो उस एनर्जी को हमें शुरू से सेव करना पड़ता है। तो ऐसे में सखियों, कम से कम 1 महीने से पहले आप तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। रोज़ाना कोशिश करें कि आप पैदल चलें, और इसके लिए कम से कम 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने की आदत डालें, ताकि आपकी बॉडी का जो वो स्टैमिना है वो बन पाए ट्रैकिंग के लिए।
0: और अगर आप रेगुलर बेसिस पर लिफ्ट का इस्तेमाल करती हैं ऊपर नीचे जाने के लिए, तो उसको बंद कर दें और उसकी बजाय सीढ़ियाँ चढ़ें, ताकि आपको इसकी आदत पड़े। और इससे होता क्या है खुशबू, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते हैं तो
1: जी
0: हमारे पैरों की मांसपेशियाँ बहुत मजबूत होती है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, ताकि जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, तो ये समस्याएँ फिर नहीं होती कि हमारे सडन पैर दुखने लग जाते हैं, हमारी कमर दुखने लग जाती है। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आप अपने आप को, अपने पूरे शरीर को 1 महीना पहले ही प्रैक्टिस देना शुरू कर दें।
1: जी और कई बार ऐसा होता है ना आशा जी कि अक्सर हम छोटी मोटी चीज़ें जो होते हैं ना वो भूल जाते हैं कि ट्रैकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, नहीं लेकिन वो तो पीछे छूट गई, तो ऐसे में ट्रैकिंग का मज़ा ख़राब हो जाता है। तो सखी, बहुत सारी छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जिन्हें अगर आप अपने बैग में रख कर चलें, तो इससे आपकी जो ट्रैकिंग ट्रिप है उसका मज़ा दोगुना हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ है कि ट्रैकिंग हमेशा ऊँचे पहाड़ों पर होती है, तो वहाँ का मौसम एल्टीट्यूड भी हाई रहता है और ऑक्सीजन की कमी रहती है, तो ऐसे में ऑक्सीजन बैग या टैंक आप जरूर कैरी करें, जिससे आपको सांस लेने में तकलीफ बिल्कुल भी ना हो।
0: और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आ जाती है वो है दवाइयाँ। अगर आपको कोई बीमारी है, बीपी है, शुगर है, तो आप वो दवाइयाँ ज़रूर साथ में ले लें, क्योंकि आप किस तरह की दवाइयाँ लेती हैं, कौन से डॉक्टर ने किस तरह की दवाई रिकमेंड की है, वही दवाइयाँ आप अपने साथ लेके जाएं। और साथ में अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है तो भी, सिर दर्द की, पेट दर्द की, या नॉर्मल फीवर की, इस तरह की जो नॉर्मल दवाइयाँ हैं, वो अपने साथ ज़रूर और ज़रूर रख लें।
1: जी और इसके अलावा आशा जी, कई बार ऐसा होता है ना कि महिलाएं लालच में अधिक सामान कैरी करके चलती है ना। देखिए ये तो
0: ये
1: एक
0: तो होता
1: बेसिक
0: है,
1: सी,
0: ये तो होता
1: हाँ
0: ही खुशबू। अगर कोई एक पुरुष बाहर जाता है घूमने के लिए, तो वो जस्ट 4 ड्रेसेस पैक करेगा और उसकी हो गई पैकिंग। लेकिन महिला जब पैकिंग करती है, तो वो ये देखती कि उस वक्त वहां का कैसा मौसम होगा, उस वक्त अगर धूप हुई, गर्मी हुई, तो अगर उस वक्त बरसात हुई,
1: जी
0: तो वो हर तरह की पैकिंग में अपना सामान, अपने कपड़े डालती है। अच्छा, प्लस ये भी होता है कि हमारा मूड क्या होगा पहनने का, तो
1: हाँ
0: हम वो भी कपड़े लेते हैं। तो अगर आप पैकिंग कर रहे हैं, आपके मूड के हिसाब से कपड़े को भी पैकिंग कर रहे हैं, तो कम ले सामान
1: हाँ उतना ही ले जितना
0: जितने।
1: आप उठा पाएं, है ना। इसके अलावा बहुत सिंपल सी चीज़ें जो बेसिक नीड्स की होती है, जैसे खाने पीने का छोटा मोटा सामान है, पानी की वाटर बोतल आपको ज़रूर कैरी करनी है, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्कुल भी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में अगर बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी तो आपका जो ट्रैकिंग का मज़ा है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा।
0: इसके साथ साथ एक और चीज़ है, चश्मा है, शूज़ है ना। ये आप अगर चलने में, आपको सडनली आपको ये पता चले मुझसे तो चढ़ा ही नहीं जा रहा,
1: जी
0: तो एक स्टिक होनी चाहिए जिसके
1: हाँ
0: सहारे सहारे आप चढ़ सकें। तो सखियों, नारी वाटिका में हम

0: ने जाना है कि पहाड़ हमें सिर्फ ऊंचाई पर चढ़ना नहीं सिखाते, बल्कि जीवन की मुश्किलों से लड़ना भी सिखाते हैं। तो डर को पीछे छोड़िए, अपने जूतों के फीते बांधिए और प्रकृति की इस सुंदर गोद में एक बार जरूर जाइए।
1: और देखिए कि पर्वतों के उस पार की दुनिया कैसी
0: कैसी
1: है।
0: है।

0: आज तो पार्टी चाहिए।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
0: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
0: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो खुशबू घूम के आ गई, पर्वतों के पेड़ों के पास चढ़ाई करके आ गई
4: जी। अभी सोच के इतना अच्छा लगता है ना आशा जी। तो जो लोग जाते होंगे ना, उनका मूड और तनाव कितना, मतलब तनाव कम होता होगा और मूड कितना अच्छा होता होगा।
3: लेकिन एक बात है, सब जगह घूम लो लेकिन घर लौटना ही है
4: जी। और देखिए, घर लौटने पर हमारी जो रसोई है ना, वो हमारा इंतजार कर रही होती है,
3: क्योंकि हमारा घर हमारी दुनिया होता है और इस दुनिया को सुंदर और सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेवारी भी है ना। और तो आज हम अब बात करेंगे ऐसे विषय पर जो सीधा हमारे बजट और हमारे भविष्य से जुड़ा है, और ये जो विषय है वो है ऊर्जा संसाधनों की बचत। तो किस तरह से हम छोटी छोटी बातों को अपनाकर घर के अंदर छोटे छोटे बदलाव लाकर हम अपनी आदतें बदलकर बहुत सारी बिजली बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं और ईंधन भी बचा सकते हैं
4: जी। और आशा जी, हमारे कार्यक्रम का तो नाम ही है नारी वाटिका, यानी कि एक ऐसा बगीचा जहां हम और आप मिलकर घर, परिवार, सेहत और समाज की बातें करते हैं। तो हमारा घर कैसे पीछे ही छोड़ सकता है, जैसा कि विषय है हमारा ऊर्जा संसाधनों की बचत। सखियों, ऊर्जा यानी कि हमारी बिजली, हमारा पानी और हमारी रसोई गैस, जी हाँ, ये सभी हमारी जीवन की वो लाइफलाइन है जिस पर हमारा जीवन टिका हुआ है।
3: तो ये जो बिजली है, पानी है, ईंधन है, ये हमारी लाइफलाइन है। इनके बिना हम जी नहीं सकते, इनके बिना हमारा जीवन एक दिन भी नहीं चल सकता है। चाहे वो पानी ले लो, चाहे बिजली ले लो, चाहे ईंधन ले लो, है ना। तो इनको बचाना भी हमारी जिम्मेवारी हो जाता है।
4: और हमें तो घर की लक्ष्मी की संज्ञा दी गई है आशा जी। तो घर के छोटे छोटे बदलावों से ही हम ऊर्जा और अपने घर का बजट जो है वो दोनों बचा सकते हैं।
3: और ये जब बचाते हैं ना, तो हम केवल पैसा नहीं बचाते बल्कि अपने बच्चों के लिए एक बेहतर कल भी बचाते हैं।
4: और बेहतर कल हमें अगर बचाना है तो उसकी शुरुआत तो आज से ही करनी होगी। तो सखियों, आइए कुछ जानते हैं ऐसी छोटी

0: मोटी सी रसोई टिप जिनके उपयोग से आप रसोई गैस को बचा सकती हैं। तो सबसे पहला टिप क्या है वो
1: वो
0: बताएंगी आशा
1: ये
0: जी।
1: है कि खाना बनाते समय हमेशा बर्तनों को ढककर रखें। जब बर्तनों को ढककर खाना बनाते हैं तो खाना जल्दी भी बनता है, इससे गैस की बचत होती है।
0: और हमारी सखियां सोच रही होगी कि भाई ये क्यों जरूरी है, देखिए रसोई गैस का दाम बढ़ रहा है, तो ऐसे में तो इन छोटी मोटी आदतों को अपना कर ही हम ऊर्जा को बचा सकते हैं। तो अगली जो टिप है वो ये है कि फ्रिज में जब हम कोई भी चीज़ रखते हैं उसे अगर आपको वापस गर्म करना है तो ठंडी चीज़ों को निकाल कर तुरंत गैस पर ना रखें, इससे ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। उन्हें थोड़ी देर पहले निकाल कर कमरे के तापमान पर आने दें और उसके बाद ही आप उन्हें गर्म करें।
1: और साथ साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहती हूँ इनके साथ में कि जब भी आप खाना बनाते हैं तो पहले प्लानिंग कर लें, यानी आपको सब्जियाँ काटनी है तो वो काट के धो के पहले से ही रख लें। इसके साथ जो चीज़ें डलती है, टमाटर, हरी मिर्ची, लहसुन, प्याज, उसको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है,
0: जी
1: तो वो पहले से प्रिपेयर होना चाहिए आपका कटा हुआ। उसके बाद आप खाने बनाने की शुरुआत करें। कई बार क्या होता है, महिलाएं क्या करती है, पहले गैस पर कढ़ाई कुकर चढ़ा देती है, उसके बाद फ्रिज में जाती है, सामान लाती है, वो सिम पे गैस जलता रहता है और तेल जो है जलता रहता है, समय समय भी बर्बाद होता है, गैस
0: हाँ
1: भी बर्बाद होती है। तो
0: जी
1: पहले पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग के बाद ही आप गैस को जलाएं और खाना बनाएं।
0: और आपने बात की है कटिंग की, तो इसी में हम बता दें सखियों कि अगर कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं जैसे दाल है, चावल है, चने हैं, तो इन्हें आप काफ़ी देर पहले भिगो दें, लगभग 4 से 5 घंटे पहले। तो इससे होता क्या है, एक तो इन पर लगे हुए जितने भी पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी धुल जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि जब आप इन्हें भिगोते हैं ना तो ये पकने में काफ़ी कम समय लेते हैं जिससे ऊर्जा की बचत होती है।
1: तो इन ऊर्जा संसाधनों की बचत की हम बात करेंगे और भी, पहले सुनते हैं ये प्यारा संगीत।

0: खुशबू, हम बात कर रहे थे बचत की, ऊर्जा संसाधनों की, कैसे बचत करके हम आने वाला भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं,
1: जी
0: क्योंकि आज की जो बचत है वो आने वाले टाइम में हमारे ही काम आने वाली होती है। तो हमने बात की किस तरह से प्लानिंग करके आप रसोई अपनी शुरुआत करते हैं तो गैस की बचत होती है, साथ साथ एक और बड़ी बचत है, वो है बिजली की बचत। तो वो किस तरह से हो?
1: देखिए आशा जी, बहुत सिंपल सिंपल से टिप्स है बिजली की बचत। तो अगर आपको करनी है ना, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम तो जोधपुर जैसी सूर्य नगरी में रहते हैं, तो ऐसे में बिजली का खर्च अगर हमें घटाना है तो हम किस तरफ शिफ्ट हो सकते हैं? हम शिफ्ट हो सकते हैं सोलर ऊर्जा की तरफ, है ना। घरों पर अगर हम सोलर पैनल्स लगवाएं तो सोलर ऊर्जा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम बिजली की बचत कर सकते हैं।
0: और इसी के साथ साथ सूरज की रोशनी का फायदा भी उठा सकती हैं। दिन के समय दरवाजे खिड़कियां खुले रखें ताकि आपको लाइट की जलाने की जरूरत नहीं पड़ती
1: जी
0: है, और बेवजह लाइटें ना जलाएं। कमरे से आप बाहर जा रहे हैं तो लाइट है, पंखा है, एसी है, वो बंद कर दें ताकि बिजली की बचत हो सके।
1: अच्छा जी, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, सभी लोग जानते हैं, लेकिन अक्सर जो है वो भूल जाते हैं। और देखिए बच्चे जो होते हैं ना घर में, उनकी आपको ये आदत ज़रूर डालनी है कि बेटा अगर आप इस कमरे से बाहर जा रहे हैं तो तुरंत कमरे की जो लाइट है, फ़ैन है, वो स्विच ऑफ करें। तो ऐसे में शुरू से ही उनकी एक हैबिट रहती है कि नहीं, हमें ऊर्जा की बचत करनी है।
0: और साथ साथ में हम रहते हैं सूर्य नगरी में, तो यहाँ सूरज की रोशनी बहुत होती है और लोग सोलर पैनल लगा भी रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है, वो है पानी।
1: जी
0: पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत अभी हमने पिछले दिनों देखने को हमें मिली, और आज भी है कई कई इलाकों के अंदर।
1: जी
0: तो पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना ही है, ये अगर हम संकल्प लेके चलते हैं तो आने वाले टाइम में जो हम पानी जो है उसकी मतलब बचत, वो हमारी, वो पानी हमारा जीवन है। क्योंकि देखो खुशबू, पानी ही ऐसी चीज़ है जो नकली नहीं बनाए। हमने हवा नकली बना दी है, एसी है, कूलर है, पंखे है, लेकिन पानी नकली नहीं बनाई। ये एक ऐसा संसाधन है जिसकी हमें बचत कंपल्सरी रूप से करनी ही करनी है।
1: और देखिए पानी तो प्रकृति है तो ही बरसेगा, है ना। तो ऐसे में प्रकृति की भी हमें बचत करनी है, पेड़ पौधे लगाने हैं, जितने पेड़ पौधे लगाएंगे उतनी ही अच्छी बरसात होगी। तो देखिए सखियो, एक समझदार नारी वही होती है जो घर को सही ढंग से चलाती है, और अगर हम सब मिलकर ये छोटी छोटी कदम उठाते हैं तो हमारी घर का खर्चा भी घटेगा और देश की ऊर्जा भी बचेगी।

0: सखियों कहते हैं दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, जिंदगी ख्वाब सही ख्वाब सजाते रहिए, नफरतें बहुत है इस जमाने में, जहां मौका मिले बस प्यार लुटाते रहिए।
1: बिल्कुल आपने सही कहा आशा जी। देखिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, तो इसलिए इसे खुलकर और प्यार से जीना तो बहुत ज़रूरी है। अक्सर हम ये कहते हैं कि ज़िंदगी 2 दिन की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें उदास रहना है कि नहीं, हमारे पास तो बहुत कम समय है ना। सिर्फ अगर आपको 2 दिन मिले हैं ना, तो उसे आप खुलकर जिए।
0: और खुलकर जिए, हमेशा चेहरे पर मुस्कुराहट रखें, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को अच्छा लगता है। जो हंसते हैं, खेलते हैं, मुस्कुराते हैं, उन लोगों के बीच में सभी लोग जाना पसंद करते हैं। और ऐसे ही जब हंसते खेलते ज़िंदगी हम बिताते हैं, तो ज़िंदगी होती भी बहुत लंबी है।
1: तो बस हम तो हमारी सखियों को यही कहना चाहेंगे कि 2 दिन की जिंदगी है, इसे हंसकर गुजारो, न दिल में शिकवा रखो, न किसी को दिल से उतारो।

0: सखियों, प्यार वो भाषा है जो गूंगे भी बोल सकते हैं और बहरे भी सुन सकते हैं। एक छोटी सी मुस्कान और प्यार के दो मीठे बोल किसी उदास चेहरे पर रौनक ला सकते हैं।
1: जी, तो इन उदासी भरी चेहरी को आप थोड़ा सा दूर हटाइए और अपने चेहरे पर अच्छी सी और प्यारी सी मुस्कान लाइए। और इन्हीं सब बातों के साथ में अब आशा जी, हमारी प्रोग्राम का जो समय है वो खत्म हो चला है, तो क्यों ना चलते चलते हमारी सखियों को हमारी टीम से मिलवा देती हैं। तो सखियों, आपको बता दें, HPT पर आज हमारे साथ बनी थी विक्रम सिंह भाटी और PK सेन, साथ ही कंट्रोल रूम से हमारे साथ थी राय सिंह राव और FM पर हमारे साथ बनी थी CL सोनी।
0: कंसोल से प्यारे प्यारे गीत आप तक पहुंचाए थे मोनिका ने और इस प्रोग्राम की परिकल्पना और प्रस्तुति की थी राजेश लामरोड़ ने। संयोजन था मनीष सोलंकी का। और अब अपनी रेडियो से की आशा और
1: खुशबू को दीजिए
0: इजाजत।
1: इजाजत। नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अग्री चैनल और एफएम सन सिटी चैनल है। कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे, स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल पोत पर अमरीकी नौसेना के हमले का कड़ा विरोध किया। हमले में 3 भारतीय नाविकों की मौत हुई थी। वायुसेना का AN-32 विमान असम के जोरहाट स्टेशन पर दुर्घटनाग्रस्त। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि इस यात्रा से भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नीस से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। खासकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी स्टेम क्षेत्रों में छात्रों को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया,
3: वहाँ ये स्पष्ट सोच है कि फ्रांस जैसी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ जिनके साथ भारत की एक विशेष वैश्विक रणनीतिक भागीदारी है, केवल सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि लोगों के बीच मजबूत संबंधों पर आधारित होनी चाहिए।
2: राजदूत सिंगला ने कहा कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी कल स्लोवाकिया के लिए रवाना होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा यूरोपियन यूनियन के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, जिसमें स्लोवाकिया एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान भागीदार है। स्लोवाकिया यात्रा के बाद प्रधानमंत्री फ्रांस के एवियन जाएंगे, जहां वे 16 और 17 जून को आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 में भारत की मौजूदगी दुनिया में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उसके प्रति देशों के विश्वास को दर्शाती है। उन्होंने बताया कि लगातार 8वां G7 शिखर सम्मेलन है जिसमें भारत को आमंत्रित किया गया है। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पेरिस में आयोजित वाइवा टेक 2026 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होंगे। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: स्लोवाकिया में भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अंतिम रूप लेने से भारत और स्लोवाकिया के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा क्षेत्र में संयुक्त उत्पादन और शोध को बढ़ावा देने के इच्छुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं।

0: पहली बार 9 महिला कैडेट को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उत्तराखंड स्थित भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में आज 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इस दौरान युवा कैडेट्स ने अनुशासन, परिश्रम और सैन्य गौरव का अनुकरणीय प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आईएमए स्थित ऐतिहासिक चेटवुड भवन के समक्ष आयोजित परेड ग्राउंड में कुल 515 जेंटलमैन और महिला कैडेट ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। इनमें 34 कैडेट मित्र राष्ट्रों से हैं, जो प्रशिक्षण पूरा कर अब अपने अपने देशों की सेनाओं में शामिल होंगे। परेड का निरीक्षण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विंग ऑफिसर के रूप में किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा,
2: इन एन एरा ऑफ रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड कॉम्प्लेक्स ग्लोबल Governments, the Indian Army must remain adaptive and future ready. I urge you to be lifelong leaders, learners, courageous decision makers and ethical leaders.
1: पासिंग आउट में प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित सॉर्ड ऑफ ऑनर विशाल कुमार को प्रदान किया गया। ऑर्डर ऑफ मेरिट में भी ऑफिसर कैडेट विशाल कुमार प्रथम स्थान पर रहे, प्रिंस राज दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तेजस भट्ट ने तीसरा स्थान हासिल किया। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद के डुंडीगल स्थित वायुसेना अकादमी में 217वें बैच की संयुक्त दीक्षांत परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने नवनियुक्त अधिकारियों से बदलती युद्ध तकनीकों के अनुरूप खुद को तैयार रखने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध में ड्रोन, उपग्रह और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों की भूमिका बढ़ रही है।
3: राडार, सैटेलाइट, ड्रोन, सेंसर और रोबोटिक्स जैसे अनेक सिस्टम आज के युद्ध में डिप्लॉय हैं, जिनमें न तो फाइटर का पता चलता है न उसकी मशीनरी और इक्विपमेंट का। तो अब तो ऐसे सिनेरियो भी सामने आ रहे हैं जहां पूरी तरह से अपने एडवर्सरी के ट्रैफिक सिस्टम और सीसीटीवी तक को कंट्रोल कर लिया जा रहा है, और आज वारफेयर की डेफिनेशन काफी हद तक बदल चुकी है।
0: समारोह में सुखोई 30, एमकेआई, सारंग और सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम द्वारा हवाई प्रदर्शन किया गया। रक्षा मंत्री ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ को लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल रोधी तथा मध्यम दूरी की पोत रोधी क्षमता का प्रदर्शन करने वाले लगातार 3 सफल परीक्षणों के लिए बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इन परीक्षणों से भारत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हमले रोकने में सक्षम विशिष्ट देशों के समूह में शामिल हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय बदलावों को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने आयोग को सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संरचना में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में गृहमंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने अवैध प्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने तथा उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत में खाड़ी में अमरीकी नौसेना के हमलों पर कड़ा विरोध जताया है। इन हमलों में 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। डॉ जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों पर इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है। एक रिपोर्ट।
4: ओमान तट पर टैंकर एम्प्टी स्टेटेबेलो पर अमेरिकी हमले में 3 भारतीय चालक दल के सदस्यों की मौत के कुछ दिनों बाद यह बातचीत हुई। जहाज पर भारतीय चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। इनमें से 21 सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस घटना के बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए अमेरिकी राजनयिक को नई दिल्ली में तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इससे पहले कहा था कि भारतीय चालक दल के सदस्यों को लिए जाने वाले व्यापारिक जहाजों पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। समाचार कक्ष से मेघना शर्मा।
0: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि भारत के शहरों को आर्थिक रूप से मजबूत, पर्यावरण के अनुकूल, सामाजिक रूप से समावेशी, तकनीक आधारित और चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संस्थान ने देश में शहरी विकास को दिशा देने और शहरों की क्षमताओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुदरा मुद्रास्फीति इस वर्ष मई में बढ़कर 3.93% हो गई है। लगातार पांचवें महीने महंगाई में वृद्धि दर्ज हुई है। अप्रैल में ये

3.88% थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बढ़कर 4.25% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 3.53% रही। भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान आज सुबह असम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये हादसा जोरहाट वायुसेना स्टेशन पर हुआ। विमान क्रैश होने के बाद आग लग गई। वायुसेना ने कहा है कि दुर्घटना के कारणों का

0: ईरान ने कहा है कि वह अमरीका के साथ जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए अंतिम शांति समझौते पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा जब तक उसकी प्रमुख शर्तें पूरी नहीं हो जाती। हालांकि ऐसी खबरें हैं कि दोनों पक्ष शुरुआती समझौते के करीब हैं।
1: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और आने वाले दिनों में इस पर डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। हालांकि ईरान ने कहा है कि वो तब तक स्थायी समझौता नहीं करेगा जब तक अमरीका अपनी नौसैनिक नाकाबंदी नहीं हटाता और अरबों डॉलर की फ्रीज की गई परिसंपत्तियों के नुकसान की भरपाई नहीं करता। इस बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रही गुप्त वार्ता में अमरीकी और पाकिस्तानी मध्यस्थों ने पुष्टि की है कि दोनों पक्ष शांति समझौते के मसौदे पर सहमत हो गए हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वह ईरान के नागरिक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को मंजूरी देने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए तेहरान को परमाणु हथियार निर्माण से जुड़ी बुनियादी ढांचे को खत्म करना होगा। ये स्पष्टीकरण तब आया है जब ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कल प्रस्तावित अमरीका ईरान परमाणु समझौते का विवरण प्रस्तुत किया। फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टुनेन ने रूस से तेल खरीदने के भारत के निर्णय का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने पश्चिमी देशों की निर्धारित मूल्य सीमा का पालन किया है। फिनलैंड में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि ये मूल्य सीमा वैश्विक तेल आपूर्ति को बनाए रखने और रूस के मुनाफे को सीमित करने के लिए बनाई गई थी। नीति आयोग और जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में भारत जर्मनी विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए एक बैठक हुई। बैठक में स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ विकास, कृषि सुधार, जल प्रबंधन और हरित अर्थव्यवस्था में छोटे और मध्यम उद्यमों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और सतत विकास के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए हैं। ये उपलब्धि उनकी कंपनी स्पेस एक्स के शेयर बाजार में शानदार शुरुआत के बाद हासिल हुई है। स्पेस एक्स के शेयरों का मूल्यांकन बढ़कर लगभग 2,10,000 करोड़ डॉलर हो गया है। कारोबार के पहले दिन स्पेस एक्स के शेयरों में 19% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलियाई बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत की दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। सिडनी में जापान की अकाने यामागुची ने सिंधु को पराजित किया। इसके साथ ही प्रतियोगिता में भारत का सफर समाप्त हो गया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी हो रही है। टॉस का समय दोपहर 1 बजे निर्धारित था, लेकिन तेज बारिश के कारण टॉस अभी नहीं हो पाया है। ये मैच हिमाचल के धर्मशाला में खेला जाना है। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी आज रात गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 दिन की फ्रांस और स्लोवाकिया यात्रा पर रवाना। कहा, यात्रा से फ्रांस के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। स्लोवाकिया के साथ द्विपक्षीय सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में कैडेटों की सराहना की। कहा, पहली बार 9 महिला कैडेट का शामिल होना महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। और धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में बारिश के कारण देरी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। प्रस्तुत है साज आवाज और अल्फाज का कार्यक्रम फिल्म संगीत। फिल्म संगीत का आगाज करेंगे धुरंधर 2 फिल्म के इस गाने के साथ, जिसे आवाजें दी हैं अरिजीत सिंह ने, बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और संगीत बद किया है शाश्वत सचदेवा ने।

फिल्म संगीत में आगे बढ़ेंगे और अब आपको सुनवाएंगे गदर टू फिल्म से ये गाना, जिसमें आवाजें हैं अरिजीत सिंह की, बोल हैं शहद कादरी की और संगीत है मिथुन का।

फिल्म संगीत की अगली पेशकश है रेड टू फिल्म से, जुबिन नौटियाल की आवाज़, मनोज मुंतानसिर, पूर्णम अलाहाबादी और नुसरत फ़तेह अली खान की बोल, और रोचक कोहली और नुसरत फ़तेह अली खान का संगीत।

फिल्म संगीत की ही अगली पेशकश है फतेह फिल्म से। जुबिन नौटियाल और विवेक हरिहरन की आवाज़, मनदीप खुराना के बोल और विवेक हरिहरन का संगीत।

फिल्म संगीत में अब आगे बढ़ेंगे और आपको सुनवाएंगे अंधाधुन फिल्म से ये गाना, जिसे गाया है अमित त्रिवेदी ने, जयदीप साहनी के बोल और अमित त्रिवेदी का संगीत।

इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। इस समय दिन के ठीक 3 बजे हैं। मीडियम वेव पर हमारी पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे हमारी दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: दोस्तों, शाम का वक्त और पुरानी यादें दोनों बिना परमिशन आ जाते हैं ना। पर हम आपके लिए परमिशन लेकर आए हैं, ठीक इस प्रोग्राम के लिए, ठीक 5 बजे, जो कि है युवाणी। और हम आपके साथ हैं, मैं अदिति मोड़िया
1: और आपकी रेडियो दोस्त हर्षिता टाक।
0: तो दोस्तों, जो हमारे ये जो शाम आज आप अपने साथ बिताने वाले हैं, तो इसमें आप चाय का कप लेके बैठिए और हमारी बातों और गानों से रिलेट जरूर करिएगा। और बताइए और सोचिए कि आपको कौन सी यादें इसमें याद आती है, इन गानों में।
1: और इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज का ये सुहाना सा सफर इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

0: अदिति, कभी आपसे किसी ने कहा है कि आपका नाम बेहद प्यारा है? और
1: हाँ
0: मैंने ये
1: हाँ
0: नाम काफी कॉमनली सुना भी है।
1: हाँ काफ़ी कॉमन है और ये काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मेरे को मिलते भी हैं कि नाम बहुत प्यारा है। तो पर मतलब क्या उससे क्या कहना चाहती हो तुम?
0: कहना तो बस ये चाहूंगी, तुम अपने नाम की तरफ बेहद ही प्यारी हो, और मैंने देखा है जो तुम्हारे नाम के अक्षर वाले लोग होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं। और ऐसे ही हमारे युवाओं के लिए गाना भी है इस नाम को
1: हाँ
0: लेकर,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तुमने
1: वो है
0: सुना
1: ना,
0: है?
1: बिल्कुल क्यों नहीं सुनूंगी, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और कभी भी मतलब मेरे लिए नहीं, मतलब मेरे नाम से नहीं है वो सभी जो लोग उसको सुनते हैं वो सभी उसके लिए अदिति हैं। तो अगर आप भी इस गाने को एंजॉय करना चाहते हैं और अपने, अब समझ ही गए होंगे मैं कौन से गाने की बात कर रही हूँ, तो अगर आपका भी मूड है ना थोड़ा सा डल है तो इस गाने को सुनकर थोड़ा आपका मूड अच्छा हो जाएगा। तो आप सभी के लिए जो सुन रहे हैं आज हमारे रेडियो लिसनर्स, वो आप सभी अदिति हैं, तो ये ट्रैक भी आपके लिए है।

0: दोस्तों, कभी सोचा है हमारी जिंदगी में शब्दों की क्या अहमियत है? शब्द सिर्फ अक्षरों का मेल नहीं होते, ये हमारी सोच का आईना भी होते हैं। जब आप कोई नया शब्द सीखते हैं तो आप सिर्फ अपनी डिक्शनरी नहीं बढ़ा रहे होते हैं, बल्कि आप अपनी भावनाओं को बयां करने का एक नया नज़रिया ढूंढ रहे होते हैं। और इसी तरह से हम लाए हैं वर्ड ऑफ द डे, जो कि है रेजिलियंस। इसकी जो स्पेलिंग है वो है RESILIENCE, और इसको बोलते हैं रेजिलियंस।
1: बिल्कुल, और इसका हिंदी में जो मतलब होता है वो होता है लचीलापन या सहनशीलता, या हम ऐसे बोले कि बाउंस बैक करने की एक क्षमता, यानी विपरीत परिस्थितियों में भी हम कैसे उसका सामना करते हैं और उस परिस्थिति से हम कैसे निकल कर सामने आते हैं।
0: बिल्कुल। तो अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस रेजिलियंस वर्ड का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना। तो एक छोटी सी कल्पना कीजिए, एक तरफ एक सूखी लकड़ी है और दूसरी तरफ हरे बांस का पेड़ है। जब जोरदार तूफान आता है तो सूखी लकड़ी अपनी अकड़ की वजह से बीच से ही टूट जाती है, लेकिन वो बांस का पेड़ वो हवा के साथ पूरा नीचे तक झुक जाता है, मानो हार मान रहा हो। लेकिन जैसे ही तूफान थमता है, वो बांस फिर से सीधा सीना तान कर खड़ा हो जाता है।
1: बस फिर तूफान में झुकना और फिर से मुस्कुराते हुए खड़े हो जाना, यही तो लचीलापन है। जिंदगी में मुश्किलें, तनाव, असफलताएं तो आएंगी ही, हमें उनका डटकर सामना करना होता है, हमें रोना नहीं होता है।
0: बिल्कुल। रेजिलियंस का मतलब ये नहीं है कि हमें दुख नहीं होगा या हम रोएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि हर ठोकर के बाद हम खुद को संभालेंगे, दूर धूल झाड़ेंगे और पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़े होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ चलिए हम सुनते हैं ये अगला ट्रैक।

0: तो एसएससी सीजीएल आपके लिए एक अच्छी खबर लेके आया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 12,000 से भी ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन शुरू हो चुके हैं। अंतिम तिथि जो रहेगी 22 जून 2026 रहेगी। और कुल पदों की बात करें तो 12,256 पदों की ये भर्ती निकली है। शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि रहेगी 23 जून 2026। वही करेक्शन विंडो 29 जून से 1 जुलाई 2026 तक है।
1: और इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक रहेगी। और इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं और वहां जाकर आप जो भी इनकी जानकारी लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं।

0: दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवाणी में फिर से। और हम हैं, मैं अदिति मौर्या
1: और मैं आपकी रेडियो दोस्त हर्षिता डाक। दोस्तों, गर्मियां आते ही धूप और पसीने से भले ही चिढ़ होने लगे, लेकिन कई ऐसी सारी चीजें हैं जो हमें अच्छी लगती है। कूलर एसी के आगे बैठना, ठंडी ठंडी हवा खाना या सीजनल फ्रूट्स का एंजॉय करना। उन्हीं में से एक फ्रूट ऐसा है जिसे हम पूरा साल वेट करते हैं और पलके बिछाकर इंतजार में ही सारा दिन ऐसे करते रहते।

0: हैं कि हम कब वो फ्रूट खाए, कब हमारे घर पे आए। जी हाँ, आप समझ तो गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं आपके ऑल टाइम फेवरेट रसीले मीठे फलों के राजा आम की। मेरा तो यह सबसे पसंदीदा फल है।
1: बिल्कुल वैसे तो जो तुम कह रही हो ना बिल्कुल सही है, क्योंकि आम ना एक फल नहीं है, यह तो हमारी भावनाओं से भी जुड़ा होता है। इन्हीं आम के साथ ना हम सबके बचपन के कई किस्से जुड़े होते हैं। किसी को आम के स्लाइस पसंद होते हैं तो कोई इन्हें आम रस के रूप में पसंद करता है। दशहरी, लंगड़ा, हापूस या फिर तोतापुरी, हर आम का अलग ही मजा है।
0: बिल्कुल अदिति, ऐसा भी होता था ना कि शाम में हम सब बैठते थे और मम्मी दादी नानी या कोई भी हमारे घर में होता था तो ऐसे फलों को धो के बाल्टी में रख के, खासकर आमों को पानी में भिगो कर काफ़ी देर तक रखते थे। फिर हम सारे भाई बहन कजन्स एक साथ मिलकर बैठ के उन आम का अच्छे से मज़ा लेते
1: बिल्कुल,
0: थे। याद
1: नानी नानी के घर जाकर ये आम खाना और अपने कजन्स के साथ बैठ के मस्तियां करना, वो सब तो एक अलग ही फीलिंग थी।
0: ये बिल्कुल, और ये सुन के मेरे मुंह में तो पानी आ ही गया। हो सकता है आप लोगों के भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो इसी के साथ सुनते हैं अगला ये म्यूजिकल ट्रैक।
2: Wanna natural night?

0: दोस्तों, बाहर भले ही भयंकर लू चल रही हो, पर घर के अंदर यह जून का महीना ना नए इंडोर पौधे लगाने के लिए बेस्ट है।
1: बिल्कुल, गर्मियों के मौसम में घर के अंदर के पौधे यानी कि इंडोर प्लांट्स रखना न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि सेहत और वातावरण के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। ये हमारे घर के तापमान को कम रखता है, हवा को भी शुद्ध रखता है, साथ ही साथ नमी का स्तर भी बनाए रखता है।
0: बिल्कुल। और दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि घर में हम कौन से पौधे ऐसे हैं जो उगा सकते हैं, जो परफेक्ट रहेंगे इस गर्मी में। तो वो है कि मिंट यानी पुदीना और बेजिल यानी तुलसी का पौधा, ये हम दो लगा सकते हैं। बस इनकी छोटी सी डंडी या कटिंग को पानी की बोतल में डाल दो, 5 दिन में जड़ें निकल आएंगी। ठंडे ठंडे मोहितो और चटनी का इंतजाम घर बैठे ही हो जाएगा दोस्तों आपके लिए।
1: वाह, किचन गार्डन सीधे लिविंग रूम में, और क्या ऑप्शन है हमारे पास?
0: हर्षिता, इस मौसम में आप कैलिडियम के बल्ब्स लगा सकते हैं, जिसे पत्तियों के बड़े साइज के कारण आम भाषा में हाथी कान प्लांट भी कहते हैं। इसकी रंग बिरंगी डिजाइनर पत्तियां आपके रूम को एकदम आलिशान लुक देगी। इसके अलावा मनी प्लांट, जो सदाबहार एक प्लांट है जो हम सबके घर में मिलता है, वो आप उगा सकते हैं। या फिर सिंगोनियम या एरो हेड प्लांट भी लगा सकते हैं, जिसकी कटिंग्स लगाकर भी आप अपने सबसे बेस्ट महीना है इसको उगाने के लिए।
1: सुपर अदिति, इसी के साथ हमारे पास इस गर्मी के लिए हमारी आज की एक प्रीमियम टिप भी है। बिल्कुल सिंपल मंत्र याद रखिए कि हमें पौधों को ओवर वाटरिंग नहीं यानी कि ज्यादा पानी नहीं देना चाहिए। गर्मी देखकर रोज बाल्टी भर भर के पानी मत डालिए, नहीं तो जड़ें सड़ जाएंगी और पत्तियां भी पीली पड़ जाएंगी। पानी तभी दे जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे।
0: बिल्कुल। अब इसी रिफ्रेशिंग टिप के साथ एक रिफ्रेशिंग सॉन्ग आपके लिए।

0: जिंदगी रील में नहीं, रियल में खूबसूरत है दोस्तों। हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनकी सुबह एक कप चाय के साथ नहीं, ना ही सूरज की किरणों से, बल्कि हमारे पास रखे उस जादुई डिब्बे से होती है जिसे हम स्मार्टफोन कहते हैं। किसका मैसेज आया है, रील कैसी है, उस पर कितने लाइक्स, कमेंट्स और व्यूज आए हैं।
1: बिल्कुल, पर क्या आपने कभी सोचा है कि दूसरों की परफेक्ट लाइफ जो हमें सोशल मीडिया पर दिखती है, उनका रहन-सहन, फैशन, फोटोज, वो कितनी सच भी होती है जितनी हम उन्हें देखकर खुद की लाइफ से तुलना करते हैं। और इन्हीं सब के चलते हम उनकी होड़ में अपनी रियल लाइफ, मुस्कान और अपनी जो सुकून है, मेंटल हेल्थ है, वो खुद से दूर करते जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप फोन एडिक्शन है वो कितना खराब है हम सभी जानते हैं, क्योंकि हम फोन आ, आ, उठते ही हम सुबह उठते ही फोन चला रहे हैं, तो उससे जो हमें डोपामीन है वो इंक्रीज हो जाता है, उससे हमारा स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है। आप सुबह सुबह ही स्ट्रेस लेके उठ रहे हैं और सोचते तो हैं कि आप बोर हो रहे हैं इसलिए फोन चला रहे हैं, और 2 घंटे बाद आप एग्जॉस्ट होके उठ रहे हैं और उसके बाद आपसे काम ही नहीं हो रहा है कुछ। तो ये जो एक जो चेन चल रही है आपकी पूरी, कि आपने फोन यूज कब करा, क्यों करा और कैसे करा, और उससे आपके बाद में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो जो चेन है ये नेगेटिव होती जाती है। तो आप बस यही कहना चाहूंगी कि

कम से कम यूज करना, देखिए देखिए उससे क्या डिफरेंस होता है अगर आप फोन कम चलाते हैं तो, और जितनी जरूरत है उतना ही चला के देखिए। तो इसी के साथ आपका फोन जो एडिक्शन है वो कम करवाने के लिए सुनवाते हैं ये वाला सॉन्ग।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दीप
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: दोस्तों जैसा कि इस कमर्शियल ब्रेक से पहले जो हम बात कर रहे थे फोन एडिक्शन की और मेंटल हेल्थ की, तो वही कहना चाहूंगी कि जो अब हम बोलने जा रहे हैं ना उससे हर यंग पर्सन जो हमें सुन रहा है वो फील कर सकता है पर ओपनली बोलता नहीं है। वो है कि ऑनलाइन सब कनेक्टेड हैं पर इमोशनली डिसकनेक्टेड क्यों हैं हम सब।
6: बिल्कुल, फोन में हंड्रेड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल मीडिया पे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, लेकिन जब मूड ऑफ हो तो कॉल करने के लिए कितने लोग याद आते हैं।
5: बिल्कुल सच कहूँ आजकल कन्वर्सेशन ज्यादा हैं कनेक्शन कम। टाइपिंग देख के एक्साइटमेंट होती है और सीन देख के हार्ट ब्रेक हो जाता है।
6: बिल्कुल मॉडर्न पेन, लोग रील्स और मेम्स तो आसानी से शेयर कर देंगे लेकिन तो ठीक है पूछने में ऑकवर्ड फील करते हैं।
5: किसी की स्टोरी पे हार्ट रिएक्ट कर देना इजी है ना, लेकिन किसी की साइलेंस समझना उतना ही डिफिकल्ट।
6: एग्जैक्टली आजकल लोग लास्ट सीन चेक करते हैं पर लास्ट टाइम जेन्युइनली खुश कब थे ये कोई नहीं पूछता।
5: बिल्कुल इंटरनेट पे सैडनेस एस्थेटिक हो सकती है पर रियलिटी में लोनलीनेस बहुत हैवी होती है क्योंकि लिसनिंग और स्क्रॉलिंग में बहुत डिफरेंस होता है।
6: बिल्कुल, तो लिसनर्स आज एक ऑनेस्ट सवाल, आपके फोन में कितने लोग हैं और आपके दिल की बात सच में कितने लोग जानते हैं।
5: शायद हमें थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा सुनना पड़ेगा और थोड़ा कम प्रिटेंड करना पड़ेगा।
6: बिल्कुल, तो आज एक काम कीजिए, किसी एक दोस्त को मैसेज मत भेजिए, सीधा कॉल कीजिए और बस पूछिए तो सच में ठीक है ना।
5: अब इसी के साथ एक लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी, जहां आवाज सिर्फ कनेक्ट नहीं करती कभी कभी दिल भी जोड़ देती है।

0: दोस्तों, हर सनसेट हमें एक बात सिखाता है, ख़त्म होना भी खूबसूरत हो सकता है। हम सब ना लाइफ में एंडिंग से बहुत डरते हैं। द एंड ऑफ अ वीकेंड, द एंड ऑफ अ फेवरेट वेब सीरीज, या फिर लाइफ का कोई खूबसूरत फेज। हम चीज़ों को पकड़ कर रखना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एंडिंग मतलब सब खत्म, एम्प्टी स्पेस।
1: बिल्कुल, लेकिन जरा इस सूरज को देखिए, ये रात से लड़ता नहीं है, ये ढलने से घबराता भी नहीं है, बल्कि जाते जाते ये आसमान पर अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन कलाकारी बिखेर के जाता है। पूरे आसमान को ऐसे रंगों से सजा देता है कि देखने वाले की सांसें थम जाए। ये कुदरत का तरीका है हमें समझाने का कि किसी चीज को अलविदा कहना हमेशा दर्दनाक नहीं होता। कभी कभी किसी की कहानी का खत्म होना बस एक प्यारा सा वादा होता है कि आपने अपना किरदार बखूबी निभाया, आप जी भर कर चमके, और अब थोड़ा ठहरने का, थोड़ा आराम करने का भी वक्त है।
0: बिल्कुल, और कभी कभी कभी किसी कहानी का ख़त्म होना बस प्यारा सा वादा होता है। तो दोस्तों, कि ये जो अगर आपके भी लाइफ में ये फेज़ चल रहा है कि आप किसी एंडिंग फेज़ में जा रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि सब ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर सनसेट हो रहा है तो

तो एक तरफ सनराइज भी होगा, जो आप रोशनी ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगी भी जरूर। तो बस यही मैसेज है हमारी तरफ से कि मुस्कुराइए और डूबते सूरज को देखिए। अगर कायनात एक अंत को इतना खूबसूरत बना सकती है, तो सोचिए आने वाली नई शुरुआत कितनी लाजवाब होगी।

0: दोस्तों इसी के साथ आज की ये खूबसूरत शाम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आज की बातें आपको पसंद आई होगी।
1: और जाने से पहले बस आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि इस गर्मी के मौसम में जितना हो सके बाहर कम निकलिए, और जरूरी हो तो आंख कान नाक सब ढक के निकलिए, और साथ ही साथ खूब सारा पानी पिए। और इसी के साथ मैं थी आपके साथ आपकी आरजे दोस्त हर्षिता टाक, और मेरे साथ
0: और मैं अदिति मौर्या। हम फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स पर, नए वाइब्स और दिल से दिल की बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। आज की प्रस्तुति थी राजेश लामरोड द्वारा और संयोजन तामनी सोलंकी का। नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6 बज रहे हैं, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि फ्रांस भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध और भी प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले नीस में भारतीय समुदाय और कारोबारी जगत में उत्साह का माहौल है। उनके स्वागत के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। भारत और फ्रांस के लोगों के बीच संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 भारतीय छात्र फ्रांस में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों देशों का लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक ये संख्या बढ़कर 30,000 हो जाए। फ्रांस ने भारतीय छात्रों और युवाओं के लिए 5 वर्ष का शेंगेन वीजा, पढ़ाई पूरी करने के बाद 2 वर्ष का वर्क परमिट और 18 से 35 वर्ष के युवाओं के लिए यंग प्रोफेशनल स्कीम जैसे कई अवसर उपलब्ध कराए हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंघला ने बताया कि भारत इनोवेट्स कार्यक्रम भारत और फ्रांस की मजबूत होती साझेदारी को नई दिशा देगा। नीस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र के प्रति जवानों के साहस और सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकी परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक

0: शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसंख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की एक नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरे सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में केंद्र सरकार की 12 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा देते हुए बताया कि उनका मंत्रालय देशभर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। देशभर में इस तरह के 1600 केंद्र स्थापित किए जाने हैं और अब तक 24 केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इन केंद्रों में अभी तक लगभग 10 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्चा कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के नए थल सेनाध्यक्ष होंगे। वे फिलहाल थल सेना में वाइस चीफ के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अवकाश ग्रहण कर रहे हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 16 रन बना लिए हैं। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi embarked on a 6-day visit to France and Slovakia today to further deepen bilateral ties with the two European countries. On the first leg of the visit, the Prime Minister will reach the French city of Nice tonight. Mr. Modi will hold bilateral talks with President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will jointly inaugurate the Bharat Innovates event. In his departure statement, Mr. Modi said the focus of the visit to France will be on boosting economic as well as cultural linkages between the two countries. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Nice has filed this report.
2: Nearly 10,000 Indian students are today studying in France, with both countries working towards 30,000 by 2030. In conversation with Akashvani, the Ambassador of India to France, Sri Sanjeev Sankla, emphasizes that the Prime Minister's upcoming visit is set to further deepen the people-to-people ties.
3: There is a core belief that key partnerships, for instance with France we have now a special global strategic partnership, they have to be driven by people-to-people relationship. There is only a certain point up to which the governments can push the relationship. So the relationship has to become much more organic, and that's why increasingly there's a focus on deepening these ties. They span a number of areas.
2: It is precisely the spirit of research, innovation and people-to-people connect that Bharat Innovates brings to Nice tomorrow, and with it the promise of a partnership that only grows stronger. Shailesh Menon for Akashvani News, Nice, France.
1: Union Home Minister Amit Shah today directed the High-Level Committee on Demographic Change to study the shift in population structure in border districts. Chairing the meeting of the committee, Mr. Shah also asked the panel to visit border areas, metro cities and industrial towns for an assessment of changes because of illegal migration and other unnatural causes. An AN-32 transport aircraft of the Indian Air Force crashed at the Jorhat Air Force Station in Assam this morning during a routine sortie, claiming the lives of 5 air warriors. Indian Air Force IAF said a court of inquiry is being constituted to ascertain the cause of the accident. Defence Minister Rajnath Singh has expressed grief over the loss of 5 air warriors in a social media post. Mr. Singh said

कार्यक्रम विवरण में आइए जान लेते हैं आज के शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। रात 9:30 बजे हम आपको सुनवाएंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका संस्कृति भारती, इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 10 बजे सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर। सीमाडेरी गूंज ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:30 बजे और शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल। तो दोस्तों ये थे आज के शेष रहे कार्यक्रम।

कार्यक्रम विवरण में आइए अब जान लेते हैं कल यानी 14 जून को प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। कल शाम 7 बजे हम आपको सुनवाएंगे आईसीसी विमेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान के मध्य बर्मिंघम के एजबेस्टन स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच का सीधा प्रसारण। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

कल सवेरे 6:05 पर सुनिएगा श्री राम चरितमानस। कुछ बातें कुछ गीत का समय होगा सवेरे 7 बजे। मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का कार्यक्रम नमस्कार होगा सवेरे 8:30 पर। नन्हे मुन्ने बच्चे सुनेंगे अपना कार्यक्रम चुनमुन सवेरे 10 बजे। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे सवेरे 10:30। और लोक संगीत आप सुनेंगे दोपहर 12 बजे। महिलाओं के लिए नारीवाटी का कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1:15 पर। और युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी शाम 5 बजे।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:15 हुए हैं, आइए सुने देशगान।

0: अभी आपने सुना समूह स्वरों में देशगान। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:20 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में हम आपको सुनवाएंगे संस्कृत में समाचार, इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्। प्रवाचक जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। तेनोक्तं यत् इयं यात्रा फ्रांसदेशेन सह आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धान्, स्लोवाकिया देशेन च सह द्विपक्षीय सम्बन्धान् सुदृढीकर्तुं केन्द्रिता भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरे आयोज्यमाने G7 शिखर सम्मेलने अपि भागं भजिष्यति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः सीमवर्ती जनपदेषु जनसांख्यिकीय परिवर्तन विषये उच्चस्तरीयोपवेशनस्य आध्यक्षम् अकरोत्। असमस्य जोरहाट वायुसेना केन्द्रे भारतीय वायुसेनायाः N-32 विमानं दुर्घटनाग्रस्तं जातम्। अपि च धर्मशालायां भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडायां पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य फ्रांस स्लोवाकिया देशयोः षड्दिवसीय यात्रायै प्रस्थितः। गमनात् प्राक् प्रदत्ते एकस्मिन् वक्तव्ये तेन प्रोक्तं यत् भारतस्य रणनीतिक दृष्टिकोणे फ्रांस देशस्य विशिष्ट स्थानं वर्तते। तेनोक्तं यत् अस्याः यात्रायाः मुख्यलक्ष्यं भारत फ्रांस देशयोः आर्थिक सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढीकरणम् इत्यस्ति। भारतीय समयानुसारं रात्रौ 10:30 प्रधानमन्त्री फ्रांस देशस्य नीस नगरं प्राप्स्यति। प्रधानमन्त्रिणः आगमनात् पूर्वमेव नीस नगरे स्थितैः प्रवासी भारतीय समुदायस्य सदस्यैः, नवोद्योग संस्थापकैः, उद्योगपतिभिश्च महान् उत्साहः प्रदर्शितः। अत्राशास्यते यत् इयं यात्रा यूरोपेन सह भारतस्य सम्बन्धान् दृढीकरिष्यति। अस्माकं वार्ताहरेण सूचितं यत् प्रधानमन्त्रिणः स्वागतीकर्तुं तत्र महत्यः सज्जाः विहिताः। प्रवासी भारतीयाश्च प्रधानमन्त्रिणा सह संवादं कर्तुम् उत्सुकाः सन्ति। अद्यत्वे प्रायः 10,000

0: courageous decision makers and ethical leaders. As army officers, you will be responsible for leading, guiding and caring for the soldiers.
1: रक्षामन्त्रिणा राजनाथसिंहेन अद्य नूतन नियुक्तेभ्यः भारतीय वायुसेनायाः अधिकारिभ्यः प्रबोधितं यत् परिवर्तिते सुरक्षावातावरणे तैः ड्रोन विमानानाम् उपग्रहाणां रोबोटिक्स सदृशाणां युद्धप्रविधीनां प्रयोगो विधेयः। सः अद्य हैदराबाद नगरस्य डुण्डिगल स्थितायां वायुसेना अकादम्यां सप्तदशोत्तर द्विशततमस्य संयुक्त दीक्षांत संचलनस्य निरीक्षणं कुर्वन्नासीत्। तेनोदीरितं यत् आधुनिक युद्ध पद्धतौ बहूनि परिवर्तनानि जातानि, अतः अधिकारिभिः नवीन युद्ध प्रणालिभिः रणनीतिभिश्च सह निरन्तरं स्वज्ञानं परिष्करणीयम्। अत्रावसरे रक्षामन्त्रिणा राष्ट्रिय रक्षा अकादम्यां प्रशिक्षिताः महिला छात्र सैनिकानां प्रथम गणः अपि वायुसेनायाम् औपचारिक रूपेण नियुक्तः। एताः महिलाः गतवर्षे एनडीए इत्यतः उत्तीर्णाः भूत्वा शाखा विशिष्ट प्रशिक्षणार्थं वायुसेना अकादम्यां प्रविष्टवत्यः। भारत अफगानिस्तान देशयोः मध्ये प्रथम एकदिवसीय क्रीडा धर्मशालायां प्रवर्तते। आदौ पणकं विजित्य भारतेन प्रथमं कन्दुकक्षेपणं स्वीकृतम्। अन्तिमवार्तालेखन समयं यावत् अफगानिस्तानेन चतुक्षेपचक्रेषु द्वयोः क्रीडकयोः हानौ चतुर्विंशति धावनांकाः रचिताः। इति वार्ताः।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 6:30 हुए हैं। हम आपको सुनवाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। शाम 6:42 पर समय होगा जिले की चिट्ठी का और शाम 6:47 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। इसे हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से रिले किया जाएगा।

शर्मा ने कहा केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मॉनसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना को आज 481 नए युवा अधिकारी मिले हैं। पहली बार 9 महिला कैडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है। ये महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की 158वीं पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ। इसमें महिला कैडेटों ने अंतिम पग पार कर सेना अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड का निरीक्षण किया। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को नया आर्मी चीफ नियुक्त किया गया है। वे 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ वर्तमान में 49वें उप सेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे खड़गवासला नेशनल डिफेंस अकादमी के पूर्व छात्र हैं। दिसम्बर 1986 में आर्म्ड कॉर्प्स में कमीशन हुए धीरज सेठ को भारतीय सेना में करीब 4 दशकों का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने कई कमान संभाली और कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस का हिस्सा रहे। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ यूनाइटेड नेशंस के साथ भी काम कर चुके हैं। असम के जोरहाट में आज सुबह भारतीय वायुसेना का एक विमान AN-32 दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। वायुसेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हादसे में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमा राम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम का निधन हो गया। वायुसेना ने बताया कि दुर्घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई और प्रारंभिक जांच जारी है। इंदौर में आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण पहलों पर सहमति बनी है। भारत की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में बीजों की प्रणालियों को लेकर ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइट्स इन सीड सिस्टम बनाने पर मोहर लगी है। साथ ही ब्रिक्स सदस्यों ने सतत कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाने का भी निर्णय लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के 87% किसान छोटे और सीमांत हैं, इन्हें मजबूत करके ही

0: खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जनसांख्यिकीय परिवर्तन को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने इस संबंध में गठित आयोग को सीमावर्ती जिलों में आबादी में हो रहे बदलावों का अध्ययन करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री ने आयोग से सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा कर स्थिति का आकलन करने को भी कहा। केंद्र सरकार ने पिछले महीने घुसपैठ और दूसरे कारणों से हो रहे आबादी बदलावों से निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। केंद्र सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देशभर में बालिका सशक्तिकरण का बड़ा अभियान बनी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार पिछले 10 वर्षों में जन्म के साथ लिंगानुपात 918 से बढ़कर 929 हो गया है। वहीं स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर छात्राओं का नामांकन भी लगभग 75% से बढ़कर 80% के करीब हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर में आयोजित मीडिया संवाद में केंद्र की एनडीए सरकार की 12 साल की उपलब्धियां गिनाई। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश में हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। श्री मोदी ने राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ, नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता के साथ देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा ने कहा कि राजस्थान में भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। पहले यहां प्रति व्यक्ति आय 69,000 रूपये सालाना थी, आज बढ़कर 2,00,000 रूपये से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार राजस्थान के विकास में हर संभव सहयोग दे रही है। पिछले 2.5 वर्षों में 12,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा चुका है। वहीं 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है। जिला प्रभारी मंत्रियों ने भी प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही प्रदर्शनियों के माध्यम से भी केंद्र और राज्य सरकार की जनहित योजनाओं को बताया जा रहा है। प्रदेश में कल से शुरू हुए ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के जरिए लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसके तहत लोगों की समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर उन्हें विभिन्न जनहित योजनाओं से भी जोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में जैसलमेर के पशुपालक गणपत कुमार ने बताया कि उन्हें ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना का फायदा मिला है।
3: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था, जिसमें एक गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रूपये क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत, धन्यवाद करता हूँ।
0: पाली के गुणा एंदला ग्रामीण सेवा शिविर में टीबी मरीजों को निक्षय पोषण किट वितरित किए गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के भर्ती पोर्टल में सेंधमारी के प्रयास का मामला सामने आया है। सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 के तहत 3 अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदनों को विड्रॉ करने का मामला संज्ञान में आते ही आयोग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए अजमेर में FIR दर्ज करवाई है। आयोग के सचिव ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोची समझी साजिश के तहत इस पोर्टल को अवैध रूप से एक्सेस कर 3 अभ्यर्थियों के आवेदनों को समाप्त किया था, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को उसका फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं के भविष्य और परीक्षा प्रणाली की शुचिता को लेकर अत्यंत संवेदनशील है। पोर्टल से छेड़छाड़ कर परीक्षा प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

0: और अब मौसम। प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून की गतिविधियों के कारण आज 5 संभागों में अंधड़ और गरज के साथ बरसात का अलर्ट है। इस दौरान कहीं कहीं 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से हवाओं से नमी की आपूर्ति हो रही है, इससे कई जगह पानी बरसने के आसार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर पानी दातारामगढ़ में बरसा। श्रीगंगानगर, चूरू और सीकर में ओले भी गिरे। इससे तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी जयपुर में भी देर रात शुरू हुआ बारिश का दौर रुक रुक कर आज सुबह भी जारी रहा। भीलवाड़ा में भी आज सुबह हल्की बरसात हुई, इससे गर्मी और उमस में कमी आई है। राज्य में अंधड़ और बरसात का सिलसिला अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। उधर जैसलमेर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप है। दिन का पारा 44 डिग्री के पार दर्ज हुआ। यहां धूल भरी आंधी चलने का अंदेशा भी जताया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को गरज चमक और तेज हवाओं के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। वहीं किसानों को फसलों की कटाई और भंडारण का काम सावधानी से करने को कहा गया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए दुनिया भर में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। लगभग 190 देशों में इसका आयोजन होगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इसका उद्देश्य बढ़ती उम्र में लोगों को स्वस्थ और सक्रिय जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है। योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर योग शिविर लगाए जा रहे हैं, जिनमें सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया जा रहा है। उधर अहमदाबाद में हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पाली के अर्जुन परमार ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की है।
1: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं का आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर सैन्य स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण से जुड़ी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम रखा गया। इसमें सेना और सिविल सोसाइटी के बीच सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान वीर नारियों का सम्मान और सशस्त्र बलों के सैनिकों के मेधावी बच्चों को टैबलेट वितरित किए गए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में पहली बार 9 महिला कैडेट शामिल। महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ नियुक्त। 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे। भजन लाल शर्मा ने कहा, केंद्र की एनडीए सरकार की नियमों में पारदर्शिता और नीतियों में दूरदर्शिता से देश प्रगति के पथ पर अग्रसर। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता और प्री मानसून गतिविधियों के कारण कई स्थानों पर आंधी बारिश का सिलसिला, तापमान में 8 डिग्री तक गिरावट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से सिरोही जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख साकेत गोयल ने तैयार किया है। सिरोही जिले में इन दिनों मॉनसून पूर्व तैयारियों के साथ साथ विभिन्न जन कल्याणकारी और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा का दौर जारी है, तो वहीं जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। आज की जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा बाल श्रम मुक्त सिरोही अभियान चलाया गया। जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर के निर्देशन में आबू पर्वत और सिरोही क्षेत्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। होटल, रेस्टोरेंट और दुकानों पर निरीक्षण कर बाल श्रमिकों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की गई। साथ ही आशा सहयोगिनियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीण महिलाओं को बाल श्रम उन्मूलन तथा बच्चों के अधिकारों के संबंध में जानकारी दी गई। चाइल्ड हेल्पलाइन 1

0: ने 9-8 तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इस अभियान में भाग लिया। आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा शहरी सेवा शिविर अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत 15 जुलाई तक विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से भूमि नियमन, पट्टा वितरण, कच्ची बस्ती नियमन तथा अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों में दी गई छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर परिषद द्वारा आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा के लिए जिले के प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र तथा अन्य विभागों का अवलोकन कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस दौरान सड़क सुरक्षा में घायल मरीजों से मुलाकात कर उनकी उन्होंने कुशलक्षेम पूछी, चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश दिए, अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर चर्चा भी की। जिला प्रशासन द्वारा आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पंचायत समिति आबू रोड में आयोजित उपखंड स्तरीय जनसुनवाई में जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने ग्रामीणों और नागरिकों की समस्याएं सुनी। जलापूर्ति, खाद्य सुरक्षा, विद्युत लाइन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पार्क विस्तार तथा अन्य सुविधाओं से जुड़े मसलों पर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही पात्र व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। प्रदेश में अच्छी वर्षा और खुशहाली की कामना को लेकर जिले के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। सिरोही के सारणेश्वर महादेव मंदिर तथा पिंडवाड़ा क्षेत्र के गोपेश्वर महादेव मंदिर में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पिछले दिनों बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया और राहत तथा बचाव व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। मॉनसून को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। संभावित बाढ़, अतिवृष्टि तथा अन्य प्राकृतिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन और वन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में लवकुश वाटिका में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का समापन हुआ। साथ ही हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में जल संरक्षण, पौधरोपण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत बत्तीसा बांध पर भी कार्यक्रम रखा गया। प्रभारी मंत्री के विश्नोई ने जल संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला। जिले भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को जल बचाने और वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सिलसिले में जिले में विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। माधव विश्वविद्यालय की ओर से योग महोत्सव 2026 के 100 दिवसीय काउंटडाउन कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं को योग, स्वास्थ्य और संतुलित जीवन शैली के प्रति जागरूक करना है। सिरोही जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड में पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई में विकास री दिशा में खास कदम। उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ आगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी री ठौर लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो, केंद्र री एनडीए सरकार री नियमा माय साफ कोई और नीतियां माय आगे री सोचूं देश बरकत रा गेला माथे चाल रियो है। और प्रदेश माय कई ठोणा आंधी बारिश रो सिलसिलो। पारा माय 8 डिग्री सेल्सियस ताई री गिरावट। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। फौज ने आज 481 नुआ नौजवान अहलकार मिल गया। आम आए 9 महिला कैडेट शामिल है जो महिलावारी अगुवाई माए विकास रे दिशा माए खास जतन है। देहरादून री भारतीय सैन्य अकादमी माए राखी जी 158वीं पासिंग आउट परेड माए महिला कैडेट آخری پگ پار کر ایئر فوجی اہلکار بنوارو گورو حاصل کی۔

0: इन्नो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पासिंग आउट परेड रो निरीक्षण कीनो। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ फौज रा आगला मुखिया फैला। जनरल सेठ फिलहाल फौज रा उप प्रमुख रा तौरों सेवा दे रहा है। केंद्र सरकार माने 30 जून आ नियुक्ति दीनी है। वह मौजूदा चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ खड़गवासला री नेशनल डिफेंस अकेडमी रा विद्यार्थी रहा है। करीब 40 साल री फौजी सेवा माए वह ऑपरेशनल रणनीतिक क्षमता विकास और संस्थागत हलका माए खास भूमिका निभाई। वह दिल्ली एरिया रा जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहा और दक्षिण पश्चिम कमान नी संभाली। असम रा जोरहाट माए आज समारे भारतीय वायुसेना रो एक जहाज AN-32 हादसा रो शिकार फेंक्यो। इन कारण 5 जवान शहीद फेंक्या। वायुसेना कन्यू करीचिया सोशल मीडिया पोस्ट रे मुजब हादसा रे कारण स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर खेमाराम कुमावत और अग्निवीर दानिश आलम री मौत वेकी। हादसा री ठौड़ सर्वाती जांचा गए जरूरी कार्रवाई करी जा रही है। ब्रिक्स देशां रा कृषि मंत्रियां रा इंदौर माए राखी जिया सम्मेलन माए बीजां री प्रणालियां रे बारा माए ग्लोबल फोरम और फार्मर्स साइट्स इन सीड सिस्टम बनावन री मंजूरी दी रीची है। भारत री सदारत माए भी आई सम्मेलन माए ब्रिक्स रा सदस्य देश कृषि नेटवर्क और कृषि पारिस्थितिकी सारू एक्सलेंस सेंटर बनावन रोई फैसलो कीनो। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो के देश रा 87% किसान नाना और सीमांत है जाने मजबूत बना रही देश रे खाद्य सुरक्षा तय करी जा सके है।
1: भारत खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल कृषि समाधानों तथा कृषि क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ समावेशी और भविष्य के लिए तैयार बनाने से जुड़े विषयों पर सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसानों को केंद्र में रखकर खाद्य सुरक्षा, पोषण, आजीविका, कृषि व्यापार, नवाचार, निवेश तथा जलवायु सहिष्णु एवं सतत कृषि विकास को आगे बढ़ाने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसांख्यिकी माए बदलाव रेठा करण सारू बनाई चिया आयोग ने सरहदी जिला माए आबादी रा बदलाव री जानकारी करण बाबत कहो है। वह आज इंबारा माए राखी जी मीटिंग माए बोल रहा है। गृह मंत्री आयोग सरहदी हलका महानगरा और औद्योगिक शहरां रो दौरो कर हालात रो जायजो लेवन सारू कहो। ध्यान जोग है कि केंद्र सरकार घुसपैठ और दूजा कारणों आबादी माए बदलाव न रोकने रा उपाय सुझावन सारू आला दर्जारी समिति बनाई है। देश माए लाडला 10 साल माए जन्म री बगत हर 1000 लड़का ने मुकाबले लड़कियां री तादाद 918 929 वेगी है। स्कूला माए माध्यमिक स्तर माथे टाबनियां री तादाद 75% रे करीब फेंकी है। महिला और बाल विकास मंत्रालय रे मुजब केंद्र सरकार री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना देश भर माए टाबरिया ने मजबूत बनावन रो मोटो अभियान बन रही है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी री अगुवाई माए देश माए हर हलका माए तरक्की भी है। वे आज जयपुर माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा है। केंद्र माए एनडीए सरकार रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका श्री शर्मा कहो के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र प्रथम री सोच सागे नियमा माए साफ गोई और नीतियां माए आगे री सोच सागे देश ने विकास रा गेला माथे आगे बधायो है।
2: आत्मनिर्भर के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी प्रेरणा से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्रदान की गई। आज भारत रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा जैसे अनेक क्षेत्रों में विनिर्माण और निर्यात के नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है। पिछले 12 वर्षों में जितनी तेजी से भारत का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ हुआ है वो आप अपने आप में एक मिसाल है।
0: श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में आई प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी है।

0: पहली अठे प्रति व्यक्ति आय 69,000 रूपया सालाना ही जो अब बेहतर 2,00,000 रूपया बत्ती वेकी है। मुख्यमंत्री कहो के राज्य 26 जिला माए किसाना ने दिन माई बिजली दी जा रही है। जिला ना प्रभारी मंत्री प्रेस वार्ता कर केंद्र सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। इस आगे प्रदर्शनियां रे जरिए केंद्र और राज्य सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां री जानकारी लोगां ने दी जा रही है। प्रदेश में चल रहा ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरां रे जरिए जनता री समस्यावां मौके निपटार वाने सरकार का नियम चलाई जा रही जनता रा भलारी योजनावां जोड़ी जा रही है। जैसलमेर रा पशुपालक गणपत कुमार बतायो के वाने ग्रामीण सेवा शिविर में मंगला पशु बीमा योजना रो फायदो मिलियो।
1: मैंने मंगला पशु बीमा योजना के तहत 2 गायों का बीमा करवाया था, जिसमें गाय की डेथ होने के बाद मुझे 18,000 रूपए क्लेम मंगला पशु बीमा योजना के तहत मिल चुका है। और ग्रामीण सेवा क्षेत्र जैसे अमर सागर से हूँ मैं, और मैं अभी नरेंद्र मोदी जी और सीएम भजनलाल जी का तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करता हूँ।
0: पालीरा गुढ़ा एंदला माए लगाई चया ग्रामीण सेवा शिविर माए टीबी री बीमारी रा मरीजा ने निक्षय पोषण किट दिया चया। राजस्थान लोक सेवा आयोग सहायक खनिज अभियंता भर्ती 2024 रा 3 उम्मीदवार का नेऊ ऑनलाइन तरीकों दाखिल करी जी अर्जियां भर्ती पोर्टल माए सेंध मारी रे जरिए पाछी ले लेवन रा मामला माए अजमेर पुलिस माए FIR दर्ज कराई है। आयोग रा सचिव बतायो के कोई अनजान मिनख दूजा उम्मीदवारा न फायदो देरावन रा मकसद सोची समझी साजिश रा तेत ई पोर्टल माए गैर कानूनी तौर सेंध लगार 3 उम्मीदवारा री अर्जियां हटा दीनी ही। अरब मौसम प्रदेश रा 5 संभागा माए आज अंधड़ और गरज सागे बरसात सारू चेताई चियो है। इस दौरान कठे कठे 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बाय रोबाजन री शंका है। इन विचे लाडला 24 घंटा माए कई थोड़ा बिरखा भी सबू बत्तो 5 सेंटीमीटर पानी सीकर जिला रा दांता रामगढ़ माए बरसियो। श्रीगंगानगर चूरू और सीकर माए ओला पड़िया जिनो तापमान माए 8 डिग्री सेल्सियस ताई री कमी आई। राजधानी जयपुर में आई मोड़ी रात सरूफियो बारिश रो दौर रुक रुक कर आज समारे ताई चालतो रहो। भीलवाड़ा में आई आज सुबह हल्की बरसात भी। राज्य में अंधड़ और बरसात रो सिलसिलो आवता 3-4 दिन ताई चालतो रहवन री संभावना है। दूजिकानी जैसलमेर माए जोरदार गर्मी और लू बीच पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर क्यों वठे आंधी चालन री संभावना है। मौसम विभाग किसाना ने साखारी कटाई अरवान भिड़ीकरण का काम माए सावचेती राखण सारू कहो है। 21 जून ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावन सारू आखी दुनिया माए तैयारियां चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस रे मौके करीब 190 देशा माए भांत भांत रा कार्यक्रम रख्या जावेला। इस साल योग दिवस रो मुद्दो योग फॉर हेल्दी एजिंग राखी चियो है। इनरो मकसद बढ़ती उम्र माए लोगा ने स्वस्थ और सक्रिय जिंदगी जीवन री सीख देवनो है। इस सिलसिला माए प्रदेश माए कई ठोणा योग शिविर लगाया जा रहा है। इन बीच अहमदाबाद माए भी पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप माए सोनारा 2 तमगा जीतन वाला पाली जिला रा अर्जुन परमार जनताओं योग जुड़वारी अरज कीनी है।
2: भारत में हुई विश्व स्तरीय योगासन प्रतियोगिता में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, एक आर्टिस्टिक सिंगल और एक आर्टिस्टिक ग्रुप में प्राप्त किया। आगामी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए कहना चाहता हूँ कि योग केवल एक शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी सभी लोगों के लिए कार्य करता है। मैं विशेष रूप से युवाओं को आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
0: जयपुर फौजी स्टेशन में शिक्षा और समाज कल्याण जुड़िया काम आगे बढ़ावन सारू एक खास कार्यक्रम रखी चियो। इन माए फौज और सिविल सोसाइटी बीचे मदद बढ़ावन माथे जोर दियो चियो। फौज रा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन बतायो कि इन दौरान वीर नारियां रो मान करी चियो और फौजियां रा बच्चा ने टैबलेट दिया चिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करिया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माए 28 जून ने विचार बतावेला। आ ई कार्यक्रम री 153वीं कड़ी फैला। इन सारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे

0: 26 जून ताई राय दे सको हो। नंबर ओजू सुन ली रहो सा 1800117800। नरेंद्र मोदी ऐप और माई GOV ओपन फोरम रे जरिए ये विचार भेजा जा सके है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस और स्लोवाकिया रा 6 दिन रा सरकारी दौरा सारू रवाना भया। रणनीतिक माली और सांस्कृतिक निजरों ओ दौरो खास मान्यो चाचियो है। इरा पहला दौर माय काल श्री मोदी फ्रांस रा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सागे भारत इनोवेट सम्मेलन रो उद्घाटन करेला। दूजा दौर माय वे काली स्लोवाकिया सारू रवाना भे जावेला। स्लोवाकिया रा दौरा पाछे वे फ्रांस रा एवियन माय 16 और 17 जून ने भेवन वाला G7 शिखर सम्मेलन माय शामिल भेला। श्री मोदी 18 जून ने फ्रांस माय विवाटेक सम्मेलन माय शिरकत करेला। आखिर माय खास समाचार एक और फेरू सुन ली रहो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी री पासिंग आउट परेड माय पहली दफा 9 महिला कैडेट शामिल। महिलावारी अगुवाई माय विकास रे दिशा माय खास कदम। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगला सेना प्रमुख वेला। 30 जून न जनरल उपेंद्र द्विवेदी रिठौड़ लेवेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कहो केंद्र री NDA सरकार री नियमा माय साफ गोई और नीतिया माय आगरी सोच देश बरकत रा गेला माथा चाल रियो है। हर प्रदेश माई कई थोड़ा आंधी बारिश रो सिलसिलो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर शाम के 7 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इफको।
2: किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो DAP से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो DAP से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो DAP का इस्तेमाल बीजोपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो DAP मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो DAP का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: चौपाळ कार्यक्रम सुनणारा सगळा हेतालू श्रोताओ आणि गणमान सुंगुरविंदर बिश्नोई
1: और दिनेश राणे जरा राम राम।
0: भाई लोग सिंजिया 7 बजे उड़ीक रहे चौपाल रे
1: आसा
0: तो दिनेश भाई चौपाल में किन तरह का गीत लाया हो कई हथई लाया हो बताओ अपने साथियों ने।
1: गुरुंद्र भाई देखो भात भात्रा जी का गीत है, भजन है, संगीत है, आप भाई सुनावा।

0: और इंडर हाथ आते समसामयिक बातें है, खेती बाड़ी की बातें है, पशु पालन की बातें है, डेयरी उद्योग की बातें है, शिक्षा जगत री है, विज्ञान री है, बाल देश की बातें है, और अपने देश की विकास की बातें है, गांव गवाड़ खेत खलियान सगली बात गुरुंद्र भाई कोशिश आप करा के एक पिटारे रूप में आप भेड़ी करा और फाची अपने भाषण ने आप बताओ।
1: बिल्कुल, और देखो कि आज रे टाइम में दुनिया में आगे बढ़ने वास्ते सब पहली चीज है शिक्षा। बिना नॉलेज नहीं जा सको कॉलेज।
0: हाँ।
1: तो कॉलेज जाऊन वास्ते भाई नॉलेज बहुत जरूरी है। भाई दिनेश भाई, मैं तो हर बार आई चुका हूँ कि गरीब गरीब जो को आदमी कटे दुनिया में है भारत में, उरी किस्मत रो ताड़ो जो को है वह शिक्षा रूपी चाबी खोलन शीर्ष स्थान माते पहुंच सके। आप आईएएस बन सको हो, कलेक्टर बन सको हो, एसपी बन सको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। और ये रे महीने भी आप चाहे लड़को वो चाहे लड़की, अगर आप ईमानदारी पढ़ लिखन आगे बढ़ो तो आप रे तकदीर ताड़ा इन शिक्षा री चाबी स्वतः ही खुल जाए।

0: सही कहो गुरिंदर भाई, ताला खुल जाए और देखो सरकारी ताला खुले तो बहुत मेहनत करे काजे वेज बचा देखो सफल हो सके, शॉर्टकट कोई तरीको नहीं है। इंडे हाथे हाथे अपने हताशा नहीं राखनी है कि भाई अपनी नौकरी करनी को नहीं तो आप कहवा पढ़ाई करा, ऐज की बात है चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, इन मायने नहीं लावनी है, पढ़ी आपने उस शिक्षा प्राप्त करनी है। भात भातरा काम काज है गुरिंदर भाई, उद्योग धंधा है खुदरा जी का काम काज आप लगा सको, कई हस्तशिल्प है कौशल है। और खास तौर से बात करा आथुनो राजस्थान रे मायने देखो कि मैं नहरा भी आएगी है, कई खेती बाड़ी मायने नया नया जी का पादप है अभी पनप्रिया है, कई फूल पुष्प भी लाग सके कर सके, नवाचार करतो थको पढ़ियो लिखियो आदमी कई काम कर सके।
1: 140 करोड़ ज्यादा आबादी आलो देश,
0: हाँ।
1: और उए में भी कई परिवार है हाल जका पांच अन हाथ अन दस बच्चा पैदा करे,
0: हाँ।
1: उए रे वास्ते पई सरकार की कर रोजगार सरकारी नौकरी री व्यवस्था कर सके
0: नहीं कर सके सा।
1: कोई दुनिया री दूजी सरकार भी नहीं कर सके तो कई लोग कहने के भाई नौकरी कोनी, नौकरी आज टाइम में एक तरह अवसर है, अवसर उए रे कने कोनी जको की काम करनी नहीं चाहे ढोलिये माते बैठो बैठो ही फरमान करनी चाहे, जको काम करनी चाहे उए रे वास्ते भाई काम री कोई कमी नहीं है। और आज री बात हूं कि भाई गांव रे महीने जब पहला बढ़िया रोटी हाटे आवता, आज 1000 रुपया धाड़ी सुबह हूं लेर शाम तक सेवार खाने में नहीं आवे, ये मतलब आदमी कटे काम करने वालों बना बताओ नहीं
0: सही कहे सा।
1: और शहर रे महीने जब कभी गांव रा लोग आवे पढ़ाई लिखाई करने वास्ते या रोजगार वास्ते, वे देखो 5-7 साल में जो कड़ी मेहनत करें बेहंग काम काज कर लेने, गरे पको मकान ही बना ले, गाड़ी चढ़ने है टावरा नहीं अच्छी स्कूल में पढ़ा ले, तो क्यों ना मतलब न्यूत्र काटा है,
0: हाँ।
1: कोई क्या नहीं हूँ बेरोजगार हूँ, तो बेरोजगार भाई तू थारी नियत हूँ है, बाकी रोजगार तो खुला अवसर है और आप योग्यता अनुसार आपने बे अवसर खुद तलाश करना पड़ी, थाने हमें आन कोई को नहीं कह लो आओ डोलिये माते न मैं साइन करो ना तनखा लो, ए जका सरकारी अवसर है भाई ए सीमित है। और ये रे महीने मैं दिनेश भाई हूं है कि गांव में बैठा बैठा भी कई जका युवा है बे जानकारी लेन आप रे खेत खलियान में ही रोजगार रा ऐडा अवसर पैदा कर दिया के खुदरी कमाई रे साथे साथे 5-10 और लोगों ने वो जोड़ियो रहा है।
0: सही कहो गुरिंदर भाई, बहुत मोटे स्तर माते जी को बदलाव ग्रामीण क्षेत्र में हुई और आप जी को आकलन करियो बिल्कुल सही करियो। आप बात आप आगे की के ग्रामीण क्षेत्र जी का जनमानस है वे जज्बे रे साथे शहरी क्षेत्र में आवे और आप रे काम काज करे, 3-4 साल मैंने बढ़िया ढूंढो जी को है गांव रे मैंने आप खेत रे मैंने ढाणे में बना दे तो इन साफ ठाप पड़ेगा वे देखो रात दिन मेहनत करे और कुछ प्राप्त करे। इन साथ कई ग्रामीण क्षेत्र जी का युवा मोटिया

0: ग्रामीण क्षेत्र में मान लो पानी नहीं है तो दूजा ग्रामीण क्षेत्र में बेटा जावे इजारे देखो खेती बाड़ी लेवे करे और मोटे स्तर माते जीरो है एज की व्यवसाय खेती करे और नगदी रूप में देखो वे तो कमी करे साथ साथ जिन आदमी ने काम करने माते लेन जावे निशा पानी गांव में ढूंढा बन जा
1: बिल्कुल। और देखो कि 140 करोड़ ज्यादा आबादी आलो और युवा देश होने के बावजूद भी आज हर क्षेत्र में युवाओं की मांग है।
0: हाँ सर,
1: और कोई भी काम आज मान लो कोई कंप्यूटर को काम जाने तो वे नहीं बतला 50 है कि भाई तू मार कर ना जा, जितो चोखो काम जाने उतनी चोखी वे तनखा है। और तो और दिनेश भाई जका अपने भारत रा मध्यम वर्गीय परिवार 80 रे 90 रे 2010-20 रे दशक में दुख देख और आपने टावर ने पढ़ाई कराई कि नहीं डॉक्टर बनाया इंजीनियर बनाया और बे टावर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तहत दूजे देशों में काम करिए तो उन भारत की जकी वैश्विक ताकत है उवे में भी बदलाव आयो। आज कई देशा रे मायने देखा के भारत रा जका लोग है वे संख्या रे मायने तो बहुत कम है मान लो लाखा में, लेकिन उन देश री आर्थिक जकी गणना है कैलकुलेशन है या इनकम टैक्स है उवे में वाणी भागीदारी वहाँ मूल लोग ज्यादा है। आ बात आ साबित करे के पारिवारिक संरचना दृष्टिगत ओ आपनो जकी जीवन चक्र है ये में आपा कोई भी देश में जावा तो आपा में समायोजन होंडरी बड़ी कहीं के है खूबी है
0: आपा शिक्षा और संस्कार
1: हाँ, शिक्षा संस्कार और सनातनी सोच आपा चाहे यूरोप जावा चाहे अमेरिका जावा कि रही आंखिया में नहीं खटका तो आंखिया में नहीं खटका तो बाढ़ हाथे समावेशी हो जाओ तो आपा नहीं आगे बढ़न रो अवसर मिले। अगर आपा भाई समायोजन नहीं करा तो आपा उन्हें फोड़ा पड़ी दुख पावा आपा।

नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।

0: सही कहो गुरुदेव भाई, आप जी को आकलन करियो बहुत ही 100% सही एकदम करियो हो कि भाई अपन अटल जी का जनमानस है, वह शिक्षा प्राप्त करिया है, काज या परिवार ही आ विचारधारा है कि मारा भाई सब टाबरिया पढ़े, तीन टाबरिया तो तीना नहीं पढ़ाया करिया है और आपने पगा माता खड़ा करिया, वह टाबर बारे विदेशों में गया है और उठारी जी की व्यवसायिक गतिविधियां है, उन्होंने महीने वे सर्वेश्वरा बन गया है, कटी सीईओ बन गया है, इनसे साफ ठाप पड़े है कि आज की सोच है वह बढ़िया शिक्षा और जी को पारिवारिक संस्कार और जी का अभिभावक है वे आपरे बच्चा ने शिक्षा रे प्रति कितना प्रेरित कर रहा है उनरो नतीजो है।
1: देखो लाल दिन में कोई इंटरनेशनल मैगजीन पढ़तो हुए में आई कि अपने हाथ ही अपने देश रो विभाजन हो न धर्म रे नाम माते देश बनियो जिक्र नाम है पाकिस्तान। तो गल्फ कंट्री जका है खास तौर माते यूएई है, सऊदी अरब है, कुवैत है, अमन है, उठो आने पाकिस्तानिया ने काट रिया, डिपोर्ट कर रिया के नहीं माने थानी जरूरत को नहीं।
0: सही बात।
1: और जका भारत आला है बानो स्वागत कर रही है। लाल दिन कोई दुबई रो वो जो को कहीं बुर्ज खलीफा बनायो उरो जो को मालिक है उरो बयान हो के भारतीय जका लोग है वे बाना भाई है और अठे वाणी व्यवस्था सुरक्षा और फर्ज को मानो है। एक तरफ तो भारतीय लोग जब विदेश जावे तो बाणो आतिथ्य सत्कार करे मूंगा मेहमान हम बजर
0: मूंगा
1: एक वो ही देश है जटे धक्का देर बाने बारे काटे
0: काम करने वाले पूछ ऐसा।
1: हाँ तो क्यों ना मतलब एक जड़ी आपरी सोच है, जड़ी आपरी समझ है, जड़ो आपरो स्वभाव है, वेड़ी जा आपरा भाव है,
0: भाव है हम लो हम जा।
1: हाँ तो स्वभाव में अगर कड़क ही है, स्वभाव अगर आपरो खराब है, अहितकारी है या हितकारी है वो बहुत निर्भर करे। अगर आपकी नहीं अहितकारी करो तो आपने आपने देश में थोड़ी रेउण दी। और तो और लाल दिन में देखियो कि यूके यानी लंदन री गलियां रे भी एक सैलाब उमड़ियों हो के जका पाकिस्तान वटे आन माने देश रे महीने बदलाव कर रिया है जो को कहीं कह हुए ने और वाने टावर रे हाथे भी कई तरह रा गलत अपराध हुआ तो वाणी भी मांग बड़ी प्रखर हाथे उठी है कि आने हटू बार काटो।
0: सही है।
1: तो हेवट जो कह अपनी इन सनातनी सभाओ नहीं सोची उ फोड़ा पड़ी।
0: सही कहे गुरुंद्र भाई, अच्छा काम करला तो अपन जग जी की सराहना करला और बुरा काम करला तो देखो नतीजा बुरा वेला रूटे अपन कोई टिकन नहीं देला। गुरुंद्र भाई आज एक बहुत ही मोटो जी को जागरूकता दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस।
1: एल्बिनिज्म कहीं हो?
0: एल्बिनिज्म तो गुरुंद्र भाई देखो के आ एक बीमारी है, भात भात राज्य का चरम संबंधित देख लो और कहीं कह छपका वे कहीं वजह
1: रंगहीनता कहवे
0: रंगहीनता कहवे
1: इन्हें 13 जून ने पूरी दुनिया में मनाई जाए।
0: सही कहो सा। और हाथ देखो के आ एक जन्मजात और गैर संक्रामक अनुवंशिक जिन्हें आप जेनेटिक कहवा वो विकार है और इन कारण शरीर में मेलेनिन जिको नामक पिगमेंट है इन्हों निर्माण नहीं हो पावे और त्वचा है, बाल है, आंखिया है जिको इन्हें प्राकृतिक रंग दिया करे और लक्षण की कठा पड़े एक पीड़ित व्यक्ति रहे जिका बाल है, त्वचा है, आंखिया और जिको रंग है बहुत या तो हड़को हो जा या सफेद हो जा।

0: भाई लोग मोटे तौर माते ये ने आपा सफेद दागरी बीमारी रूप में जाना के आदमी कह नहीं भाई वो तो ओडोड़े अंग्रेज बने। तो ये रे महीने कई वे दिनेश भाई जका मेलेनिन वे नी
1: हाँ
0: ये छोटी छोटी थैलियां वे आपने चमड़ी रे नीचे,
1: हाँ
0: तो मेलेनिन नामक जो को पदार्थ पिगमेंट है वो निर्माण ही रुक जावे।
1: हाँ
0: तो वो जो को मेलेनिन है आपा कह नहीं भाई तावड़े रे महीने घना ना रहे भाई थारो रंग हावड़ो हो जाए।
1: हाँ कालो पड़ जाए।
0: हाँ तो अफ्रीका रे महीने तावड़ो तेज पड़े उठे जका तावड़े में रहे या उठे रहे जका लोग है वे में जो को मेलेनिन री मात्रा बहुत ज्यादा हुए शरीर में, या तो 4 महीने जितनी मेलेनिन री मात्रा ज्यादा हुए तो वो में रंग हावड़ो वे चटे बर्फीलो या ठंडो प्रदेश है उठे मेलेनिन कम बने तो उठे लोग जका त्वचा है वा गोरी हुए।
1: गोरा लोग वैसा
0: लेकिन आप भारतीय परिपेक्ष में देखा तो ये में जको ए जका चकता पड़े ये में आप प्रारंभिक रूप में डॉक्टरों सलाह ले सको जांच ले सको। कई जका ये रे महीने बेकैनी की फलानी जगह फेरी दे हूं या फलानी बबूती लगे हूं तो भाई ऐसा गलत है
1: हाँ
0: ये हूं तो त्वचा माते उल्टो गलत असर पड़े। और कई बार एड़ी जकी नीमा घीमरी कोई दवाई चेपड़ो तो मान लो लगाओ तो उन्हें कैंसर बड़ा हो जाता उचारो। तो इन वास्ते आप डॉक्टरी सलाह लो। और जो को दिनेश भाई कहो के वो अनुवांशिक भी है न, ये मैं दिनेश भाई आप भी देखी कि नैन थके में कोई चोट लागे इन वा दौड़ी दौड़ी हो जा
1: हाँ
0: पचे वो उरो भी प्रसार के ये ना हो जा के वो शरीर में आगे बढ़ने रुक जावे।
1: सही कह बुंदर भाई। एक चुनौती आ है कि एक सामाजिक तौर जिको भेदभाव है वो भी देखने जो को मिले है कि भाई इन अड़ा छपका होगा है चाटा होगा तो आड़ पाड़ जिको रहे कहीं टावी ने भी ऊजा कर जा
0: नहीं
1: तो
0: भाई
1: ऐ बात नहीं
0: हाँ
1: होनी
0: आज
1: चाहिए।
0: की है इन तरह फैलन वाली बीमारी नहीं है। और
1: हाँ
0: अब इन बीमारी में तो देखो लोगों ने कई तरह की जानकारी मिल गई जके ने हुए जके ने भी आठा है कि रो कोई प्रभाव नहीं है खाली आई है कि वो सफेद सफेद रंग है जो को लगातार बढ़ रही है।
1: हाँ
0: और जब वो पूरे शरीर में हो जावे जना वो पूरा रंग ही एक हिरको हो जावे तो क्यों ना
1: टेम
0: मतलब
1: आते
0: है
1: जागो और
0: कोई
1: इलाज करो।
0: भ्रांति या कुरीति इन मुजब नहीं राखनी और कोई फैलन वालो रोग नहीं है। और दिनेश भाई देखो हमें आता ही घनी होगी
1: हाँ सर।
0: तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: और दिनेश राणे जाने सीख दे रहो
0: राम
1: राम।
0: राम।

किसान साथियों, कम लागत में ज्यादा उपज के लिए बुआई से पूर्व इफको नैनो डीएपी से बीज उपचार जरूर करें। बाजरा व तिल जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें।

0: नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। कपास के लिए प्रति किलो बीज में 20 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। ग्वार, चौला, मूंग, उड़द, मक्का जैसी फसलों के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी से बीज उपचार करें। मूंगफली, सोयाबीन के प्रति किलो बीज में 2.5 मिलीलीटर नैनो डीएपी का इस्तेमाल बीज उपचार में करें। पौध वाली फसलों के लिए 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी मिलाकर जड़ का उपचार करें। इफको नैनो डीएपी का वादा, खर्चा कम और उत्पादन ज्यादा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम चौपाल, इसके प्रायोजक थे इफको। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए सुने सीमाड़ेरी गूंज कार्यक्रम।

0: वाह भाई, ये गीत तो छोको गायो,
1: छोको गायो
0: मीठी राग में। ओ हो हो, मता मंगेशकर गायो।
1: और शब्द कितना बढ़िया था
0: ना, जड़े
1: इन गीतकार है प्रेम धवन जी।
0: ओ ठीक ठीक, प्रेम जी।

0: जन्म भी हो तो।
1: ओ प्रेमम जी मैं कह नहीं भाई देखा सौ की
0: गीतकार
1: हाँ गीत का जो लिखता
0: देशभक्ति गीत ही घना लिखता है फेमस है देशभक्ति गीत
1: हम गाये भाई मगज है जिसको काम करे नहीं तो गीत आलो गीत लिखे गाउन आलो गाउन कह लिखे भजन आलो भजन लिखे कवाली आलो कवाली लिखे कई है आप अपने लिखन जावे आप थोक है पूरा करे तो प्रेम धवन जी नु कर लिखी हो नहीं
0: वाह भाई गीतकार रहता संगीतकार कोरियोग्राफर और अभिनेता और पद्म श्री इन्होंने सम्मानित
1: करा गुणी मिनक
0: गुणी मिनक पंडित रवि शंकर जी हुए संगीत शिक्षा ली
1: हाँ बात हासी भाई देखे नहीं तो कहूँ एक काम ही बड़े करे ये गीत ही लिखो
0: हाँ
1: बाजे ही बजा दिया नाच ही नचा दिया
0: कर दियो
1: अदा करी कर ली नहीं कर लिया बा बा तो कह नहीं कह भाई देखे
0: हाँ
1: गुणी विद्वान हाँ तो नहीं है जो कहूँ जन्मदेव ने भी कोई है
0: मंदेरा फूल चढ़ावा
1: हाँ भाई कोटी कोटी नमन करा मंदेरा फूल चढ़ावा
0: हाँ
1: बड़े
0: और आज दिन जन्म भी दीपिका कुमारी
1: हाँ
0: आज इन्होंने जन्मदिन बधाई दे भारतीय रिकर्व तीरंदाज है चार बार ओलंपिक और दो बार विश्व चैंपियन में रजत पदक विजेता है और समूह सम्मानित भारतीय रिकर्व तीरंदाजों में एक है
1: ओहो चांदी वाला तुकमल है
0: और विश्व रैंकिंग में शीर्ष माथे पहुंचने वाला यह पहली भारतीय तीरंदाज
1: भाई भाई देखे
0: नंबर वन रैंकिंग हासिल करी
1: थी देखो
0: बिल्कुल
1: क्या निशाना लगे तो कम बात को है नहीं और दूसरे बात है जो तुकमा लाना मोटी बात तो दिन दिन है
0: आना है और एडिस तरक्की करता है
1: हां बधाई है कोटि कोटि कहनी शुभकामनाएं है अन बड़े
0: और पीयूष गोयल जीरो भी आज दिन जन्म भी हो तो पर वरिष्ठ राजनेता है और वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री है
1: ओहो ठीक ठीक दिल्ली वाली सरकार
0: हाँ दिल्ली वाली है पहला
1: नाम तो हुनियोड़ो भाई
0: हुनियोड़ो बहुत ही पढ़िया लिखे मिनक है पहला चार्टर्ड अकाउंटेंट रियोड़ा और भारत में इन्होंने दूसरो स्थान है तो परीक्षा में
1: ओहो
0: बचे कानून की पढ़ाई करी वही आईडी अव्वल दर्जा रही
1: विद्वान
0: बचे राजनीति में आया रेल मंत्री रियोड़ा पर है
1: हाँ रियोड़ा
0: भाई हाँ कोयला और विद्युत मंत्री भी रियोड़ा है
1: हमें आजकल क्या नहीं भाई देखे जे मैक मोहम्मद है वो कह नहीं बिणज व्यापार वालों
0: हाँ बिणज व्यापार वालों
1: मोटो है भाई और कह नहीं होशियार मिनट सही है
0: और इनारे टाइम में 2022-23 में सब ज्यादा तियात्रो रिकॉर्ड है इनारे
1: हाँ बारे माल में भी
0: बारे माल
1: भाई वहाँ तो पीयूष गोयल जी ने कह नहीं कोटि कोटि बधाई है भगवान हजा तजरा के देश रिवाज काम करता रहे बड़े
0: अब जो फोत हुआ विनर बारे में बताए दू
1: हाँ बताओ भाई बताओ।
0: मुद्रा राक्षस जी है जिनारो सही नाम तो सुभाष चंद्र आर्य
1: मैं जानियो भाई राक्षस कटाया दिल
0: नहीं नहीं ए मुद्रा राक्षस का छदम नाम लिखता
1: लिखता नाम है जिसको कहनी उठा लियो
0: हाँ लेखक है आलोचक और पत्रकार आलोचक मेन रूप है मूल रूप है आलोचक है
1: हाँ कोई बात न कहनी कमी कारण
0: बता
1: भाई लिखियो पण यू लिखियो
0: चेतना और मुद्रा राक्षस नाम
1: हाँ आपने लिखा पड़ी करी भाई तो बढ़िया सो की बात है भाई देखे सो की पोतिया लिखन गया सो की कहनी आप रहे जिसको कहनी का जग चावा
0: काम कर गया
1: तो आने बता रहे मार्ग माता हला
0: मार्क्सवाद लोहियावाद और अम्बेडकर वाद रो अनूठो मिश्रण था और इन बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात आ है कि देश राड़ा पहला साहित्यकार रहता जिन्हें जन संगठन सिक्कों तोलन सम्मानित करिया था
1: ओहो
0: दलितों वास्ते लिखता है
1: हाँ लिखता भाई गरीब गुरबे बात है जो क्या नहीं दबिया कुचलिया मिन खाने बाबत लिखिया
0: बिल्कुल
1: तो बा नहीं है जो
0: जन सम्मान मिली
1: हाँ जन सम्मान मिली हो तो भाई देखे तो कोटि कोटि नमन है मंदेरा फूल चढ़ावान बड़े
0: और आज अमर शहीद नानक भील जी आज दिन ही फोत हुआ था डाबी घटना में आपने याद वेला राजस्थान री जा घटना है यहाँ पर
1: नानक भील
0: नानक भील जी
1: ओहो भाई क्या नहीं बिरला मिन खान कह के भाई देश की आजादी बात है बे है जिसको कह नहीं जुलम अत्याचार सहन करिया हाँ मैं बिरसा मुंडा होया नानक भील होया बड़े कई घना होया भाई तो एड़ा बिरला मिनका ने कह नहीं की देश की आजादी में आपकी भागीदारी राखी आ कोनी भाई कह है के मातबर मातबर मिने की लड़ाई लड़ी लड़ाई लड़न में हैंग भेड़ा
0: है फायरिंग में मारा गया है भाषण देता था विन टाइम
1: हाँ
0: जागरूक करता था किकर किसान और लगान कम करना है
1: राय हाँ भाई देखे मैं मत करना
0: अंग्रेज और शासन काल में
1: और कूदरी बात करी भाई तो देखे

0: वाह भाई वाह, निहाल कर
1: देशभक्ति आई
0: है। हाँ, अगर तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जाऊँ। वाह भाई वाह, बड़ा।
1: और कीर्ति चौधरी जी हिंदी साहित्य रे कविता आंदोलन रे एक प्रमुख सख्त कवित्री है। और सुमित्रा कुमारी सिन्हा रे बेटी है ता।
0: ओ ठीक ठीक, माई है जो लिखता बेटी लिखी,
1: बेटी लिखता।
0: हाँ लिखता तो
1: जानी मानी कवित्री यहाँ पर
0: है। जरूर है जो लुगई जात बाबत चार आंकड़ी लिखी है और बे आंकड़िया है जो लुगई जात ने आज ताकत देवे तो भाई देखा नहीं कोई नहीं भूल सके। कोटि कोटि नमन है, मन रेरा फूल चढ़ाओ बड़े।
1: और मेहंदी हसन जी आज दिन इज फोत हुआ था अपन भारतीय उपमहाद्वीप रा महानतम गजल गायक।
0: ओ मेहंदी हसन
1: शहनशाह गजल।
0: हाँ शिकर वाला। हाँ भाई
1: झुंझुनू जिला रहता।
0: हाँ
1: लूणो गाँव है तो इनारो।
0: हाँ लूणा रे भाई वो झुंझुनू शिकर नेड़ी है।
1: हाँ
0: हार पचे क्या नहीं बंटवारो हुए
1: कराची रेडियो में पचे काम करना।
0: हाँ कंड होगा भाई जन्म भूम की भाई आपरी खून कमाउनी ठोड़ की वह तो कुदरत कर तो आनी कोई नहीं भूल सके
1: ना
0: तो बड़ी गजब क्या नहीं आ रही आवाज
1: है। मैं आपने
0: हाँ होना भाई एक सौ
1: बढ़िया गीत होना मखमली आवाज में।
0: हाँ होना भाई होना।

0: भाई वाह, निहाल कर दिया।
1: क्या ठंडो गीत है?
0: अरे पर कहो कुछ मत कह नहीं थे तो रात दिन ऐसा होना हो जो हाँ। हैंग बताओ
1: क्या है? लालन बताऊं नहीं मैं।
0: हम बता थे पर मैं तो कभी बात जवाब हूँ लू तो माँ ठीक ही है। हम भाई ये देखे बात बेलू है को नहीं मैंने कोई अर्जी सी होना
1: पड़ी।

0: अबे जाए ठिकाना
1: तो सीधा आई को ठाड़ आई को हैं बाता होगी और मैं काले जंदर के अपन हल हुड़े पाड़ करनो है बाड़ कांटो करनो है
0: जड़ पहला तो खानो बनानो पड़े
1: आज तो थे हमें रात रो तो अपन देखो हैं खड़ंदड़ करनो है कह नहीं आराम करनो सुबह हाल हैं बात होई न हमें देखे भाई कह थे रसोड़े में पधारो न हूं फेर माड़ा ठीक है थे रसोड़ो कर दो तैयार
0: बिल्कुल तैयार कर दो
1: माड़ा और हमें तारा ही खासा ऊंचा आई गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बज रहे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत। फिल्म संगीत की ये पहली पेशकश
1: चल चल चल चल चल चल चल
0: क्रोधी फिल्म से लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर,
1: चमेली चमेली
0: आनंद बक्सी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत,

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं क्रांति फिल्म का गीत, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर का गाया। गीत के बोल लिखे हैं संतोष आनंद ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं गुलामी फिल्म का गीत। आवाजें हैं शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर की, गुलजार के बोल, लक्ष्मी प्यारे का संगीत।

फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल के संग। कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं बेताब फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार का गाया। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने,

बिजली आ चमके कभी।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए प्यार झुकता नहीं फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्यनगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंच रहे हैं। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न, सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बारिश से बाधित पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाक गणराज्य की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी की स्लोवाकिया की पहली यात्रा के लिए ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय में विशेष उत्साह देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: स्लोवाकिया का भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के भव्य स्वागत के लिए विशेष तैयारी कर रहा है। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव के अनुसार भारतीय समुदाय में उत्साह देखा जा सकता है। राजधानी ब्रातिस्लावा में भारत और स्लोवाकिया के झंडे लगाए जा रहे हैं। पिछले 5 वर्ष में दोनों देशों के बीच यात्रा और आपसी आदान प्रदान बढ़ने से उत्साह अधिक है। मध्य यूरोप में ब्रातिस्लावा की रणनीतिक स्थिति से भी भारत के साथ पर्यटन संबंधों को मजबूत करने में मदद मिलेगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में अपनी नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ और उसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि जवानों के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को सदैव गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उपप्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई।
2: आज की परिस्थितियों में ब्रिक्स देशों की कृषि में भूमिका और उसमें भी छोटे किसान, महिलाएं और युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके सभी पहलुओं पर विचार किया। अलग अलग देशों ने अपनी बेस्ट प्रैक्टिस को भी सभी सदस्य देशों के साथ साझा किया है और उस व्यापक विचार विमर्श से हमारे लघु और सीमांत किसानों को और मजबूत करने में मदद मिलेगी, उनकी आय बढ़ाने में और आजीविका बेहतर करने में भी निश्चित तौर पर आज की चर्चा बहुत सहयोगी होगी।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने सीमावर्ती जिलों में जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने का निर्देश दिया है। श्री शाह ने एक बैठक के दौरान स्थिति के आकलन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों, महानगरों और औद्योगिक शहरों का दौरा करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवासन और अन्य असामान्य कारणों से हुए जनसांख्यिकी परिवर्तनों के अध्ययन और इस समस्या से निपटने के उपाय सुझाने के लिए पिछले महीने एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 वर्षों में देश में शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और स्टार्टअप की नई संस्कृति को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियों से भारत आज विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उच्च शिक्षा नेटवर्क बन गया है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एआई प्रतिभा केंद्र भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप वाला देश है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। नागपुर में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार रोजगार सृजन के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है। श्री गडकरी ने नागपुर में बताया कि उनका मंत्रालय देशभर में वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रहा है। गुजरात के पोरबंदर में श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष के दौरान देश का केंद्रीय बजट दोगुना हुआ है और लोगों पर कर का बोझ काफी कम हुआ है। डॉ मांडविया ने कहा कि पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट रोजगार डैशबोर्ड विकसित किया गया है। अब तक 12,000 युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में देश में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में किए गए प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में भारत की सांस्कृतिक यात्रा ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। देश की संस्कृति अपनी परंपराओं से जुड़ी हुई है और साथ ही पूरी दुनिया के लिए खुली भी है। सरकार ने देश और विदेश में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे लोगों में सांस्कृतिक विरासत के प्रति गर्व की भावना और अधिक मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक परियोजना, माँ कामाख्या मंदिर का पुनर्विकास, जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना जैसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। आध्यात्मिक पर्यटन सर्किट और आधुनिक तीर्थयात्री सुविधाओं के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को फिर से सशक्त बनाया जा रहा है। इस बदलाव में संग्रहालय अनुदान योजना और सांस्कृतिक कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन योजनाओं ने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ सांस्कृतिक रचनात्मकता और स्थानीय स्तर पर लोगों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। संग्रहालय अनुदान योजना के तहत देश भर में 21 नए संग्रहालय स्थापित किए गए हैं और 23 पुराने संग्रहालयों का आधुनिकीकरण किया गया है। यह योजना नागालैंड जैसे राज्यों में भी काफी लाभकारी साबित हुई है। सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्पादन अनुदान योजना भी देश भर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने

0: का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। मणिपुर की सबसे पुरानी रंगमंच संस्था मणिपुर ड्रामेटिक यूनियन को हाल ही में वित्तीय सहायता मिली है, जिसके बाद वह नए नाट्य प्रस्तुतियों की तैयारी कर रही है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में संस्था के सचिव सुरोख अभैम शरद चंद ने क्षेत्रीय कला और संस्कृति को मजबूत समर्थन देने के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया है।
1: इस संगठन की स्थापना के बाद से हमें संस्कृति मंत्रालय से विभिन्न प्रकार के अनुदान प्राप्त हुए हैं। सांस्कृतिक अनुदान के अंतर्गत हमें इस वर्ष 1,25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें स्वीकृत राशि का 75% प्राप्त हुआ है। मैं भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय का आभार व्यक्त करता हूँ।
0: भारत ने अपनी संस्कृति को संरक्षित और दुनिया तक पहुँचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है, तीर्थ स्थलों का विकास हुआ है और पुरानी परंपराओं को नया जीवन मिला है। साथ ही बेहतर सड़कें, स्वच्छ सुविधाएं और आधुनिक सेवाएं लोगों के लिए इन स्थानों तक पहुंचना अधिक आसान बना रही है। आज पूरी दुनिया भारत की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली में रुचि दिखा रही है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ईरान, अमरीका और इसराइल के संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की कीमतों में इजाफा हुआ है। पंजाब के लुधियाना में उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि देशवासियों पर कीमतों में वृद्धि का अधिक प्रभाव न पड़े। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव लागू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पुदुचेरी में उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव करने से खर्च कम होगा और संसाधनों का अधिक कुशल उपयोग हो सकेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने परीक्षा अधिकारियों के लिए आई गॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पर एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य एनटीए परीक्षाओं के लिए पर्यवेक्षण और निगरानी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना और ऑफलाइन पेन और पेपर पर आधारित परीक्षाओं का सुचारू, सुरक्षित और मानकीकृत संचालन सुनिश्चित करना है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहले जत्थे का प्रस्थान समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह जत्था 15 जून को नई दिल्ली से रवाना होगा और नाथुला मार्ग से यात्रा करेगा। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि कुछ लोग और समूह अपुष्ट तथा भड़काऊ सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वो अफवाहों या अपुष्ट सामग्री पर भरोसा न करें और इन्हें साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्रसारित सामग्री के प्रति सावधानी बरतें। प्रशांत महासागर में अल नीनो की स्थिति बनी हुई है और दक्षिण पश्चिम मॉनसून के दौरान इसके और प्रबल होने की आशंका है। मौसम विभाग ने कहा है कि जून 2026 तक मध्य उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र तल का तापमान अल नीनो के लिए जरूरी सीमा से अधिक हो गया है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिनों में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूर्वी राजस्थान में आंधी तूफान की भी संभावना है। धर्मशाला में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारत को 195 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7वें ओवर में एक विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 102 रन की पारी खेली। हर्ष दुबे और गुरनूर बरार ने 3-3 विकेट लिए। बारिश की वजह से मुकाबले को 25-25 ओवर का कर दिया गया है। मैनचेस्टर में महिला T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड ने आयरलैंड को 40 रन से हराया। कल शाम 7 बजे भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में आज रात फ्रांस के नीस पहुंचे। वे कल राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वार्ता करेंगे और भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से शुभारंभ करेंगे। असम के जोरहाट में वायुसेना की AN-32 विमान दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवान शहीद। 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन हुआ संपन्न। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया।

0: as country's next army chief. And in cricket, Afghanistan set a target of 195 runs for Rinder in Rain Mart first ODI of three-match series in Dharamshala. That is all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। आइए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र और वहां से आपको सुनवाएंगे राष्ट्रीय संस्कृति पत्रिका।
1: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम

0: एक तारीख जो हमें हर साल याद दिलाती है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, उसके अंश हैं। और जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो जल की बात करना जरूरी हो जाता है। पर्यावरणविद अनुपम मिश्र का एक विचार बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें वो कहते हैं कि जिस समाज ने अपने जल को सहेजना छोड़ दिया, उसने मानो अपनी स्मृति भी खो दी। उनके ही दर्ज किए हुए कुछ विचार बिंदुओं को आज के संपादकीय में अपना स्वर दे रहे हैं अभिनय श्रीवास्तव। जल की जड़ें, संस्कृति की धाराएं।
1: मौसम विशेषज्ञ बताते हैं कि देश को हर साल मॉनसून का पानी निश्चित मात्रा में नहीं मिलता, उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि प्रकृति ISI मार्क का तराजू लेकर पानी बांटने निकलने वाली पनिहारिन नहीं है। तीसरी चौथी कक्षा से हम सब जल चक्र पढ़ते हैं। अरब सागर से कैसे भाप बनती है, कितनी बड़ी मात्रा में वो नौतपा के दिनों में कैसे आती है, हमारा साधारण किसान भी जानता है। ऐसी बड़ी दिव्य व्यवस्था में प्रकृति को मानक ढंग से पानी गिराने की परवाह नहीं रहती, फिर भी आप पाएंगे कि एक रूपता बनी रहती है। पानी की राजनीति ने प्रकृति के इस स्वभाव को भूलने की अक्षम्य गलती की है, इसलिए हम प्रकृति से क्षमा नहीं पा सके। बड़ी गलती हमसे ये हो रही है कि हमने पानी रोकने के समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध तरीकों को पुराना या परंपरागत करार देकर छोड़ दिया है। यदि कुछ 1,00,000 साल से प्रकृति ने पानी गिराने का तरीका नहीं बदला है तो हम भी उसके सेवन के तरीके नहीं बदल सकते। तालाब बावड़ी जैसे पुराने तरीकों की विकास की नई योजनाओं में बहुत उपेक्षा हुई है, न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी तालाबों को समतल कर मकान, दुकान, मैदान, बस स्टैंड बना लिए गए हैं। जो पानी यहाँ रुककर साल भर ठहरता था, उस इलाके के भूजल को ऊपर उठाता था, उसे हमने नष्ट कर दिया है। उसके बदले हमने आधुनिक ट्यूबवेल, नलकूप, हैंडपंप लगाकर पानी निकाला है, डालना बंद किया और निकालने की गति राक्षसी कर दी। लेकिन अब प्रकृति हमें हर साल चिट्ठी भेजकर याद दिला रही है कि हम गलती कर रहे हैं, इसकी सजा भुगतनी होगी। हमें भूलना नहीं चाहिए कि अकाल, सूखा, पानी की किल्लत, ये सब कभी अकेले नहीं आते। अच्छे विचारों और अच्छे कामों का अभाव पहले आ जाता है। हमारी धरती सचमुच मिट्टी की एक बड़ी गुल्लक है, इसमें 100 पैसा डालेंगे तो 100 पैसा निकाल सकेंगे, लेकिन डालना बंद कर देंगे और केवल निकालते रहेंगे तो प्रकृति चिट्ठी भेजना भी बंद करेगी और सीधे सीधे सजा देगी। आज ये सजा सब जगह कम या ज्यादा मात्रा में मिलने लगी है।
0: विश्व पर्यावरण दिवस पर संस्कृति भारती का ये संपादकीय स्मरण है उस चेतना का जो हमें सिखाती है कि जल सिर्फ जीवन देता नहीं, जल ही जीवन है। प्रकृति की बात हुई, प्रकृति और मनुष्य के बीच के संतुलन का नाम ही योग है, एक ऐसी विद्या जो महज देह को नहीं चेतना को साधती है। और आज यही योग विश्व के खेल मंचों पर अपना परचम फहरा रहा है। ओलंपिक में योगासन को शामिल करने की दिशा में गंभीर प्रयास चल रहे हैं। इस रोचक यात्रा के बारे में बता रहे हैं योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य, जिनसे बातचीत की है आनंद श्रीवास्तव ने। परंपरा से प्रतिस्पर्धा तक,
2: हजारों वर्ष पहले भारत की धरती पर जन्मी एक साधना जिसने मन को स्थिरता दी, शरीर को शक्ति दी और आत्मा को संतुलन। ऋषियों के आश्रमों से शुरू हुई ये यात्रा आज विश्व के खेल मंचों तक पहुंच चुकी है। एक समय था जब योग केवल स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम माना जाता था, लेकिन आज योगासन प्रतिस्पर्धा का भी विषय है। खिलाड़ी कठिन आसनों में अपनी क्षमता, संतुलन, लचीलापन

0: और मानसिक एकाग्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं योगासन भारत के महासचिव और विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य। कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदनी भाई आनंद जी, और आकाशवाणी का भी बहुत आभार।
0: 5000 वर्ष पुरानी जो भारत की परंपरा है योग, जो ऋषियों महर्षियों के आश्रमों से शुरू हुई, वहां से लेकर यहाँ तक योगासन स्पोर्ट की जो यात्रा है, कैसे देखते हैं आप?
1: योग तो अनंत है और भारत की अध्यात्म और दर्शन का मूल तत्व है। बहुत विराट है, बहुत विशाल है और असीमित है, इसको बांधा नहीं जा सकता। परंतु योग के माध्यम से जो यात्रा समाधि तक जाती है, महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों से होते हुए व्यक्ति मोक्ष तक पहुंचता है, उस परम तत्व तक पहुंचता है। उस 8 अंगों की यात्रा में तीसरा जो पायदान है वो उसका नाम है योग, आसन। और इन आसनों को हमने प्रतिस्पर्धा में लाने की जब बात की तो हमने देखा कि प्रयास तो कई वर्षों से हो रहे थे, अलग अलग क्षेत्रों से हो रहे थे, परंतु उनकी जो दिशा थी वो वैज्ञानिक नहीं थी, वो स्पोर्ट्स परक नहीं थी। इस कारण वो स्पोर्ट्स का हिस्सा नहीं बन पा रहे थे और ये प्रयास देश में, दुनिया में कई स्थानों पर धीरे धीरे हो रहे थे और उसमें अवैज्ञानिकता भी बहुत अधिक थी। तो हमने उसको परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के पावन निर्देशन में, स्वामी रामदेव जी महाराज के निर्देशन में पूरा इसका डॉक्यूमेंटेशन किया और क्या क्या होना चाहिए, इसमें क्या वैधानिकता है, क्या इसकी सावधानियां हैं और इसको किस प्रकार हम विज्ञान परक बनाते हुए, खेल विज्ञान के साथ जोड़ते हुए आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इस पर बहुत काम करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि इनों की, और वो भी निर्धारित श्रृंखला, वो निर्धारित की जाए, उसको कैटेगराइज किया जाए डिफिकल्टी के लेवल पर, ए माइने सामान्य, बी माइने उससे और कठिन, सी माइने और कठिन, डी माइने उससे भी कठिन और ई माइने परम कठिन आसन, ऐसे हमने कैटेगरी तय की और जो अपनी क्षमता के अनुसार कर सके उनकी आयु भी तय की, उनकी क्षमताओं का चयन वो स्वयं करें, उन आसनों में से करें, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करें। और उसमें महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, क्लासिकल जो सूत्र है, उसको मॉडर्न के साथ हमने जोड़ने की कोशिश की, वो था स्थिर सुखम आसनम, आप डूइंग द पोस्चर विद ईज इज कॉल्ड आसन। तो हमने इसके ऊपर काम करते हुए इसको पहले वैज्ञानिकता के साथ जोड़ने का प्रयास किया।
0: आकाशवाणी के बहुत सारे श्रोता ये समझना चाहेंगे कि जो योग है और योगासन खेल, इसमें मूलभूत अंतर क्या है?
1: योगासन योग की शुरुआत है और योग योगासन की परम सीमा है, बस यही अंतर है। तो योग शरीर को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है और योगासन अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए सीमा से पार जाने की एक प्रकाष्ठा है। योग आपको मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य देता है और योगासन आपको उस दिशा में ले जाने की प्रथम सीढ़ी के रूप में काम करता है। योगासन बीजारोपण है और योग परम समाधि का तत्व है।
0: जब आपने पहली बार योगासन स्पोर्ट को लेकर चर्चा की या इसके महासंघ की रूपरेखा बनाने का प्रयास किया और जब इसको खेलो इंडिया या क्षेत्रीय स्तर पर, जिला स्तर पर शुरू करने की कोशिश की, किस तरह की चुनौतियां आई और उस समय क्या सोच थी, क्या लक्ष्य था?
1: ये जो मूल रूप से विषय आया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से चर्चा की कि इसको बच्चों तक योग को कैसे पहुंचाया जाए, तो उस वार्ता में ये निश्चित हुआ कि योगासन को खेल का रूप दिया जाए। और आज चुनौतियां बहुत अधिक ये थी कि बच्चे आज स्पोर्ट्स के मैदान में नहीं पहुंच पा रहे थे और जो खेल के मैदान थे वो संकुचित होते जा रहे हैं, वहां पर बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बिल्डिंग्स अब वो स्थान ले रही हैं। ऐसे में योगासन एक ऐसी विधा है, ऐसा खेल है जो आप घर बैठे 2x6 फीट का एक स्थान तय करें, ना कॉस्ट इफेक्टिव कोई खेल हो सकता है भारतीय परंपरा के अंदर, तो मुझे लगता है वो स्वदेशी खेल योगासन ही हो सकता है।
0: 2023 के गुजरात में जो नेशनल गेम्स हुए, काफी समय के बाद हुए थे, वहां योगासन नेशनल गेम्स में पहली बार शामिल हुआ। आपसे ये समझना चाहेंगे कि योगासन स्पोर्ट को प्रमोट करने वाला भारत में जो, उसकी थोड़ी भूमिका बताएं कि वो किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे स्काउटिंग करता है बच्चों को और कोचेस किस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करके उनको नर्चर करते हैं।
1: योगासन को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पर हमें सबसे बड़ी कठिनाई, टेक्निकल हैंड्स नहीं थे। योग सिखाने वाले लोग थे, सामान्य पोस्चर करने वाले लोग थे, परंतु उस पोस्चर में उनको 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा कठिन था। स्पोर्ट्स के दृष्टिकोण से किया जाता है तो उसकी मास्टरी का लेवल अलग होता है। चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, आपका स्थायित्व जिसे कहते हैं स्टिलनेस, वो बहुत महत्वपूर्ण है, स्थिरता। तो 1.5 मिनट करने वाला बच्चा ही 1 मिनट परफेक्शन से कर पाता है, क्योंकि उसको माउंटिंग और डिसमाउंटिंग दोनों चीजें उसमें काउंट होती हैं। और ये जब शिकायतें हमारे पास आने लगी कि बच्चों को इंजरी बहुत हो रही है, तो हमारा फोकस उस पर रहा कि पहले अच्छे

0: तैयार किए जाएं और उसमें हमारे बहुत से जिज्ञासु लोगों ने आगे बढ़कर हमसे ट्रेनिंग लेने का क्रम शुरू किया और वहां से शुरुआत हुई। आज 630 जिलों में ये हमारी खेल संघ है, उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम हुआ है। लगभग यदि मैं यूं कहूं कि 2000 से अधिक हमारे पास कोचेज हैं, ट्रेंड कोचेज हैं, लगभग 2000 से अधिक हमारे पास ट्रेंड रेफरीज हैं।
1: इससे पहले कि हम चर्चा में आगे बढ़े, आर्या जी ने दो चीजें बोली, माउंटिंग और डिसमाउंटिंग। हम अपने श्रोताओं के लिए बता दें कि किसी भी आसन को शुरू करने से पहले नमस्कार की मुद्रा बनाना वो माउंटिंग है और आसन समाप्त करने के बाद वापस से नमस्कार की मुद्रा बनाना ये डिसमाउंटिंग है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले साल आपने एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में किया। नेशनल गेम्स के बाद एक बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहली बार एशियन योगासन चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। वहां कितने देशों ने हिस्सा लिया और किस तरह का रिस्पांस मिला जब आपने अलग अलग एशियाई देशों को पत्र लिखा कि योगासन की चैंपियनशिप हो रही है और आप अपना दल भेजिए?
0: एशिया में बड़ा जो सेगमेंट है वो मिडल ईस्ट एशिया का है और बड़ी भागीदारी उनके माध्यम से हुई। उसमें 21 देशों की भागीदारी उसमें रही, ईरान से लेकर बहरीन से लेकर ओमान से लेकर जॉर्डन से लेकर, बड़े अच्छे अच्छे देशों ने और बड़ी जिनको कहा जाता है कि, और सबसे बड़ी बात है कि योगासन को लोगों ने धर्म मजहब जाति कास्ट और क्रीड से ऊपर रखकर देखा और उसमें सहभागिता की और पूरी खेल भावना के साथ सहभागिता की।
1: गुजरात के अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन किया, 78 देशों के 700 से ज्यादा एथलीट उसमें शामिल हुए। इस आयोजन के पीछे की सोच क्या थी, कब आपको लगा कि अब वर्ल्ड चैंपियनशिप का आयोजन होना चाहिए?
0: 78 कंट्रीज का पार्टिसिपेशन अपने आप में अद्भुत है साहब। तो मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहूंगा और उनका योग के प्रति प्रेम को देना चाहता हूं। दूसरा, पूरे विश्व में परम श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज की जो पहचान है उसका एक विश्वास था लोगों में कि ये संस्था ऐसी नहीं है कि जहां जाकर हमारे साथ कोई अन्याय होगा, कोई बायसनेस होगी, जहां लेवल अच्छा नहीं होगा, जहां चैंपियनशिप का लेवल अच्छा नहीं होगा। तो एक वो संबल था।
1: कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ हम बढ़ रहे हैं, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, विश्व चैंपियनशिप के बाद अब लोग जानना चाहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक्स जैसे खेलों के महाकुंभ में योगासन खेल के पहुंचने की क्या संभावनाएं?
0: राष्ट्रमंडल खेलों में जाने की जो संभावनाएं हैं भारत के स्तर पर अत्यंत अच्छी है, बहुत अच्छे से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं और जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि इस दृष्टिकोण से मैं ये बात कह रहा हूँ। 78 कंट्रीज में से 25 से अधिक जो देश थे वो पहले से ही कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे और जैसे ये बात हमारे माननीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी को पता चली, उन्होंने कहा कि अरे 25 से अधिक देश तो अभी हैं, हम तो बहुत अच्छे से पिच कर सकते हैं अपनी ओर से, और उन्होंने आश्वस्त किया गुजरात के अपने कार्यक्रम में कि योगासन को आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में हम निश्चित रूप से अवसर दिलवाने का प्रयास करेंगे।
1: कार्यक्रम के अंत में आप उन युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आकाशवाणी का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जो योग तो करते हैं लेकिन योगासन खेल को अभी अपना नहीं पाए हैं?
0: मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि योग भी करें, योगासन खेल को भी ज्वाइन करें। योगासन खेल आपको संबल भी देगा, आपको नए भविष्य के साथ जोड़ेगा, नई चुनौतियों के साथ लड़ने की ताकत भी देगा और आपको अपॉर्चुनिटीज भी देगा, जॉब्स भी देगा, कैश रिवार्ड भी देगा और एक अच्छा सुनहरा भविष्य भी देगा। यदि योग और योगासन का संबल लेकर आप आगे बढ़ेंगे, भारत का यह सुनहरा खेल, स्वदेशी खेल, ये दोबारा भारत को ना केवल सोने की चिड़िया बनाएगा, सोने का शेर बनाकर आगे लेकर जाएगा और उस दहाड़ को पूरी दुनिया सुनेगी।
1: योग केवल शरीर को मोड़ने की कला नहीं है बल्कि स्वयं को गढ़ने की प्रक्रिया है। आज की चर्चा से यह स्पष्ट है कि योगासन केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि एक उभरता हुआ वैश्विक खेल भी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से लेकर ओलंपिक्स तक के सपनों तक योगासन की यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। डॉक्टर जयदीप आर्य, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और श्रोताओं के साथ विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
2: विश्व योगासन संघ के महासचिव डॉक्टर जयदीप आर्य से आनंद श्रीवास्तव की ये बातचीत बताती है परंपरा से प्रतिस्पर्धा की ये यात्रा भारत की सांस्कृतिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। योग से हम अंततः आनंद और शांति की तरफ ही बढ़ते हैं और ऐसा ही कुछ होता है जब हम संगीत से जुड़ते हैं। 21 जून विश्व संगीत दिवस, यानी वो दिन जो पूरी दुनिया को एक सुर में बांधने का प्रयास करता है। संगीत किसी एक काल का नहीं होता, वो पीढ़ियों के बीच

बहती हुई एक नदी है, कभी शांत, कभी उफनती, कभी कलकल करती। और जब ये नदी परंपरा की जड़ों से पोषण लेकर आधुनिकता के विस्तार में फैलती है, तो जन्म होता है फ्यूजन का। दिल्ली के इसी सांगीतिक परिदृश्य से उभरा है एक अनोखा बैंड कुल्फी। नाम में जितनी मिठास है, संगीत में उतनी ही गहराई। विश्व संगीत दिवस के उपलक्ष्य में हमने की इन कलाकारों से एक संवादी मुलाकात।

0: आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में पांच ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको देखकर उनके संगीत की गंभीरता का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही उन्होंने हमें उससे रूबरू कराया है और आज हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम संभव के पास, जो कुल्फी बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं। संभव, आपके सभी साथियों का आकाशवाणी में स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहला सवाल तो यही कि ये जो नाम है कुल्फी, इस नाम के पीछे क्या ऐसा आइडिया था जब आपने इसका नाम कुल्फी बैंड रखा?
1: जी, हम बहुत समय तक हमारे बैंड का नाम सोच रहे थे और हम सब किरोड़ीमल कॉलेज के छात्र हैं। वहाँ पे एक संगीत समिति है म्यूजॉक नाम की, हम सब उसी से निकले हैं, कुछ अभी भी है उसमें। और ऐसे डीयू म्यूजिक सर्किट में बहुत सारे फेस्ट होते हैं एंड कॉम्पिटिशन होते हैं। वहाँ पे आईटी कानपुर के फेस्ट होते हैं, हर साल कॉम्पिटिशन होते हैं। हम वहाँ पे बस बैठे थे और नाम सोच रहे थे और वहाँ पे कोई एक दोस्त कोई कुल्फी खा रहा था वहाँ, फिर वो बोला कि यार कुल्फी रख देते हैं नाम। लगा कि ये तो बड़ा स्वीट सा क्यूट सा नाम है। ठीक है।
0: संभव, जब आप म्यूजिक बना रहे होते हैं, कोई गाना चुन रहे होते हैं, तो लिरिक्स आप कैसे उसके चुनते हैं, वो लिरिक्स कौन लिखता है और फिर आप उसको कैसे सेट करेंगे, कैसे आप उसको तय करते हैं?
1: जैसे हमने कहा कि हम एक फ्यूजन बैंड अगर हमें कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम इंडियन क्लासिकल शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस को मिक्स करके एक साउंड को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं इस बैंड में। कुछ जैसे हमारा गाना मोरे मंदिर है, वो एक ऑलरेडी ट्रेडिशनल बंदिश है राग मेग में, जो बड़े गुलाम अली खान साहब जी ने बनाई है, उनकी बंदिश है। हमने उसको रीइंटरप्रेट करा है हमारे एक कंटेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में और उसको एक सॉन्ग स्ट्रक्चर में बांधने की कोशिश करी है। वैसे ही गाया था रसिक बलमा, वो हमने खुद बनाया है, हमारे एक दोस्त हेमांग कारगीत ने वो लिखा है, धुन हमने बनाई है। तो वो गाना हमने खुद बनाया है, वो बंदिश स्ट्रक्चर ही फॉलो करता है जो शास्त्रीय संगीत की बंदिश स्ट्रक्चर रहते हैं। हमें बनाते बनाते लगा कि इसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस अगर मिल जाए उसमें और हम उसका एक फोर्स उसमें डालें तो वो अच्छा लग सकता है। और कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, जहाँ पे भी लग रहा है कि इसकी गुंजाइश है और ये सुनने में अच्छा लग सकता है, वो हम वहाँ पे कर करके परख करके।
0: आपके अपने अनुभव में जितना अनुभव अभी आपको हुआ है, इन जनरल अगर हम ये म्यूजिक सीन की इस पूरे इस परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं, अगर हम क्या बेहतर होना चाहिए जिससे आप जैसे लोग जिस तरह का संगीत कर रहे हैं, बैंड बनाकर कर रहे हैं, इंडिविजुअली कर रहे हैं, किन चीजों की कमी आपको लगती है जो थोड़ा बेहतर होता तो शायद आप जैसे और लोग आगे आते संगीत और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ते?
2: हमें जितना समझ में आता है, एक जो दिक्कत लाइव म्यूजिक वेन्यूज की कमी आ गई है बहुत ज्यादा, एटलीस्ट दिल्ली में भी।
0: ऐसा क्यों?
2: अब वो ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है। आई थिंक पैंडेमिक के बाद लाइव म्यूजिक वेन्यूज थोड़े से स्थिर हो गए थे और अब वही चार पांच जगहें हैं जहां पे हम लोग भी ढूंढते हैं चीजें, तो बेसिकली बहुत सॉलिड सैचुरेशन हो गया है। उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आउटरीच, उसके फोरम आई डोंट बिलीव इतने एग्जिस्ट करते हैं, या अगर करते हैं वो इतने स्ट्रांग नहीं रहे हैं।
0: शौर्य, आप बताइए।
3: तो इंडिया में मैंने ये भी नोटिस किया है कि लोगों की मेंटालिटी होती है कि म्यूजिक इज समथिंग दैट गोज ऑन इन द बैकग्राउंड। आर्टिस्ट को जो रिस्पेक्ट नहीं मिलती फॉर द अमाउंट ऑफ एफर्ट दे हैव पुट इन टू लर्न देयर आर्ट एंड टू डू व्हाट दे आर डूइंग इज ऑफन वेरी डिफिकल्ट।
0: कुछ एग्जांपल दे सकते हैं आप जो बात आप कह रहे हैं कि आपको लगता है कि उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है बैकग्राउंड म्यूजिक जैसा लोगों को लगता है?
3: ओके, सो आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ जैसे लाइव म्यूजिक का ही सेड अबाउट लाइव म्यूजिक वेन्यूज। तो लोगों को बाहर जाके खाना खाना होता है, उनको लाइव म्यूजिक सुनना होता है, पर लोगों को उसके लिए पैसे नहीं देने होते। जैसे 500 रुपए एक फैमिली के कॉन्ट्रीब्यूशन

0: से एक आर्टिस्ट का बहुत बिग इम्पैक्ट पड़ सकता है व्हेन इट्स डन इन लार्ज नंबर्स. तो ये मेंटालिटी इज समथिंग दैट आई हैव सीन हैपन इन इंडिया.
1: अलोंग विद ऑल ऑफ दैट, ओरिजिनल म्यूजिक को ज्यादा आई डोंट थिंक लोग सुनना चाहते हैं. अब हमें भी जैसा शौर्या बोल रहा है, लोग खाना खाने आते हैं और उनको म्यूजिक फ्री में सुनना है. हमें बहुत बार ऐसा करना पड़ा है कि हमें अपना सेट इस ये लेकर बनाना पड़ा है कि ऐसा ना हो कि लोग उठ के फिर खाना खाने चले जाएं, क्योंकि हम चाहते हैं लोग बैठे रहें और हमें सुने. एक डेढ़ घंटा सिर्फ खड़े होकर एक बैंड को सुनना अब बहुत छोटे आर्टिस्ट के साथ नहीं होता है. ये आपको एक लेवल पे आपको सर्किट में कम से कम 10-10, 15-15 साल रहना पड़ता है ताकि लोग आपको डेढ़ घंटा बस खड़े होकर सुने उनका ओरिजिनल म्यूजिक. पर कवर्स उन्हें भी करने पड़ते हैं.
2: तो अभी आप लोगों ने क्या तरीका निकाला आदित्य, जैसे आप जो बात कर रहे हैं, जब कवर्स का जिक्र आपने किया, तो आपको लगता है कि कवर्स ज्यादा पॉपुलर हैं रादर देन योर ओन कंपोजिशन?
1: बिल्कुल हैं, पर हम थैंकफुली उस तरीके में इस चीज को टैकल करते हैं कि हम कवर्स अपने तरीके में अरेंज कर लेते हैं.
2: अच्छा.
1: हम बोलते भी हैं वी कुल्फी फाइव डेट.
2: जैसे भी आपने एग्जांपल दिया संभव, जो बंदिश है बड़े गुलाम अली खान साहब की, उसको आपने थोड़ा रीअरेंज किया, उसे आपने एक नया टच दिया.
3: उसी आइडिया को लेके मेन स्ट्रीम गानों को एक अलग नजरिए से देख के उनको प्रेजेंट करना इज व्हाट वी एज अ बैंड आल्सो डू.

0: कुल्फी जैसे बैंड हमें याद दिलाते हैं कि परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई दीवार नहीं है, बल्कि एक सेतु है जिसे संगीत बनाता है। विश्व संगीत दिवस पर इन कलाकारों को संस्कृति भारती की शुभकामनाएं। बीती 8 जून को ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी ने 90 वर्षों का सफर पूरा किया। वो स्वर जो 90 वर्षों से इस देश की धड़कन बना हुआ है, और उसके साथ साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था कस्तूरी, जिसने बीते 5 वर्षों में एक गंभीर सृजनात्मकता और सांस्कृतिक ऊर्जा का परिचय दिया है। इन दोनों के संयुक्त प्रयास से बीती 6 जून को नई दिल्ली में साहित्य अकादमी के सभागार में राम कथा में नृत्य का स्पंदन विषय पर मनाए गए कला पर्व ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को और समृद्ध किया। भारतीय नृत्य परंपरा में राम कथा का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। भरतनाट्यम हो या कथक, ओडिसी हो या मोहिनीअट्टम, मणिपुरी हो या कुचिपुड़ी, हर शैली में राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जीवंत हो उठते हैं। इसी उत्सव से कुछ स्वरों, कुछ भावों, कुछ शब्दों के साथ इस लय में डूबे भक्ति की लय, नृत्य की भाषा। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कथक गुरु पद्मश्री शोभना नारायण ने राम कथा में निहित मानवता, करुणा और लोक मंगल के तत्वों पर प्रकाश डाला।
1: आई वुड से इट इज अ सिविलाइजेशनल मेमोरी जस्ट लाइक महाभारत, और उसमें वही राम कथा आज मॉडर्न युग में भी चल रहा है। Actually, there are more than 36 to 40 versions of the Ramayana itself. Ramayana ka jo spandan hai, jo lay hai, wo nirantar hai, wo shashwat hai. Aapko vyakhya milti hai, kis tarah se aapke andar wo emotions aur bhavnaye hai. Aur maine do lines.

0: लिखी थी कैके का प्रसंग कि कैके के कारण राम वन गए और इसी कारण वो राम बन भी गए।
1: कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओडिसी गुरु विदुषी शरण लॉविन ने अलग अलग रामायण परंपराओं का उल्लेख करते हुए उनके सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व को बड़े विस्तार से बताया।
2: In Odisha, there's a literary tradition, obviously older, but literary, that's at least 500 years old. And what's unique or special about, or significant, is that in Odisha, all of the writers in Odia have interpreted many of the locations as being in Odisha.
1: भरतनाट्यम कलाकार श्रीधर वासुदेवन ने समाज की सौंदर्य चेतना और सांस्कृतिक मूल्यों की चर्चा की जिसके आधार में रामायण है, राम कथा है।
3: नृत्य एक भाषा है और इस नृत्य को, इस भाषा को परिभाषित करने के लिए नाट्य का रूप हमें धारण किया है और नाट्य के लिए विषय कुछ भी हो सकता है। हमारे इस विषय की खोज में इस मार्ग को बहुत ही सुलभ बनाया है महाकवियों ने, महाआचार्यों ने, उसमें से महर्षियों ने, उपनिषद के बहुत सारे स्रोत दिए, सोच के रह के उसे भाव में अभिव्यक्त करने के लिए। और ये बात को मैं बहुत ही पुष्टिकरण से विश्वास में रखता हूं, मैं अपने आप को भरोसा रखता हूं कि हम सब कहीं ना कहीं रामायण काल में रहे।
1: मोहिनीअट्टम कलाकार जयप्रभा मेनन ने रामकथा पर अपने विचार रखते हुए कंभ रामायण का विशेष उल्लेख किया।
4: देयर इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस अ सीन टू बिहोल्ड, टू सीइंग देम कम द शूर्पणखा।
1: उन्होंने शूर्पणखा प्रसंग की कलात्मक और बेहद मानवीय व्याख्या प्रस्तुत की। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के प्रति प्रणय निवेदन से पहले राक्षसी रूप से ललिता रूप में शूर्पणखा का परिवर्तन एक बेहद रोचक नृत्य प्रस्तुति का आधार बनता है।
4: गोइंग एंड प्रपोजिंग टू राम एंड लक्ष्मण फ्रॉम दैट राक्षसी बाव ऑन द हैंड गोज इन द ब्यूटीफुल पल्लव।
1: राम के ही निर्गुण रूप में अपना आराध्य तलाश करने वाले कबीर, 15वीं शताब्दी का वो जुलाहा जिसने न केवल कपड़े बुने बल्कि मनुष्यता का एक ऐसा ताना बाना बुना जो आज भी जस का तस है। गुरु हर गोविंद साहिब सिख परंपरा के छठे गुरु, उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, वो पवित्र स्थान जो धर्म और लौकिक न्याय दोनों का ही केंद्र बना। कुछ महान विभूतियाँ देह में भले हमारे साथ ना हो,
5: हमारे सुरों में और हमारे रंगों में जीते रहते हैं। असम के अस्मिता के प्रहरी और असम के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई, सरोद के जादूगर मैहर घराने के महान संगीतज्ञ उस्ताद अली अकबर खान, ओडिशी शास्त्रीय नृत्य शैली को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली दिव्य कलाकार संयुक्ता पाणिग्रही, भारतीय चित्रकला के महानायक मकबूल फिदा हुसैन, इन सभी विभूतियों के सांस्कृतिक अवदान को प्रणाम करते हुए संस्कृति भारती का आज का ये अंक यही संपन्न होता है। अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे। नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
6: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। अगला कार्यक्रम हमारी दिल्ली केंद्र से होगा।
7: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार।
8: यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन। यू शिव प्रसाद, जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक संगीतकार परिवार में हुआ था, कम उम्र में ही आपको संगीत की विरासत मिली। आपने अपने चाचा से कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। सम्माननीय सैक्सोफोनिस्ट स्वर शिल्पी यू

0: वेंकटराव जी और चिंतालापुरी वराहला राजू गारू और पी दयाकर गारू के साथ संगतकर्ता के रूप में संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन करना शुरू किया। आप पश्चिमी की फ्लूट में भी प्रशिक्षित हैं, जो आपकी व्यापक संगीत बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। आपको गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली द्वारा कला निधि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये आपके संगीत के प्रति अटूट समर्पण, अनुशासन और जुनून को दर्शाता है, जो आपको अन्य संगीतकारों के लिए एक आदर्श बनाता है। आपके साथ मृदंगम पर विघ्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही हैं। यू शिव प्रसाद अपने कार्यक्रम का आरंभ हंस ध्वनि से कर रहे हैं। रचना के बोल हैं वातापी। इसके रचनाकार हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितर। ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: दिस इज आकाशवाणी। टुनाइट इन रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ सैक्सोफोन रिसाइटल बाय यू शिव प्रसाद। यू शिव प्रसाद बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस इन विशाखापट्टनम inherited his musical foundation at an early age. He received his formal training in Carnatic classical music from his uncle, the respected saxophonist Swar Shilpi U. Venkat Rao Garu, Chintalapudi Varhala Raju Garu and P. Dayakar Garu, and he began performing in public concerts as an accompanist. He is also trained in Western key flute, showing broad musical versatility. Awarded Kalanidhi Award from Gandhi Hindustani Sahitya Sabha, New Delhi. It reflects his unwavering dedication, discipline and passion for music, making him a role model for musicians alike. Today, he is accompanied on Mridangam by V. Jayaraman and on violin by G. Uma. U. Shiva Prasad begins his violin recital with Rag Hansdhwani. Composition Vatapi, composed by Muthuswami Dikshitar. Is set to Adita.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग हंसधनी। कार्यक्रम को जारी रखते हुए यू शिव प्रसाद अब प्रस्तुत करेंगे राग नवरस कानड़ा। रचना के बोल हैं निन्नू वीणा रामा। इसके रचनाकार हैं त्याग राजा। ये रचना रूपकम ताल में निबद्ध है।
1: दैट वॉज राग हंसध्वनि। कंटिन्यूइंग हिज रिसाइटल, यू शिव प्रसाद नाउ प्रेजेंट्स अनदर कॉम्पोजिशन बेस्ड ऑन राग नवरस कानड़ा। Composition Ninnu Veena Rama, composed by Tyagaraja, is set to Rupakam Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यूशिव प्रसाद का सैक्सोफोन पर बजाया राग नवरस कांडड़ा। अब आप सुनेंगे राग गौरी मनोहारी। रचना के बोल हैं जय जय पद्मनाभा। इसके रचनाकार हैं स्वाति तिरुनाल और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: यू जस्ट हर्ड राग नवरस कांडड़ा। यूशिव प्रसाद कंक्लूड्स हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विथ राग गौरी मनोहारी, कंपोजिशन जय जय पद्मनाभा, composed by Swati Tirunal, is set to Adi Talam.

0: अभी आप सुन रहे थे यू शिव प्रसाद का सैक्सोफोन वादन, आपके साथ मृदंगम पर विग्नेश जयरमन और वायलिन पर जी उमा संगत कर रही थी। इसी के साथ संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर रात्रि के 11 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार। समाचार पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में होंगे, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। वहां फ्रांस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इनमें शिक्षा मंत्री एडवार्ड ग्रेफे, उच्च शिक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष मंत्री फिलिप बैप्टिस्ट, आल्प्स मैरीटाइम्स फ्री फ्रैक्चर के सेक्रेटरी जनरल पैट्रिक अमोसू एडबले, भारत में फ्रांस के राजदूत थियरी माथू, नीस के मेयर एरिक सियोटी और स्टेट प्रोटोकॉल के डिप्टी डायरेक्टर बेनोइट स्नाइडर शामिल थे। इस यात्रा को यूरोप और भारत के संबंधों के लिए निर्णायक माना जा रहा है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप में भारत का सबसे

0: राणा और भरोसेमंद रणनीतिक मित्र देश रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भारत की रणनीतिक सोच में फ्रांस का एक खास स्थान है। इस साल की शुरुआत में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया, जो वैश्विक समाधान के लिए उनकी साझा आकांक्षा को दर्शाता है। कल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप्स के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमरीकी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि अगले सप्ताह फ्रांस में प्रस्तावित G7 बैठक के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक विकास, आपूर्ति श्रृंखला, यांत्रिक मेधा, निवेश भागीदारी सहित सुरक्षा के अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। असम के जोरहाट में आज सुबह AN-32 विमान दुर्घटना में 5 जवानों की मौत हो गई है। इसमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं। AN-32 विमान आज सुबह जोरहाट में नियमित उड़ान पर था। लैंडिंग के दौरान विमान एयरबेस परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसमें आग लग गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जवान के साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा को हमेशा गर्व और कृतज्ञता से याद किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थल सेना प्रमुख होंगे। वे फिलहाल थल सेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को वर्तमान सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन संपन्न हो गया। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। अमरीका और ईरान ने संकेत दिया है कि वे पश्चिम एशिया में महीनों से चल रहे टकराव को खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते के बहुत करीब हैं। हालांकि अभी भी कुछ अहम मुद्दों पर मतभेद बने हुए हैं। दोनों देशों के अधिकारियों का कहना है कि प्रस्तावित समझौते के मसौदे पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के क्रम में कल आयुष मंत्रालय ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। ये आयोजन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हेबिल्ड के साथ मिलकर किया जा रहा है। ये आयोजन सुबह 6:15 बजे से पूर्वाह्न 7:35 बजे तक होगा। इसमें 130 देशों से सहभागिता की संभावना है। कार्यक्रम में आयुष मंत्री प्रदाप राव जाधव भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के इच्छुक लोग मिस्ड कॉल देकर पंजीकरण करा सकते हैं। नंबर है 1800-315-7008। दक्षिण पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और पूर्वोत्तर में अत्यधिक बारिश का अनुमान है। कल तक पूरी राजस्थान में आंधी तूफान की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi has arrived in the French city of Nice, marking the beginning of his 6-day visit to France and Slovakia. Mr. Modi was accorded a warm welcome by senior French dignitaries. The visit to the two European countries aims to further deepen bilateral ties and reaffirm India's commitment towards advancing its broader strategic partnership with the European Union. During his stay in Nice, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with French President Emmanuel Macron tomorrow. Both leaders will also jointly inaugurate the Bharat Innovates event, which brings together top innovation startups and venture capital funds from across the world. On the second leg of his